अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उसे मिटाने के लिए काफी होती है। जीवन हमें यही सिखाता है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

जिंदगी एक बेहद खूबसूरत सफर है जहां हर मोड़ एक नया अनुभव है और एक नई सीख लेकर आता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए हर पल को जीना और हर मंजिल का आनंद लेना ही जीवन की असली कला है।

और भोर सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते अब आपको छोड़े जा रहे हैं अभिलाषा फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है रफी साहब और मन्ना डे साहब ने। और इसी के साथ सुरभि आपसे चाहती है इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।

हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब जान लेते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद का समय है कार्यक्रम अर्पण का। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं गोल्ड सुप्रभात। 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे। आठ पर म्यूजिकल दिल लगी और 10:30 पर आप सुन सकते हैं दिल का मेल बॉक्स। सुबह 11:10 पर कार्यक्रम तस्वीर में आज झारखंड के सफर पर आप चलेंगे। एक 1:10 का समय है कलाकार बेमिसाल का और 3:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन भावन।

5:10 पर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, 7:25 पर आप सुनेंगे सांझ ढले।

10:30 का समय है हर सिंगार कार्यक्रम का और 11:40 पर आप सुन सकते हैं गीत मेरे मन में।

दोपहर में 1:10 पर कार्यक्रम बेमिसाल सुनना ना भूलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। कुछ ही समय में 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ

0: व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
2: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC Bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The bill will now be tabled in the monsoon session of the State Assembly beginning today. Under the key provisions of UCC, more than one marriage will not be valid in the state. Divorce will have to follow a legal process. Women and men will get equal inheritance rights. Registration of live-in relationships will be mandatory within 1 month. Spain beat defending champions

जब प्रार्थना सच्चे हृदय से की जाती है तब भगवान ऐसे रास्ते दिखाते हैं जो आपने कभी भी न सोचे हों। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

तुलसी श्री रघुबीर तजी, करे भरोसो और, सुख संपत्ति की का चले, नरकहु ना ही ठोर। तुलसी कहते हैं कि जो मनुष्य श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरा कोई भरोसा करता है, सुख संपत्ति की तो बात ही दूर है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

6:26 हो गए हैं। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महात्मा गांधी ने कहा है कि शुद्ध बनने का अर्थ है मन से, वचन से और काया से निर्विकार बनना, राग द्वेष आदि से रहित होना।

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शास्त्र अनेक हैं, विद्याएं भी बहुत हैं, समय थोड़ा है, विघ्न भी बहुत हैं। अतएव जैसे हंस जल मिश्रित दूध से दूध को ले लेता है, उसी प्रकार जो कुछ सारभूत हो उसी

समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। सब समय का खेल है, समय आने पर फल पकते हैं और समय आने पर झड़ भी जाते हैं। रहीम कहते हैं कि समय ही परिस्थितियों को बदलता है, अर्थात समय सदा एक सा नहीं रहता, इसलिए पछतावा करने का कोई तुक नहीं है।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि

जीवन सरल तब होगा जब आप समझ जाएंगे क्या अपनाना है, क्या बदलना है और क्या छोड़ देना है। गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। 7:11 और 19 सेकेंड। प्रोग्राम का पहला सॉन्ग सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

आज के मौसम की बात करें तो आज अधिकतर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश भी आएगी। तापमान में गिरावट के साथ आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। सूर्योदय हुआ 5:35 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:18। आइए अब सुनते हैं दो रास्ते फिल्म से ये अगला गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस है। चंद्रमा पर मानव के पहले कदम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 20 जुलाई यानी आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में चुना गया। ये उपलब्धि अपोलो 11 मिशन के दौरान हासिल की गई थी, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर पहले मानव के रूप में कदम रखा था। इसने चंद्र अन्वेषण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की और भविष्य के अनुसंधान और खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। 7:24:38 हो गए हैं। आइए गोल्ड सुप्रभात में सुनते हैं आन मिलो सजना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: चलो निरंतर थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही गेह है। आशा मत बांधो फल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य है। परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ, परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये ओजस्वी पंक्तियां हमें जीवन में कभी भी ना रुकने और फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा देती हैं। दिनकर कहते हैं कि हमारी इस कर्म भूमि यानी कि संसार में हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ रुकना या ठहरना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। वे मानस के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही अटल सत्य है और सच्ची लगन और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। कर्म के सिद्धांत के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः, मा कर्म फल हेतु भूर्मा, ते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात इंसान को अधिकार केवल कर्म करने का है, फल के विषय में विचार करने का बिल्कुल नहीं। मनुष्य को परिणाम के बजाय ईमानदारी और पूर्ण क्षमता से अपना काम करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें फल की इच्छा किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो इन्हीं सुविचारों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं नीना अरक्कल। नीना, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। यस मुकेश, सर्विस एंड सर्विंग others is the best way to find yourself.
0: Bilkul.
1: And it is, in the service of others that you lose yourself for others.
0: Bilkul, bilkul.
1: And that's what Mahatma Gandhi said. And so, dear listeners, whom can you serve today with a smile?
0: Ji, bilkul.
1: We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 20th of July 2026. So let's begin with the headlines.
0: Ji, bilkul. संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं।
1: President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania yesterday. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties. The focus of the visit is on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges.
0: सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय

0: तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है।
1: Goa has emerged among the top performing states in implementing the Jan Vishwas reforms. Through the Goa Jan Vishwas Laws Amendment Act 2026, the state has undertaken a major legislative reform exercise to strengthen trust-based governance, simplify regulations, and improve ease of doing business. For details, our correspondent has this report.
2: The reforms simplify government rules and reduce the compliance burden on citizens and businesses. The Act replaces criminal prosecution for many minor technical and procedural offences with monetary penalties and administrative action. It also provides for the timely delivery of notified public services and allows fines and penalties to be revised from time to time. The reforms are expected to benefit micro, small and medium enterprises, startups and other businesses by reducing unnecessary litigation and making compliance simpler. According to a national report on the implementation of the Jan Vishwas framework across NDA-ruled states and union territories, Goa has emerged among the top-performing states in adopting these reforms. For Aaj Sabere, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी।
1: India Meteorological Department IMD has issued red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir for the next 2 days. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is expected over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today.
0: Aur shrotaon, Spain ne FIFA Vishwa Cup jeet liya hai.
3: One final act of this incredible summer of soccer for Rodri to lift the trophy and for the celebrations to begin both here and over.
0: फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टोरेस ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। और अब कार्यक्रम आज सवेरे में बात महानगरों की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से जुड़े समाचारों की। नैना
4: जी,
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार संसद सत्र के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों तथा चौराहों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। यातायात पुलिस ने लोगों से रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोका रोड, तालकटोरा रोड सहित इनके आसपास के मार्गों से यथासंभव बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही विजय चौक, बोट क्लब, जलेबी चौक सहित कई प्रमुख चौराहों पर भी यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में जनपथ, मानसिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मियों के दिशा निर्देशों का पालन करने और यात्रा की योजना से पहले अपनी योजना को अंतिम रूप देकर बाहर निकलने की अपील की है। और दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से कानून का सम्मान करने और किसी भी अनाधिकृत सभा और मार्च में भाग लेने, भाग न लेने और सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.
1: Now let's move to Chennai news, Mukesh. The state health minister KG Arun Raj has said that the state is considering a dedicated public health policy for menopausal women, acknowledging that adequate attention should be given to women at this stage. Attending a seminar by Indian Menopause Society at Chennai, he said that while there are dedicated programs for conditions such as tuberculosis, AIDS and blindness, he said that there was little focus for women at the menopausal stage. He said that each woman spends about one third of their life in the menopausal period. The health minister added that issues arising from hormonal changes before and after menopause were often neither understood nor adequately addressed. Dr. Anuraj said that there are several treatment options and a multidisciplinary approach is required to treat for this phase of their life. Some more from Chennai. The number of seats available for online general counselling has increased by 15% compared to last year. As many as 1,98,825 seats are available in 418 engineering colleges for the general counselling this year. About 2.3 lakh students will compete for these seats in three rounds, which will begin today. Experts predict the admission trend will be similar to last year and ask engineering aspirants to give more choices due to expected fall in cut-off marks this year.
0: और नीना, अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ. तो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रो लाइन 4 को विक्रोली स्थित गोदरेज कमर्शियल कैंपस से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है. प्रस्तावित पुल से यात्रियों को LBS रोड पार किए बिना सीधे कैंपस तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंगों के आकलन और वितरण के लिए जिला स्तरीय शिविर 22 जुलाई को पालघर जिला परिषद कार्यालय में आयोजित किया जाएगा. पंजीकरण के 15 से 20 दिनों के भीतर कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए जाएंगे. लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाने अनिवार्य होंगे. शिविर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, UDID लिंकिंग और सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी.
1: लेट्स मूव टू बेंगलुरु नाउ मुकेश.
0: जी,
1: Chief Minister D.K. Shivakumar has directed deputy commissioners to remain fully prepared to tackle the drought situation in Karnataka, warning that negligence in relief measures will not be tolerated. Chairing a video conference with deputy commissioners at Vidhana Sauda, the chief minister said ensuring drinking water, fodder for livestock, crop insurance and borewells in water-scarce rural areas should be the top priorities. He said Karnataka is facing a severe rainfall deficit, with sowing completed in only 32% of the targeted area and most districts receiving deficient rainfall. Mr. Shivakumar instructed officials to verify field data before submitting reports, warned against irregularities in borewell works, and directed the Revenue, Energy, RDPR and Water Resources Department to work in coordination. Some more from Bengaluru. The Bengaluru Metro Rail Corporation Limited, BMRCL, has begun implementing the Centre's revised penalty framework under the Metro Railways Operation and Maintenance Act 2002, following the enforcement of the relevant provisions of the Jan Vishwas Amendment Provisions Act. The revised provisions decriminalize several minor offences on metro premises by replacing imprisonment with monetary penalties and substantially increasing fines. Offences such as creating nuisance, drunkenness, unauthorized entry into restricted areas, trespassing on metro tracks and ticket-related fraud will now attract higher penalties. For instance, the maximum fine for creating nuisance, including playing music or videos loudly without headphones, has been increased from 500 to 2,500. BMRCL said the revised rules will be enforced strictly across the Namo Metro network. And now what do we have from Kolkata, Mukesh?
0: पश्चिम बंगाल में आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तर्ज पर एक विशेष जांच एजेंसी एसआईए गठित करने की पहल जारी है।

0: कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कल कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें इस विषय पर चर्चा की गई। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेगी। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को हटाने, पुलिस के आधुनिकीकरण और साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के संबंध में त्वरित कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई। तो अभी आपके पास और कौन से महानगर की खबर शेष है?
1: Mukesh, now I have Hyderabad
0: जी,
1: news.
0: बिल्कुल, बताइए.
1: The Indian Institute of Technology, Hyderabad, in collaboration with the Bengaluru-based Center for Nano and Soft Matter Sciences, successfully hosted Nano Jatha 2026 yesterday, organized as a flagship pre-event for the upcoming Bengaluru India Nano 2026 Summit. This national science outreach initiative drew a large gathering of students, researchers, and faculty members from across the region. The day-long event aimed to introduce young minds to the transformative potential of nanoscience in fields like healthcare, clean energy, 5G, 6G communications, and environment.
0: तो श्रोताओं, ये थे अब तक के कुछ महानगरों से जुड़े समाचार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और नीना के साथ। कार्यक्रम में अब बात महानगरों के मौसम की। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में इधर आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में भी आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता की अगर बात करें तो शहर में आज तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
1: चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 27 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ जनरली cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 25 degree to 33 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो जानते हैं 20 जुलाई के दिन क्या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण हुआ जो इतिहास बन गया। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में।
1: Yes, Mukesh. Today on International Chess Day, we celebrate more than just a game. We celebrate a timeless language of strategy, patience and intellect that has connected humanity for centuries. Since the official founding of the International Chess Federation in 1924, this game of kings has transcended borders, cultures and generations, proving that a board of 64 squares can hold infinite possibilities. Whether you are a grandmaster calculating moves deep into the endgame or a beginner learning the power of the first pawn push, chess teaches us that every decision carries weight and every setback is an opportunity to reposition for victory. Today, let's honor the discipline, the beauty of the gambit, and the endless pursuit of mastery. Pick up a piece, make your move, and keep the tradition alive, because in chess, as in life, the next move is always yours to define. And in fact, Mukesh, there's a movie on chess, Shatranj ke Khiladi, if you remember.
0: अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में नहीं ना बात करें, भारतीय संदर्भ में अगर हम शतरंज को लेकर समझें, तो शतरंज जैसा ही एक खेल गुप्तकाल में 319 से 543 ईस्वी के दौरान भी खेला जाता था, जिसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था उस समय में। इसके बाद ये खेल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में शुरू हुआ और सिल्क रूट से होते हुए पश्चिम में फारस तक फैला। फारस पहुंचने पर इस खेल को चतुरंग और बाद में शतरंज का नाम दिया गया। फिलहाल भारत के कई खिलाड़ी शतरंज में दुनिया भर में देखा जाए तो अपनी बुद्धिमता का परचम लहरा रहे हैं, और भारत का भी जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के माध्यम से भी ऊंचाइयों को छू रहा है।

0: एब्सोल्युटली
1: बिल्कुल। और श्रोताओं, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1969 में अपोलो 11 यान ने पहली बार इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाया था, जब नील आर्मस्ट्रांग ने उस वीरान लेकिन जादुई सतह पर अपना पहला कदम रखा। तो उन्होंने केवल एक मिशन नहीं पूरा किया, बल्कि मानवता के लिए संभावनाओं के एक नए युग का द्वार खोल दिया था।

0: नहीं। आज जब हम उस महान उपलब्धि को याद करते हैं तो हम न केवल उस साहस को नमन करते हैं बल्कि अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में छिपे भविष्य के सपनों को भी सलाम करते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो अभी से एक दो दिन पहले ही भारत के पहले निजी तौर पर तैयार किए गए एरोस्पेस जो विक्रम 1 रॉकेट है उसने भी पृथ्वी की पहली कक्षा में अपना पेलोड स्थापित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और ख्याति दिलाई है।
1: That's amazing.
0: बिल्कुल। अब बात करते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में।
1: In 1810, Colombia declared its independence from Spanish colonial rule.
0: जी।
1: The day is celebrated as Colombia's Independence Day. In 1903, the Ford Motor Company delivered its first automobile, marking a milestone in the history of the automobile industry.
0: और 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी आज ही की तारीख को की थी। ये संगठन भारत में दलित वर्गों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए समर्पित था।
1: In 1944, German military officials launched the July plot, a failed attempt to assassinate Adolf Hitler using a hidden bomb.
0: अगर बात करें 1969 की तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के अचानक निधन और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के इस्तीफे के बाद एम हियादतुल्लाह ने भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आज ही की तारीख को पदभार ग्रहण किया था। और 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था जो इस युद्ध का एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ था।
1: In 1976, NASA's Viking 1 spacecraft made the first successful landing on Mars and transmitted the first close-up images from the Martian surface.
0: और अब बात उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए, आज ही के दिन जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा या आज जिनका जन्मदिन है। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त की। आज इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को वे उस समय जाने गए जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार हुए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में भी उल्लेखनीय कार्य किया था। बटुकेश्वर दत्त की भगत सिंह से भेंट 1924 में कानपुर में हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में काम करना शुरू किया और इस क्रम में बम बनाना भी सीखा।
1: Guglielmo Marconi was an Italian physicist and inventor of a successful wireless telegraph or radio. In 1909, he received the Nobel Prize for Physics, which he shared with German physicist Ferdinand Braun. He later worked on the development of shortwave wireless communications, which constitutes the basis of nearly all modern long-distance radio. Marconi's father was Italian and his mother Irish. Educated first in Bologna and later in Florence, Marconi then went to the technical school in Leghorn, where in studying physics, he had very opportunity for investigating electromagnetic wave technique following the earlier mathematical work of James Clerk Maxwell and the experiments of Henry Hertz, who first produced and transmitted radio waves, and Sir Oliver Lodge, who conducted research on lightning and electricity.
0: आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त को। उन्होंने अपनी दिलकश आवाज से लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मदहोश किया। कालजयी फिल्म प्यासा के गीतों को स्वर देने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त के पति थे लोकप्रिय अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरु दत्त। आइए सुनते हैं 1956 में आई फिल्म भाई भाई में गीता दत्त की आवाज में गाया गया ये खूबसूरत सा नगमा।

गीता दत्त को सबसे पहले वर्ष 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला था। गीता दत्त की मुलाकात 1951 में निर्देशक गुरुदत्त से फिल्म बाजी के दौरान हुई। इसके गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाले ने उनकी आगे की तकदीर लिखी और बतौर पार्श्व गायिका फिल्म इंडस्ट्री में वे स्थापित हो गईं।

और श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के 50 और 60 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता अभिनेताओं में से शुमार राजेंद्र कुमार की आज जयंती है। वे जुबली कुमार के नाम से प्रसिद्ध रहे। एक अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी दिलीप कुमार अभिनीत जोगन। इसमें उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उनकी सफलता का सफर यहीं से शुरू हुआ। आइए तो क्यों ना सुना जाए 1966 में आई उनकी फिल्म सूरत से ये खूबसूरत सा गीत।

गूंज उठी शहनाई में पहली बार वो एक अभिनेता के तौर पर दिखलाई दिए। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार का अभिनय आज भी लोगों के जहन में है। उसके बाद उन्होंने धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम और आरजू जैसी कई फिल्मों में सराहनीय अभिनय किया। आइए सुनते हैं 1970 में आई फिल्म गीत से उन पर फिल्माया गया ये एक और सुंदर सा नगमा। तुझको

0: देता हूँ, अगर आज शाम आप दिल्ली में हैं और आप फ्री हैं तो आज आप शाम इंडिया हैबिटेट सेंटर के रूम नंबर 1, 2 और 3 में इमर्जेंट क्वांटम सेंटर भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए नए रास्ते विचार पर चर्चा का आज वहाँ आयोजन होगा, उसमें आप जा सकते हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही शाम 6:30 बजे से सीडी देशमुख ऑडिटोरियम में फिल्म क्लब के तहत विस्पर्स ऑफ द माउंटेन्स भी दिखाई जाएगी, इसमें भी आप शिरकत कर सकते हैं। तो घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम आज सवेरे को यहीं संपन्न किया जाए। इसके साथ ही मुकेश और नीना को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आपके सुपुर्द छोड़ने की।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
4: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
5: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
4: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर

0: नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ जिलों में

0: be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुशसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब माई सांदू से वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे कार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुस से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नजरअंदाज करने की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीम बिल, इनकम टैक्स के तरमीम बिल, बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट का कामकाज खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलों पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहिसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज़ है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बकिया इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी।

0: और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नजदीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड UCC बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड UCC पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के जिले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनाकिब की गई, जिसकी सदारत वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में UCC बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असेंबली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वजीर आला यादव ने नामनिगारों को बताया कि UCC से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाजत नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे, उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्ता कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमा मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सुरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कुन्नूर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नजर कांगड़ा, चंबा और सुरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नजर हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामनिगार से।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नजर पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस।
0: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मोतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में

0: मूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नगर से।
1: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनदिम होने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमेरिका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताज़ा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवी रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताज़ा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शल जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिज़ाइल और ड्रोन के जख़ीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदाराने इनकलाब की फौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाज़े की हालिया शिद्दत के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए एक ताज़ा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफ़र करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफ़र मुलतवी कर दें जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आरजी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर व खौस करें और इसके लिए वो जो भी परवाज़ें दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सिफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को यह हिदायत भी दी है कि वो अपनी जाती मालूमात सिफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएं। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सिफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रखें ताकि वो ताज़ा जानकारी और मजीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के लिए सिफारतखाने ने ये एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, +98 9128 1091 15, +98 9128 1091 09, +98 9128 1091 02 और +98 9932179359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें छठे मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टॉरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अता किया गया है। फ्रांस के खिलाड़ी क्लियान मबापे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोजा बैन अलाकवामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा के शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मालदोवा की अपनी हम मनसब माइया सांदू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोर्ट बिल को मंजूरी

दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान सबसे अच्छा समाधान होता है। 8:46 और 3 सेकंड म्यूजिकल दिल लगे सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आठ बजकर 54 मिनट और 10 सेकेंड म्यूजिकल दिल लगी में आप सुनते हैं दिल से मिले दिल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

0: संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में अपना सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति न तो मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या ज्यादा व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद काश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने राज्य के सभी जिलों और संभागों के साथ व्यापक परामर्श किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवो भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता रहा है। अमरीकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर एक परिचर्चा प्रकाशित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर हैं 0112331048 और 0112371717117। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरेकल।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंग मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूँ म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ ढेर सारी बातें होंगी और एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग। कुल मिलाकर माहौल होगा म्यूजिकल और होंगी ढेर सारी बातें भी, तो बने रहिए साथ और एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि इस जहां में ना हर कोई किसी न किसी तलाश में है। किसी को प्यार चाहिए तो किसी को खुदा, और कोई खुद से ही मिलना चाहता है। और अगर आप भी हैं इनमें से एक, तो शफीक बरेलवी साहब की ये गजल आपके और मेरे लिए भी है। गौर फरमाइएगा जनाब कि ना तो जुस्तजुए दवाए दिल, ना तो चारागर की तलाश है। जो मजाक के गम से हो आशना, मुझे उस नजर की तलाश है। मैं हूं राह रौह, मैं हूं कारवां, मैं हूं राह पर, मैं हूं राह जन। मेरे पेचो खम जो समझ सके, मुझे उस खिज्र की तलाश है। मैं आया भी हूं, मैं निहा भी हूं, मैं कहां नहीं, मैं कहीं नहीं। जो बताए मुझको मेरा पता, मुझे उस खबर की तलाश है।

अच्छा, एक बात और है जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। जब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो उससे ठीक पहले सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही टफ यानी कठिन सा लगने लगता है ना? आपके साथ भी होता है ना ऐसा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज टाइम खराब चल रहा है तो रुक जाना समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। मे बी यू आर नॉट फॉलिंग और फेलिंग, हो सकता है कि आप बस एक मोमेंट दूर हो अपने ब्रेक थ्रू से, उस कामयाबी से जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप थक गए हों, कुछ कंफ्यूज्ड, कुछ टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हों। पर जो लोग इस पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं ना, वो कभी जान ही नहीं पाते कि वो कितने करीब थे अपनी सक्सेस के। सो कीप गोइंग, कीप वर्किंग, भले ही रिजल्ट जो भी हो, क्योंकि आपके एफर्ट्स माने आपकी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, बस शक्ल बदल जाती है। पर आखिर में ये जिंदगी आपको वही लौटाती है जिसके आप सच में हकदार होते हैं।

तो भूल के सारे गम, फोकस कीजिए उन खुशियों पर जो आपके हिस्से हैं। और सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी, जहां अब बात होगी आज के इस खूबसूरत दिन यानी 20 जुलाई की। मौसम का हाल कुछ यूं है कि देश के 60 से 70 फीसदी हिस्सों में बादलों की मोटी परत छाई हुई है। अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अंदाजा है। बुधवार तक भारी बारिश के आसार हैं और इसीलिए येलो अलर्ट यहां पर जारी है। 6 डिग्री तक की कमी आप टेम्परेचर में महसूस कर सकते हैं, यानी मौसम होगा सुहाना। लेकिन अगर आपने की जरा सी भी लापरवाही तो कीमत चुकानी पड़ सकती है भारी। हाइड्रेट रहना है, दिन भर फ्रेश और हल्का खाना है, और बदलते मौसम में इम्यूनिटी को बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है कमजोर। अभी एंजॉय करना है ये अगला ट्रैक, और फिर जब लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या कहता है आज के दिन का इतिहास विद मी यानी नाज़।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर विद मी यानी नाज। 20 जुलाई यानी आज की तारीख साक्षी है मानव सभ्यता द्वारा विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि की। जी हाँ, साल था वो 1969 जब आज ही के दिन इंसान ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के तहत आज ही के दिन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। इसके बाद ये यान पूरे 21 घंटों और 31 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रहा। आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखते हुए कहा था कि ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। और वाकई उनके ये कहे हुए शब्द बिल्कुल सही साबित हुए और इंसान हर बीतते दिन के साथ अंतरिक्ष और उससे जुड़ी हर चीज के और भी ज्यादा करीब पहुंचता ही गया। इंटरनेशनल मून डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में आज का दिन इसी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2021 में मंजूरी दी थी और एक प्रस्ताव पारित किया था और इसी प्रस्ताव के तहत आज के दिन को हर साल इंटरनेशनल

इंटरनेशनल मून डे के तौर पर मनाने की घोषणा भी कर दी थी। तो चलिए हम भी सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन और चलते हैं साथ साथ चांद के पार।

मानसिक रूप से विकलांग एथलीट्स के लिए पहली बार स्पेशल ओलंपिक गेम की शुरुआत आज ही से हुई थी और वो साल था 1968। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी और वो साल था 1924। यही वजह है कि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे के रूप में भी जाना जाता है।

अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक ऐसा नाम जिसे विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है। आज यानी 20 जुलाई के दिन ही 356 ईसा पूर्व में यूनान के मैसिडोनिया में उनका जन्म हुआ था। और आगे बढ़े तो 1960 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाने वाले जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार जी का भी जन्म आज ही के दिन साल 1927 में हुआ था। जुबली कुमार उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस जमाने में राजेंद्र कुमार साहब की ज्यादातर फिल्में थिएटर्स में कम से कम 25 हफ्तों तक यानी सिल्वर जुबली का खिताब जरूर हासिल किया करती थी। और इनके साथ ही आज जन्मदिन है एक और लाजवाब कलाकार का, जिन्हें 70 से 80 के दशक की आर्ट फिल्म्स का पिलर माना जाता था, माना जाता है, और नाम है जिनका नसीरुद्दीन शाह। आज ही के दिन साल 1950 में आपका जन्म हुआ था। मासूम, कर्मा, त्रिदेव, सरफरोश, इकबाल, कृष और अवेंस्टे जैसी न जाने कितनी फिल्में हैं जहां हमने नसीरुद्दीन साहब की अदाकारी को न सिर्फ पसंद किया बल्कि उसके मुरीद भी हो गए। तो आइए नसीर साहब की उसी कमाल की अदाकारी से सजे इस गाने को सुनते हैं और उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी बधाइयों के साथ उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ भी करते हैं।

0: इंडिया ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग। पर्सनल लोन
2: बटुकेश्वर दत्त, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्हें मुख्य रूप से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए जाना जाता है, आज यानी 20 जुलाई को उनका स्मृति दिवस भी है। असेंबली बम कांड के मुकदमे में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता था, भेज दिया गया था। लेकिन वहां भी भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और भगत सिंह के साथ भूख हड़ताल की, जिसके सामने ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और कैदियों के अधिकारों में इसके बाद कई सुधार हुए। जेल की कठोर यातनाओं को झेलते हुए वो काफी बीमार रहने लगे और फिर 20 जुलाई 1965 को कैंसर के चलते उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा की बेहद सुरीली और मशहूर प्लेबैक सिंगर गीता दत्त जी की भी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने 1940, 50 और 60 के दशक में हिंदी और बंगाली सिनेमा में अपनी अनोखी आवाज का जादू बिखेरा था। शुरुआत में उन्हें सिर्फ गंभीर भजनों या फिर दर्द भरे गीतों के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर साल 1951 में आई फिल्म बाजी ने उनके करियर की दिशा बदल दी और फिर संगीतकार ओपी नैयर ने जब उनसे ये गाना गवाया तो उनकी वर्सिटैलिटी खुलकर सामने आ गई।

कलम थमाओ हाथ में उसके, उसे किताबों का ज्ञान दो, बेटों की तरह ही अपनी बेटी को भी ऊंची उड़ान दो। एक बेटी जो पढ़ गई तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी, वो बदलेगी कल का मुस्तकबिल, बस उसे एक मौका और थोड़ा सम्मान दो।

और यही अपील करता है आपसे भारत सरकार का राष्ट्रव्यापी अभियान भी, जिसका नाम और नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश में गिरते लिंगानुपात को सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना इस अभियान के लक्ष्यों में शामिल है। बस अब जरूरत है तो इस बात की कि ये नारा हर घर से निकले और हर बेटी न सिर्फ सपने देखे बल्कि हम सबके सहयोग से अपने उन सपनों को पूरा भी कर सकें।

इसी आशा के साथ म्यूजिकल दिल लगी के आज के सफर को हमें थामना होगा यहीं। मैं मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 यानी 10:30 पर। दिल का मेल बॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर, जिससे पहले जानिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष

0: के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालडोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालडोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मालडोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment

0: की श्रृंखला 2-1 से जीती। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बात करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी।
1: मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगे। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचेंगे। वहां वे राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे मोल्डोवा के प्रधानमंत्री रिस्ट्रिजन मिकोस्की से भी मिलेंगे और नॉर्थ मैसेडोनिया के असेंबली को संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू भारत नॉर्थ मैसेडोनिया व्यापार फोरम को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को रोमानिया पहुंचेंगी। रोमानिया के दो दिन की यात्रा में वे यहां के राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री और सीनेट अध्यक्ष से मिलेंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं आशा निवेदी।
0: ईरान में अस्थिरता और हाल में संघर्ष तेज होने को ध्यान में रखते हुए तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। दूतावास ने सुरक्षा हालात में सुधार आने तक किसी भी उद्देश्य के लिए ईरान की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है। ईरान में पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध उड़ान विकल्पों के जरिए अंशकालिक तौर पर ईरान से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए।
2: ईरान में रहने पर विचार करने वाले भारतीय नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय नागरिकों को स्थिति से पूरी तरह अवगत रहने के लिए समाचारों पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। भारतीय नागरिकों को सैन्य गतिविधियों की अधिकता वाले ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में जाने से बचना चाहिए। नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों को निर्देशों का सावधानी से अनुपालन करने को भी कहा गया है। दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल दूतावास में अपने ब्यूरो का पंजीकरण कराने की सलाह दी है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +98912810915 +98912810909 +98912810902 और +989932179359 जारी किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं इशिका।
0: अमेरिका ने लगातार नवी रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
3: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी इराक में ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत हो गई। इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी जहां ईरानी हमले में दो अमरीकी सैनिक मारे गए और एक लापता था, लेकिन अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारतीय समुदाय के एडवोकेसी ग्रुप ने अमेरिकी कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक और आवर्जन सेवा से यह अपील की है कि वे विद्यार्थियों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा पाबंदियों पर नई 4 साल की सीमा लागू न करें। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज में नीति और रणनीति की प्रमुख खांडे राव कांड ने कहा कि अमरीका की प्रतिस्पर्धा क्षमता

0: को खुद नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रोग्राम या रिसर्च के बीच में ही बाहर जाना पड़ सकता है, लैब्स को जरूरी प्रतिभा को खोना पड़ सकता है और अमरीका अपनी नवाचार पाइपलाइन इस तरह प्रतिस्पर्धियों को सौंप देगा।
1: ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने विदेशी विद्यार्थियों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए वीजा नियमों को सख्त कर दिया है। इससे वो पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के देश में अनिश्चित काल तक रह सकते थे। समूह ने प्रशासन से अपील की है कि वे इसे लागू करने की प्रक्रिया टाल दें, विद्यार्थियों की सुरक्षा करें और अमेरिका के अनुसंधान और नवाचार को बचाए रखें। 2025 में नए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी नामांकन में पहले ही 17% की गिरावट आ चुकी है। ये महामारी के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: गुयाना नौका दुर्घटना में अब तक 67 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कल गुयाना में 116 यात्रियों और चालक दल के 17 सदस्यों को लेकर जा रही एक बड़ी नौका समुद्र में डूब गई थी। कई लोग अब भी लापता हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने मीडिया को बताया कि इस नौका की क्षमता 300 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने की थी। लोक निर्माण मंत्री जुआन एडगिल ने कहा कि कल स्थानीय समयानुसार रात 11:01 पर नौका के संकटग्रस्त होने की सूचना मिली और इसके बाद व्यापक बचाव अभियान चलाया गया। आपात टीमें अब भी लोगों की तलाश कर रही हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
2: One final act of this incredible summer of soccer for Rodri to lift the trophy and for the celebrations to begin both here and overseas. And when Rodri's ready, here we go. Spain have won the World Cup.
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलजमरू मध्य में तनाव और गहराया। भारत ने बढ़ती अस्थिरता के बीच नागरिकों को ईरान यात्रा स्थगित करने का परामर्श दिया। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीता। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good morning. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the world news. The headlines. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with her Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tension deepens. India advises its citizens to postpone travel to Iran amid rising instability. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And in men's cricket, England beat India by 27 runs in third ODI to seal three-match series 2-1.

उसने कहा, सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना। अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकान से लौटा करते हैं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ, जिन आंखों में डूबो, जिस दिल में भी उतरो, मेरी तलब आवाज न देगी। लेकिन जब मेरी ख्वाहिश और मेरी चाहत की लौ इतनी तेज और इतनी ऊंची हो जाए कि ये दिल रो दे, तब तुम लौट आना। और आप सब भी लौट आए हैं ये मुझे मालूम है, और मैं यानी नाज भी लौट आई हूँ, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम आपका फेवरेट दिल का मेल बॉक्स, जहाँ आप भेज रहे हैं प्यार भरे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आपके हम तक पहुँचने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर नए श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहूंगी कि fmgoldair@gmail.com पर आप करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आपको भेजना है, तो हमारा नंबर है 9868868753 पर। इसके बाद क्या करना है वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिला रही हूँ कि लिखना है अपना नाम, कहाँ से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, ये सब आप लिखेंगे, और साथ ही शेर व शायरी हो जाए, कोई अच्छी सी बात हो जाए तो बस बात बन जाए। तो चलिए रुक कर लेते हैं ईमेल्स का। पहली फरमाइश हम पूरी करें उससे पहले चलिए सोहेल शेख जी का मैसेज खोल लेते हैं, और फरमाइशी गीत तो लिखकर भेजा ही है इन्होंने। बबलू ठेकेदार, शेख शगिर, शेख वजीर, सोहेल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और सैयद अजलान इसमें शामिल हैं। मोताला बाजार से, शहर का नाम इन्होंने नहीं लिखा है, मोताला बाजार से भेजा है ये ईमेल। और इसके साथ ही सीताराम कांगड़ा जी का भी मैसेज आ गया है, एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट इस मैसेज में शामिल हैं। और उमेश कुमार गौर जी का भी मैसेज आ गया है, लिख रहे हैं बुलंदशहर से कि किसी भी सदाबहार गाने में हमें शामिल करने की कृपा कीजिएगा। जी तो बिल्कुल, आपका आदेश सराखों पर। अगला जो गीत आप सुनने वाले हैं उस बड़ा ही खूबसूरत गीत है और आज के मौसम पर बिल्कुल सटीक बैठता है। फरमाइश भेजी है सुनील गायकवाड़ जी ने, सुषमा गायकवाड़, अनन्या और राजवीर इनके साथ शामिल हैं, पुणे महाराष्ट्र से आई है इस खूबसूरत गाने की फरमाइश। तो चलिए हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं और उसके बाद जल्दी से वापस लौट कर भी

किसी से सिर्फ इतना ही दूर होना कि उसे आपकी अहमियत का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी दूर ना होना कि वो आपके बिन जीना सीख जाए। चंडीगढ़ से आया है ये मैसेज सतीश अनेजा जी के साथ। बिमला अनेजा इस मैसेज में शामिल है और आपकी इस बात से मुझे भी एक बात याद आ रही है, तो गौर फरमाइएगा। उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें, उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें, अकेले रहने की आदत ही न पड़ जाए हमें। हर एक बात पे कहता नहीं है ये दिल लबैक, लबैक माने हाजिर रहना, प्रेजेंट रहना। तो हर एक बात पे कहता नहीं है ये दिल लबैक, पसंद आती नहीं हर किसी की राय हमें। हमारे दिल तो मिले आदतें नहीं मिलती, उसे पसंद नहीं कॉफी और चाय हमें। इसी मैसेज में एक और बात लिखी है इन्होंने कि जिसे आप सबसे ज्यादा चाहो उसे जिंदगी में कभी मत आजमाना, क्योंकि अगर वो गुनहगार निकला तो दिल आपका ही टूटेगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ अगला मैसेज शामिल हो रहा है चंडीगढ़ से ही। राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना ने भेजा है ये मैसेज, और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से भी शामिल हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं आपको इस मैसेज को भेजने के लिए। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आया है, जो कि आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने भेजा है। इन्होंने भी बड़े खूबसूरत गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है। और एक और मैसेज आ गया है, सईद अब्बासी जी ने ये भेजा है। निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और पूरा अब्बासी परिवार इसमें शामिल हैं। और इन्होंने भी बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। तो चलिए वक्त हो चला है एक और गाना सुनने का, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है होली चौक उत्तम नगर से।

ये भी बड़ा खूबसूरत गाना है, रफी साहब की आवाज में। जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु ने इस गाने को सुनना चाहा है होली चौक उत्तम नगर से।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से

गुजरा हुआ कल एक ख्वाब होता है, आने वाला कल एक उम्मीद जगाता है। ये जो आज का समय है ना जनाब, यही तो जिंदगी जीने का असली मजा लाता है। और वक्त की लहरों पर जो संभल जाते हैं, वही लोग अक्सर इतिहास बनाते हैं। जो कद्र करते हैं आज के हर पल की, वही कल कामयाबी के शिखर पर मुस्कुराते हैं। सत प्रकाश सनोठिया जी ने रोहिणी दिल्ली से भेजे ये दो मैसेज, बड़ी ही खूबसूरत बात कही और हम कह रहे हैं आपको शुक्रिया इन मैसेजेस को भेजने के लिए। और इन्हीं के साथ अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भेजा है, जिसे कौशल्या देवांगन, रोशन लाल देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन ने लिखा है कि मुस्कुराने की आदत भी कितनी अजीब है हमारी। हम तुम्हें याद करते हैं और मुस्कुरा देते हैं। किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती, बल्कि किसी के दूर रहने पर भी उसे पल पल याद करना भी मोहब्बत ही तो होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको ये मैसेज भेजने के लिए। और जैसा कि मैं नोटिस कर रही हूँ, ज्यादातर लिसनर्स आज राजेंद्र कुमार जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है। नसीरुद्दीन शाह साहब को भी याद कर रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं। और एक गीत राजेंद्र कुमार जी का हम सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, जिसकी फरमाइश कई मैसेजेस और कई ईमेल्स में हमारे पास आई है। लेकिन उससे पहले कुछ और मैसेजेस जरूर हम शामिल करेंगे। गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी का भी मैसेज आया है, गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से। और इन्होंने भी बड़े खूबसूरत गीत की फरमाइश की है भाई। और विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से, इन्होंने भी कहा है कि राजेंद्र कुमार जी का गीत हमें जरूर सुनाएं। चलिए सुन ही लेते हैं फिर। बड़ा ही प्यारा गीत है ये भी और इसकी फरमाइश हमारे पास आई दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब से, नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, अशरफ अली, महेश अग्रवाल, सिराज मिथुन, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब दिल्ली से। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब भी, बाजार रोड, मुंगीसापुर, आई थिंक यही नाम है, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और सभी को डेडिकेटेड है ये गाना, जो कि राजेंद्र कुमार जी को याद कर रहे हैं। तो चलिए साथ में सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

कलानौर से मैसेज आया है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का भी प्यार भरा नमस्कार भेजा है और एक बड़ा ही प्यारा गाना सुनने की फरमाइश भी इन्होंने लिखकर भेजी है। अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से ये ईमेल इन्होंने भेजा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज के लिए। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं अनिल मोहन जी का, पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से आया है। उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक इनके साथ इस मैसेज में शामिल हैं। और अभी अभी सईद अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है कि ये हवा का झोंका है या किसी ने चुपके से हमारे कानों में कुछ कहा है। ऐसा महसूस हुआ कि एफएम गोल्ड पर नाज आई है जिसने श्रोता गणों के दिल में हलचल मचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और निगहत परवीन अब्बासी और फरदीन सुहान अरजान इनके साथ शामिल हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से इन्होंने भेजा है ये मैसेज। इसके साथ ही अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूं प्रकाश गोगिया जी का भी। लिख रहे हैं कि जब विपदा का काला बादल छाए, मन का धीरज कभी टूटने ना पाए, रख हौसला और कदम बढ़ाता चल, तेरी हिम्मत ही तुझे जीत दिलाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। कड़कड़ डूमा दिल्ली से आपने ये ईमेल किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अच्छी सी बात और इस ईमेल के लिए भी।

अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी साहब ने भी कर दिया है मैसेज। दाऊद सराय सहारनपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं हम कुमकुम जी का। विजय सुरलकर और रतन माला इसमें शामिल है और आई थिंक मैं ये ईमेल पहले ही शामिल कर चुकी हूँ। देखिए ये चीटिंग मत कीजिए, हाँ सब्जेक्ट में आप लोग नाम बदल देते हैं लेकिन अंदर वही नाम होते हैं, ये थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है। कोशिश हमारी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स को हम शामिल कर सकें प्रोग्राम में। तो आप भी दीजिए हमारा साथ और सुनिए फिलहाल ये अगला गाना जिसकी फरमाइश आई हमारे पास रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रितेश और पूरे संघई परिवार की ओर से परभड़ी महाराष्ट्र से।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार ने भी भेज दिया है ईमेल और इन्हीं के साथ आ गया है मैसेज। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना जी का भी, और इन्होंने भी भेजी अपनी फरमाइश। इसी के साथ गांव खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू नव्या ने भी भेजा मैसेज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे ईमेल्स भेजने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे अब ठीक 11:10 पर। प्रोग्राम होगा तस्वीर, करेंगे सैर, घूमेंगे फिरेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये गाना और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। संसद परिसर में श्री मोदी ने मॉनसून सत्र को उत्पादक बनाने पर बल दिया।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

0: ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पर श्री बिरला ने कहा कि विधायी और अन्य संसदीय कार्यों का सुचारू संचालन और अधिकतम कार्य निष्पादन सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने कहा कि इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का कद बढ़ेगा। श्री बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है। अमरीकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पंजाब सरकार ने मनरेगा से विकसित भारत जी रामजी योजना में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के अवसरों की सुरक्षा और राज्यों में विकास कार्यों के निर्बाध निष्पादन को भी सुनिश्चित किया गया है। 1 जुलाई से पंजाब में लागू हुई विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत वेतन के लिए 50 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। अतिरिक्त समय में गोल करके फेरान टेरिस ने अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament has begun. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. Now, we'll take you live to the session.
2: Kulam, Kerala mein hua. Sri Pyarelal Sangwar, Uttar Pradesh ke Ghatampur Sansadiy Nirvachan Kshetra se 13vi Lok Sabha ke sadasya the. Isse purve do karyakaron ke liye Uttar Pradesh Vidhan Sabha ke sadasya bhi rahe. श्री प्यारे लाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है।
1: Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings.
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: The Prime Minister expressed hope that the monsoon remains both proactive and productive, and the monsoon session also proves to be productive. He said that India's global profile is gaining universal recognition and acceptance. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself. He said, in just 1 month, the nation has achieved numerous milestones and a series of accomplishments that fill every citizen with pride. President Draupadi Murmu will hold delegation-level talks with the Maldivian counterpart Maya Sandu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC Bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The bill will now be tabled in the monsoon session of State Assembly beginning today. Delhi Metro Rail Corporation DMRC has informed that the interchange facilities and gates are now open at Rajiv Chowk and Central Secretariat Metro stations. Earlier, DMRC said that Janpath, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Central Secretariat and Seva Tirth Metro stations have been closed till further instructions due to security reasons. In Jammu and Kashmir, 11 persons were killed and 8 are missing as rains triggered flash floods and landslides in the twin border districts of Rajouri and Poonch yesterday. Hundreds of people were rescued and shifted to safer places in multi-agency relief and rescue operations. Union Home Minister Amit Shah reviewed the situation following the incident. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of recent increase in levels of instability and conflict in Iran. It has advised Indian nationals intending to travel to Iran for any purpose to postpone travel for the time being until the security environment improves. It said Indians already in Iran should consider temporarily exiting Iran using available flight options. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. And that is the end of this news bulletin.

गुड मॉर्निंग वंस अगेन. उम्मीद है कि चाय की प्याली आपकी अभी भी होगी गर्म और खिड़की से बाहर का नजारा होगा जरूर सुहाना. और इसी होप के साथ मैं यानी नाज एक बार फिर आ गई हूँ आपसे बातें करने और आपको एक बड़ी ही खूबसूरत सी जगह की सैर करवाने भी.

क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 11:11 और 24 सेकंड्स भी। एंड एज यू ऑलरेडी नो, ये समय है सैर सपाटे का, ये समय है तस्वीर का। और आज तस्वीर में आप मेरे साथ चल रहे हैं उस जगह जिसे जाना जाता है मिनी लंदन या फिर गोरों के गांव के नाम से भी। यूरोपियन शैली के बड़े बड़े बंगले और इंग्लिश लाइफस्टाइल के चलते ये नाम इस जगह को मिले हैं। और पुराने नामों की अगर हम बात करें तो लपरा, मुलुक या फिर द गंज, ये कुछ नाम हैं जो इस जगह की पहचान रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब तक आप पहचान ही गए होंगे कि आज झारखंड चल रहे हैं हम, जहां मैक्लुस्की गंज पहुंचकर रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और साथ ही एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने भी, जैसे कि ये।

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 65 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मौजूद है मैक्लुस्की गंज, जहां की सैर आज आप कर रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ। और प्रोग्राम कौन सा चल रहा है? तस्वीर। 1930 के दशक में एंग्लो

0: इंडियन समुदाय के लिए एक खास बसावट के रूप में इस जगह को स्थापित किया गया था, और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक यहाँ मौजूद खूबसूरत बंगलों, जंगलों और नेचुरल ब्यूटी के लिए ये जगह जानी जाती है। अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की, जो कि कलकत्ता के एक व्यापारी थे, उन्हें इस जगह को बसाने का श्रेय जाता है। एंग्लो इंडियंस के लिए एक मातृभूमि या फिर मुलुक के रूप में फिर लगभग 10 सालों के अंदर ही ये जगह करीब 400 एंग्लो इंडियन परिवारों का घर बन गई। हालांकि बाद में यहाँ सिर्फ 20 परिवार ही बचे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर लोग यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर दूसरे यूरोपियन देशों में चले गए। अब यहाँ मौजूद ज्यादातर हवेलियों को गेस्ट हाउसेज में बदल दिया गया है, जहाँ आप ठहर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ का रॉयल अंदाज।
1: सपना मेरा सच्चा।

लव यानी प्यार हो जाएगा आपको भी इस जगह यानी मैक्लुस्की गंज से जब आप यहां पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचेंगे कैसे पहले ये जान लीजिए। तो जनाब, समय की अगर है आपके पास कमी तो पकड़िए फ्लाइट सीधा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए, जो कि मैक्लुस्की गंज का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। इससे आगे आपको तय करनी होगी लगभग 71 किलोमीटर की दूरी, जिसके लिए एयरपोर्ट से बाहर ही आपको प्राइवेट टैक्सीज या कैब्स आसानी से मिल जाएंगी। बाय ट्रेन रांची से हटिया जाने वाली कई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन्स मैक्लुस्की गंज रुकती हैं, और अगर आप दिल्ली या फिर कोलकाता की तरफ से आ रहे हैं तो जम्मू तवी एक्सप्रेस या फिर कोलकाता से शक्तिपुंज एक्सप्रेस के जरिए भी मैक्लुस्की गंज तक पहुंच सकते हैं। और बाय रोड रांची से यहां तक के लिए बढ़िया कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। आपको बता दें कि बेहद ही खूबसूरत और घुमावदार रास्ता आपको मिलेगा बाय रोड रांची से यहां तक के लिए बढ़िया कनेक्टिविटी है और इसे आप खूब इंजॉय करेंगे, ये मेरी गारंटी है।

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure.

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सर्दियों का मौसम यानी अक्टूबर से फरवरी के बीच का टाइम बेस्ट है मैक्लुस्कीगंज पहुंचने के लिए, जब मौसम होगा खुशनुमा, ठंडा और मददगार आपके लिए, क्योंकि मैक्लुस्कीगंज की सैर तो भाई पैदल ही होनी चाहिए, तब ही आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। कैंप फायर इस दौरान आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जंगलों में ट्रैकिंग और पिकनिक मनाने के लिए भी ये मौसम और ये जगह बेस्ट रहेगी आपके लिए। इसके बाद मार्च या फिर अप्रैल के दौरान अगर आपका प्लान बनता है तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है। मौसम में थोड़ी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन हर तरफ खिले पलाश के लाल फूलों को आप जरूर देख पाएंगे और फोटोज क्लिक करने के लिए ये बेस्ट लोकेशन आपको यहां पर मिल जाएगी।

मॉनसून यानी अभी यानी जुलाई से सितंबर के बीच ठीक ठाक बारिश आपको यहाँ पर मिलेगी थोड़ी उमस के साथ। मई से जून के बीच यानी गर्मियों में आपको यहाँ आने की सलाह नहीं दूंगी मैं, क्योंकि तापमान इस दौरान यहाँ का पहुंच जाता है 38 डिग्री या कभी कभी उससे भी पार। तो इस मौसम को छोड़कर आप कभी भी आइए मैक्लूस्की गंज और फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये अगला ट्रैक।

मैक्लुस्कीगंज के बसने से पहले इस पूरे वन इलाके को लपरा कहा जाता था और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी पहले यही था। फिर साल 1933 में कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एंग्लो इंडियंस के लिए जब इस जगह को बसाया तब इसे मुलुक के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब मातृभूमि से है। स्थानीय निवासियों, बंगाली सैलानियों और साहित्य द्वारा इस जगह को अक्सर गंज कहकर पुकारा गया। और यहां आपको बता दूं कि साल 2016 में आई फिल्म अ डेथ इन द गंज इसी जगह यानी मैक्लुस्कीगंज में फिल्माई गई है। कौन कौन सी खास जगहें हैं यहाँ यानी मैक्लुस्कीगंज में जहाँ आप अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद ले सकते हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी इस अगले सॉन्ग को सुनने के बाद।

झारखंड के मैक्लूस्की गंज की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। छोटा नागपुर पठार के किनारे और समुद्र तल से लगभग 1500 फीट ऊपर जंगल और पहाड़ियों से घिरे मैक्लूस्की गंज में आप भारत के कॉलोनियल काल के अतीत को देख सकते हैं। यहाँ मौजूद कॉलोनियल बंगलोज इसमें आपकी मदद करेंगे, जो इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है और जिनकी स्लैंटेड रूफ्स, बड़े बरामदे, चिमनी और चारों तरफ फैले खूबसूरत गार्डन्स आपको वो फीलिंग देंगे जिसकी तलाश आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी को यकीनन होगी। ज्यादातर बंगलोज अब हेरिटेज होमस्टे में बदल चुके हैं, जिनमें राणा कोठी और गार्डन कॉटेज जैसी कुछ जगहें हैं जो आपकी मुलाकात सीधी सीधी एंग्लो इंडियन कल्चर से करवाती हैं।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: मैक्लुस्की गंज की एक और मशहूर जगह के बारे में अब आपको बताने जा रही हूँ, जिसे जाना जाता है सर्वधर्म स्थल के नाम से, जो कि एक अनोखा और बड़ा ही पवित्र परिसर है और भारत की अखंड एकता का प्रतीक भी आप इस जगह को मान सकते हैं। खासियत इस जगह की ये है कि यहाँ एक ही परिसर के अंदर आपको एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा और एक चर्च भी मिलता है, जो कि अपने आप में बड़ा कमाल है। इसके बाद डूगा डूगी नदी का किनारा भी एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जरूर जाना चाहिए। मैक्लुस्की गंज के पास से होकर बहने वाली ये एक छोटी और पथरीली नदी है, जिसके आसपास का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। फिर सीताकुंड भी है यहाँ, जो अगेन जंगलों के बीच मौजूद है और एक बड़ा ही खूबसूरत नेचुरल स्प्रिंग यानी प्राकृतिक जल स्रोत है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता ने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था और इसी कुंड में वो स्नान किया करते थे। यही वजह है कि इस कुंड का पानी बहुत पवित्र माना जाता है और ये जल स्रोत कभी नहीं सूखता, ऐसी भी मान्यता है। बातें मैक्लुस्की गंज से जुड़ी आगे भी रहेंगी जारी, लेकिन अभी आ गई है अगले ट्रैक को सुनने की बारी।

जागृति विहार भी एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए मैक्लूस्की गंज की सैर के दौरान। ग्रामीण कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से इस जगह को बनाया गया है, जहां की वास्तुकला मिट्टी और बांस से पूरी तरह इंस्पायर्ड है।

कुल मिलाकर इस जगह का पुराना चार्म आज भी वैसा ही है, जहां वक्त आज भी थोड़ा ठहर कर चलता है। हवाओं में पुराने ओक के पेड़ों की सरसराहट है और रास्तों पर गुजरे जमाने की परछाइयां, जिनके साथ हम भी चल रहे हैं और सुनने वाले हैं एक और खूबसूरत सॉन्ग, जिसे सुनकर जब लौटेंगे तब बात करेंगे मैक्लुस्कीगंज के स्वाद यानी यहाँ के खाने की।

और जैसा मैंने बोला था आपको कि बात करेंगे मैक्लूस्की गंज के स्वाद की चलते चलते, तो चलिए बताती हूँ आपको कि ठीक यहाँ के आर्किटेक्चर की ही तरह यहाँ के खाने में भी आपको ब्रिटिश और यूरोपियन कल्चर का फ्यूजन देखने को मिलेगा, चखने को भी मिलेगा। साथ ही ये जगह झारखंड में है तो यहाँ का लोकल स्वाद भी आप यहाँ पर चखेंगे। एंग्लो इंडियन डिशेस में येलो राइस विद जलफ्रेजी जरूर आप चखिएगा, जिसे तीखी वेज या नॉन वेज करी के साथ परोसा जाता है। पेपर वाटर के नाम से साउथ इंडियन रसम जैसी एक ड्रिंक आप यहां पाएंगे, जो बेसिकली काली मिर्च, लहसुन और इमली से तैयार की जाती है। सूप या फिर चावल के साथ इसे परोसा जाता है। घर के बने जैम और जेलीज की भरमार आपको यहाँ पर मिलेगी, जिन्हें आप सिर्फ टेस्ट मत कीजिएगा बल्कि अपने साथ लेकर भी जरूर जाइएगा। और फिर जरूर लुत्फ उठाइएगा यहाँ मिलने वाली फेमस झारखंडी थाली और बंगाली थाली का भी। और अभी वक्त हो गया है कि मैं लूं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्द फिर किसी नए सफर पर चलेंगे हंसते हंसते। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और एक प्यार भरा नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी

0: भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the House till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 p.m. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are boundless as space itself.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र

घर आंगन। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ घर आंगन कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं आप। आपका स्वागत सत्कार करती हूं मैं, तो स्वीकारें मेरा यानी मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी सुन रहे हैं आप। तो अब वक्त है हमारे सेगमेंट आज के प्रश्न का। तो आज आपको बताना है कि हाउस हेल्प यानी कि सेवा मित्र का अचानक से कहना कि आज वो नहीं आ पाएगी, इसके बाद की कहानी आप सभी की अपनी अपनी ही होगी। तो देरी किस बात की, लिख भेजिए अपने किस्से अपने जज्बात हमारे पास। हमारा मेल है fmgoldga@gmail.com। अचानक काम वाले के ना आने की खबर किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं होती है ना। और हम सब के जीवन की आप बीती में ये बात कभी न कभी शुमार भी जरूर होती है ना दोस्तों। तो घर को घर बनाए रखना और कोई छोटा काम उसे समझना, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। घर को घर बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हम सभी जानते हैं। घर चलाना भी एक कला है और हम महिलाएं किसी भी इमरजेंसी से निपट सकती हैं। तो फिर इसके अनुभव आप सबके भी होंगे बहुतेरे। लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और इसी बात के साथ ये सुविचार आज का कि वक्त पड़ने पर ही किसी की कीमत जान पड़ती है, तो हंसते मुस्कुराते हुए अपने सेवा मित्रों के श्रम और सम्मान दोनों का ख्याल है जरूरी।

इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म से। और दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में, जिसमें हमने आज आप

आपके लिए प्रश्न दिया है कि आपको बताना है अचानक से आपकी हाउस हेल्प या सेवा मित्र का ये कहना कि आज वो नहीं आ पाएगी। इससे जुड़े रोचक अनुभव आप सभी के अपने अपने होंगे, जिसे आपको बताना है हमें fmgoldga@gmail.com पर। और देखिए, समय और जीवन हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, और आज का जो दिन है वो इतिहास की दो घटनाओं का साक्षी है। तो इस ऐतिहासिक घटना का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ दोस्तों, जिनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि आज 20 जुलाई है। ये दिन हम मनुष्यों की तार्किक और रणनीतिक बुद्धि को और उसके कौशल को बढ़ाने वाले खेल शतरंज को समर्पित है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में क्षय और मात के इस खेल को चतुरंग चतुरंजी के नाम से पुकारा जाता था, जिसे अब चेस के नाम से भी हम पुकारते हैं और जानते हैं। तो 20 जुलाई यानी आज ही के दिन पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना से इस खेल को पूरे विश्व में पहचान मिली थी, और 1959 में अपोलो 11 मिशन के जरिए मानव ने पहली बार, जानते हैं, आज ही के दिन चंद्रमा पे कदम रखा, और संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में घोषित किया। हर साल एक थीम के साथ इस दिन को मनाते हैं हम, और इस साल की थीम है दोस्तों, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। दोस्तों, ये दिवस हमें सीख दे जाते हैं कि जीवन में हर काम धैर्य के साथ और संयम के साथ सोच समझकर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अपने सपनों को इतना उन्मुक्त बनाना चाहिए कि चांद की सीमाएं भी छोटी हो जाएं।

और दोस्तों, आप हमारे साथ हैं 100.1 MHz पर घर आंगन आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं आज की प्रश्नावली। तो आज की जो प्रश्न है आपके लिए, वो है आपको ये बताना है कि आपके सेवा मित्र का अचानक से ये कह देना कि वो आज नहीं आ पाएगी। इससे जुड़े रोचक अनुभव आपके जीवन में ज़रूर होंगे, क्योंकि देखिए, घर एक ऐसा मसला है जो हम सभी की ज़िंदगी में उसे संभालना सबसे बड़ी खूबी होती है। और घर को संभालना, घर की नियमितताओं में चलना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। बाहर की सारे चीज़ों को एक साथ संतुलित रखते हुए घर को संभालना अपने आप में वो खूबी है जिसमें हमारे सेवा मित्र जो हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा दौर ज़रूर आता है कि कभी ऐसी स्थिति उनके साथ बने जब वो ना आ पाए और हमें अचानक से पता चले, तो फिर उस समय हमें सारा काम फटाफट करना होता है, क्योंकि हमें अपनी बाकी दिनचर्या को भी पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों, आगे भी बात करते रहेंगे आपकी इन अनुभवों के लिए। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं fmgold@gmail.com पर। और अब बात करते हैं उनकी जिनसे मिलकर आप खुश होते हो, नहीं, जो आपसे मिलकर खुश होते हैं। तो साथियों, हमारी दुनिया का जो विस्तार है ना, हमारी जो टेक्नोलॉजी की देन है, उसके कारण और बढ़ गया है। तो कभी आपने गौर किया है, हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, इनमें कितनों का चेहरा हम खुश होते हुए देख पाते हैं और कितने ऐसे हैं जो हमें देख कर मुस्कुरा उठते हैं। भाई, अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के लिए तो हम समय निकाल ही लेते हैं दोस्तों, जो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन जिन्हें हम अच्छे लगते हैं, जो हमें देखकर सचमुच खुश हो जाते हैं, उनके बारे में क्या? तो आप बताइए, सोचिए ज़रा इस बारे में। भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार वो कहते हैं कि दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है दोस्तों। यानी भीड़ बढ़ रही है लेकिन साथ सभी का कम हो रहा है। ऐसे में हमारी ज़रूरत से इतर कोई ऐसा नंबर भी तो हो सकता है ना, जिसे हमारी कॉल का इंतज़ार रहता हो। कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, दादा नानी, या शायद कोई पुराना दोस्त जिसकी फ्रेंड लिस्ट ज़्यादा बड़ी ना हो। इसीलिए हमारी मौजूदगी जिनकी खुशी है, उन्हें अपनी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त देना ही असली उपहार होता है। क्योंकि महंगे तोहफे समय के साथ पुराने हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा याद रहता है।

जी हाँ, रात और दिन इस फिल्म से आप लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को सुन रहे थे। और देखिए, दिल की गिरहें खोलने का समय है, क्योंकि आपके लिए हमारा प्रश्न तैयार है। आपको बताना है कि हाउस हेल्प यानी सेवा मित्र का अचानक आपके लिए ये कह देना फ़ोन करके कि वो आज नहीं आ पाएगी, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आपके क्या जज्बात होते हैं, क्या बीतती है आप पे, ये सब कुछ जानने के लिए हम उत्सुक हैं। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए घर आंगन, आपका अपना ये कार्यक्रम 100.1 पर। दोस्तों, हम सभी फ़ोन के आदि हैं, है ना, और स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेस के प्रयोग से आज हमारी जो पीढ़ी है वो सचमुच स्मार्ट होती जा रही है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? भाई देखिए, इनके बगैर तो कोई काम नहीं होता है ना, क्योंकि स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन उसका अगर स्मार्ट तरीके से हम प्रयोग करते हैं तभी वो पूरी तरह से स्मार्ट हो पाता है ना, क्योंकि वही तय करता है कि हमारी डिवाइस कितनी सुरक्षित और कितनी लंबी चलने वाली है। तो आज आपसे बात करते हुए आपको बता देते हैं कि स्मार्ट डिवाइस का स्मार्ट प्रयोग कैसे होते हैं। तो देखिए, लगभग 6 अरब लोग दुनिया में ऑनलाइन रहते हैं दोस्तों, ऐसे में सवाल फोन रखने का और उसके डिवाइस को किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए इसका होता है। तो स्मार्ट डिवाइस स्मार्ट रहने के लिए हमारे हेल्थ को भी स्मार्ट रखे, इसलिए बहुत सी बातों को जानना हमें चाहिए। और डॉक्टर्स बताते हैं कि हर समय स्क्रीन के सामने रहने वाले लोग हर 20 मिनट बाद यदि 20 सेकेंड के लिए लगभग 20 फीट दूर देखने का अभ्यास करें तो उनकी आंखों पे जो जोर पड़ता है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अपने ऑनलाइन अकाउंट का मजबूत पासवर्ड हमेशा रखना चाहिए दोस्तों, जिनमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स ज़रूर शामिल करने चाहिए, और उनकी सुरक्षा के लिए समय समय पर उन्हें अपडेट भी करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ आदतन डिवाइसेस के प्रयोग से हमें बचना चाहिए, ज़रूरी होने पर ही इनका प्रयोग हमारे साथ हो, इनकी आदत हमें बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। साइबर स्वच्छता केंद्र भी दोस्तों सुरक्षित सॉफ्टवेयर सोच समझकर लिंक खोलने और डिवाइस को मालवेयर से बचाने की सलाह देते रहते हैं। इसीलिए फ़ोन जिंदगी को चलाने के बजाय ज़िंदगी को और बेहतर बनाए, और नोटिफिकेशन हमारे समय का मालिक ना बने, तकनीक हमें जोड़ने का माध्यम बने ना कि हमें दूर करने का, क्योंकि कोई भी तकनीक सहायक बनकर लाभ दे सकती है, संचालक बनकर नहीं, है ना।

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: शादी ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा
1: सुनो तो, सुनो ना, सुनो तो।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई।
1: इस खूबसूरत से गीत को सुनते हुए निश्चित रूप से आप सभी भी मुस्कुरा रहे होंगे दोस्तों। और ये गीत आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और साथियों हमने बात की थी स्मार्ट डिवाइस का स्मार्ट प्रयोग कैसे होना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात का हम सब भी बहुत ध्यान रखते होंगे, लेकिन बार बार याद दिलाने से ये हो जाता है कि हम उन बातों के लिए और ज़्यादा स्मार्टली प्रयोग करने के लिए ध्यान देने लगते हैं। और दोस्तों अब हम सुविधाओं की बात कर ही रहे हैं, तो सुविधाओं में हमें एक चीज़ और बहुत पसंद होती है कि हमें हर काम और हर चीज़ें करीने से मिलती रहें हर जगह, चाहे घर हो चाहे घर के बाहर। तो सुविधाओं से जुड़े अगर हम हैं तो सुविधाओं के साथ नियमों का पालन बहुत ज़रूरी होता है। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं नियमों की, लेकिन वो सुविधाएं तब असुविधा में बदल जाती हैं दोस्तों जब हम उन नियमों का पालन नहीं करते जिन सुविधाओं को हम भोगते हैं। क्योंकि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही बाहर अगर हम कूड़ा फेंक दें घर के बाहर, तो क्या हमारा घर सचमुच में साफ दिखेगा? नहीं ना। यानी कि जैसे हम घर को बहुत करीने से रखते हैं, वैसे ही बाहर की जो सड़क है यानी कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। जितना खुद की सफाई पर ध्यान हम देते हैं, उतना ही ध्यान अपने आसपास की सफाई पर रखने से हमारे आसपास का वातावरण भी सुंदर होता है, और यही कहलाता है हमारा सिविक सेंस। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता MOHUA ऐप डाउनलोड, उसका डाउनलोड साइट करके भी आप गंदगी, कचरा और सफाई से जुड़ी शिकायत वहां पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी गंदगी दिखती है तो आप बता सकते हैं, और पहले तो कोशिश हो कि आपके माध्यम से ही वो साफ हो जाए आसपास की अगर जगह कचरा थोड़ा है कम है तो। और अपने मोबाइल में आप ना जब भी ऐसी स्थिति है जब आपको, आप बहुत सिंसियर नागरिक हैं, बहुत अवेयर हैं अपने आसपास की स्वच्छता के लिए, तो मोबाइल में आपके ये ऐप होना ही चाहिए। इसे लॉगिन करने के लिए आपको अपना फोटो लोकेशन अपलोड करना होगा, और जो भी अगर कहीं समस्या दिखती है तो उस नागरिक समस्या की तस्वीर आपको उस ऐप में भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। इस तरह आप एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। तो याद रखिए आपको ऐप डाउनलोड करना है MOHUA, अगर आपके मोबाइल में अभी नहीं है तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि आप स्वच्छता पसंद होंगे तो आगे भी आपका समाज सुंदर और स्वच्छ होगा। और सिविक सेंस सिर्फ सफाई नहीं बल्कि जानते हैं सड़कों पे जो लाल बत्ती होती है वहां पे भी काम करता है, क्योंकि वहां हमें अपने धैर्य को दिखाना होता है। सही लेन में रहना, कतार में अपनी बारी का इंतजार करना, सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना, सार्वजनिक स्थानों को उतना ही अपना समझना जितना कि हम अपने घर को समझते हैं, अनुशासित रहना, ये तमाम छोटी छोटी बातें सभ्य समाज का हिस्सा हैं दोस्तों। क्योंकि नागरिक सहभागिता किसी भी शहर की खूबी बन सकती है तब जब स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी शहर के लिए सरकार के साथ हम भी जिम्मेदार बने। भाई अच्छी आदतों से सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारा परिवेश भी निखरता है, इसलिए सिविक सेंस संस्कारों से निभाए जाएं तो देश समृद्धि की ओर खुद ब खुद बढ़ता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में जमीर फिल्म से इस खूबसूरत से गीत को सुनते हुए आप हमारे साथ पहुंच चुके हैं हमारे इस सफर में यहां तक दोस्तों, जहां हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रकृति की एक खूबसूरती की। क्योंकि अगर आप प्रकृति के निराले अंदाज को जीना देखना पसंद करते हैं तो आज आपको भारत के एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो पानी के ऊपर बसा है, जहां जमीन स्थिर नहीं बल्कि तैरती है। और वो जगह है दोस्तों मणिपुर की लोकटक झील का केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। और ये यहां पर ही ना एकमात्र संघाई हिरणों का आवास स्थल है। ये जो संघाई हिरण है ये बहुत दुर्लभ हैं और यहां पर हॉक डियर, जंगली सुअर और उदबिलाव और लगभग 425 प्रजाति के वन्य पशु और बहुत सारी अलग अलग तरह की तैरने वाली मछलियां पाई जाती हैं। साथ ही जलीय वनस्पतियां और 100 से ज्यादा प्रवासी पक्षी भी यहां आते हैं दोस्तों। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बनाया गया था, जो 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की खासियत क्या है पता है? यहाँ की फुमदी घास, जो मिट्टी और सड़ी वनस्पति से बने तैरते हुए टापुओं को कहा जाता है। स्थानीय भाषा में ना फुमदी मिट्टी, पौधे और सड़े हुए जैविक पदार्थों से बनी मोटी स्पंजी मिट्टी की परत होती है, उसे ही यहाँ के स्थानीय लोग फुमदी कहते हैं, जो पानी पर तैरती रहती है। और अकल्पनीय लगता है ना कि पानी के ऊपर तैरती घास, जमीन और उन पर चलते वन्य जीव, जानते हैं यही रहता है ये हिरण जिसके बारे में आपको बताया संघाई। और ये हिरण बहुत ही कम पाया जाता है पूरे विश्व में, जो सिर्फ और सिर्फ इसी स्थान में मिलते हैं। मणिपुर का राजकीय पशु संघाई ही है दोस्तों। और जब ये जमीन पर चलता है ना तो ये कहलाता है डांसिंग डियर, लेकिन जानते हैं ये एंडेंजर्ड श्रेणी में है। पूरी दुनिया में सिर्फ 200 से 250 संघाई ही बचे हैं। अगर आप मणिपुर के इस निराले द्वीप को देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का महीना यहां पे आने का सबसे बेहतरीन समय होता है। वैसे प्रकृति की इस रंग रंगीली कारीगरी को करीब से निहारना एक सुखद एहसास हो सकता है।

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। और दोस्तों, आज बात एक ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व की करने जा रही हूँ आपके साथ, जिनके बारे में सुनकर आपको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। और चूंकि ये हरियाली मित्र हैं, और ये सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि अपने आसपास यानी जहाँ रहते हैं उस वातावरण में, वहाँ के परिवार में भी अपने इन हरियाली मित्रों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहानी है राजस्थान

0: राजस्थान से बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जयाणी की, जिन्हें हरियाली का सिपाही कहा जाता है। उन्हें वृक्षों से बहुत प्रेम है और उनके इस प्रेम ने ही ये साबित कर दिखाया है कि एक छोटा सा बीज भी बड़े बदलाव ला सकता है। दोस्तों, फैमिलियन फॉरेस्ट्री यानी पारिवारिक वानिकी की अनूठी पहल प्रोफेसर श्याम सुंदर ने की। उन्होंने वृक्षों को परिवार के सदस्य की तरह अपनाने का सुंदर संदेश समाज को दिया। 2003 से शुरू उनकी एकल यात्रा में आज लाखों लोग उनके अभियान से जुड़े हुए हैं और रेगिस्तान की धरती पर उन्होंने हरियाली की उम्मीद को उगाया है। और इस कवायद में सबसे दिलचस्प उनके अभियान में ये है कि उनके यहाँ वृक्ष केवल लगाए नहीं जाते बल्कि जन्म, विवाह और पारिवारिक उत्सवों में उनकी अहम भूमिका होती है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके प्रयास को वर्ष 2020 में सरकार ने सराहा और पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से उन्हें नवाजा। भाई, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, घटती हरियाली से पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। तो पर्यावरणविद श्याम सुंदर जयाणी जी का प्रकृति प्रेम आज भी ये संदेश दे रहा है कि वृक्ष वो कविताएं हैं जिन्हें धरती आकाश पर लिख रही है, जी रही है और फैला रही है।
1: ठीक है, जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। धीरे धीरे
3: सुनो सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

साथियों, फूलों के साथ हंसते मुस्कुराते आपकी जिंदगी खिलखिलाती रहे, महकती रहे, इसी संदेश के साथ घर आंगन कार्यक्रम में आज दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा को अनुमति। फिर मिलने के वादे के साथ यहीं छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

Pelanggan. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हम सुनने वाले हैं। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि गीत संगीत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कभी गाने हमारी खुशी को दुगना करते हैं तो कभी हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाते हैं। तो आज एक ऐसी आवाज़ जिसे सालों बाद भी शिद्दत से सुना जाता है। और हाँ, लता मंगेशकर और आशा ताई के आने से पहले एक दौर इनका भी रहा है। पहचानिए पहचानिए।

गीता दत्त की आवाज़ में आर पार फिल्म का ये गाना आपने सुना आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और दोस्तों, बचपन में गीता दत्त को गीता रॉय चौधरी के नाम से जाना जाता था। गीता का जन्म 23 नवंबर 1930 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। 40 के दशक की शुरुआत में उनका परिवार अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहले आसाम और इसके बाद कोलकाता में आ बसा। दोस्तों, कोलकाता आने से पहले ही गीता ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था और उनके गुरु थे हीरेंद्र नाथ नंदी। शायद आप जानते हूं कि गीता दत्त शास्त्रीय संगीत में पारंगत थी। 1942 में गीता का परिवार कोलकाता से मुंबई आया और फिर यहीं आकर बस गया हमेशा के लिए।

0: गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं गीता दत्त की। दोस्तों, गीता दत्त के करियर में संगीतकार और फिल्म मेकर हनुमान प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक तरह से कह सकते हैं कि हनुमान प्रसाद उनके मेंटोर रहे। 16 साल की गीता जब गायकी में काम ढूंढने लगी तो हनुमान प्रसाद ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें सिखाया भी। साल 1946 में गीता को फिल्मों में गाना गाने का पहला मौका भी हनुमान प्रसाद ने ही दिया था, अपनी फिल्म भक्त प्रहलाद में। हालांकि उस वक्त गीता को सिर्फ दो ही लाइंस मिली थी दो अलग अलग गानों में, लेकिन इसके बाद फिर से हनुमान प्रसाद ने उन्हें गाने के लिए कई कई फिल्मों में मौका दिया। और इसके बाद 1947 में गीता को मिला एक बहुत बड़ा मौका। फिल्म दो भाई में एस डी बर्मन साहब ने गीता को गाना दिया जो काफ़ी मशहूर हुआ, और इस तरह से करियर का जो शुरुआती दौर रहा वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशनुमा रहा गीता के लिए। वैसे माना जाता है कि गीता दत्त एस डी बर्मन साहब की पसंदीदा गायिका थी। जी हाँ।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है पूरा।
1: CID फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना गीता दत्त की आवाज़ में आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों, हम बातें कर रहे थे SD बर्मन साहब की और गीता दत्त के साथ की, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा। गीता ने बर्मन साहब के साथ अपने करियर के बेस्ट गाने गाए। शायद आपको याद हो कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी बाजी, जो 1957 में आई थी। इसका संगीत भी SD बर्मन साहब ने ही तैयार किया था। बाजी के गाने हिट रहे और ये उनके लिए प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से लाइफ चेंजिंग रही। बाजी के सेट्स पर गीता दत्त की मुलाकात उनके फ्यूचर हस्बैंड गुरुदत्त से हुई। साथ में काम करते करते मोहब्बत हो गई और फिर गीता रॉय चौधरी गीता दत्त हो गई। ये वक्त था 26 मई साल 1953, जब गुरुदत्त और गीता दत्त ने शादी की थी। वैसे तो मैं गाना कोई दूसरा सुनाने वाली थी, लेकिन उसी फिल्म का गाना आपको सुनाती हूँ।

0: कालिंग।
1: गीता दत्त की आवाज में बाजी फिल्म का गाना, एस डी बर्मन साहब का बहुत ही प्यारा सा संगीत आपने सुना बिल्कुल अभी आकाशवाणी एफ एम गोल्ड पर। आज हम बातें कर रहे हैं गीता दत्त के बारे में। दोस्तों, शादी के बाद गीता दत्त ने गुरु दत्त की लगभग सभी फिल्मों में गीत गाए। मिस्टर एंड मिसेस 55, सी आई डी, प्यासा, कागज के फूल और साहेब बेबी और गुलाम आदि बहुत ही खास फिल्में रहीं, सब एक से बढ़कर एक। दोस्तों, गीता दत्त ने गुरु दत्त के साथ देवानंद की फिल्मों के लिए भी खूब गाने गाए। 9 2 11, काला बाजार और एक के बाद एक। 50 से 60 के दशक तक गीता दत्त हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर और कामयाब गायिकाओं में से एक रहीं। और सिर्फ हिंदी ही नहीं दोस्तों, बल्कि बंगाली, गुजराती, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी और नेपाली भाषा की जो फिल्में हैं उनमें भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। फिलहाल वो गाना जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गाना बहुत बहुत पसंद आने वाला है। दिल की धड़कनों को संभाल लीजिए।

भाई भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1956 में। और एक बात कही थी मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में, मैंने आपको कहा था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले से पहले एक गायिका रही हैं जिनका एक दौर हुआ करता था। इस बारे में बात करेंगे हम बस बिल्कुल अभी

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों की जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले से पहले एक ऐसी गायिका रही हैं जिनका एक पूरा दौर हुआ करता था, तो दोस्तों वो गायिका गीता दत्त ही हैं। गीता के चाहने वालों की एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है जिसमें खुद लता मंगेशकर शामिल हैं। लता जी अक्सर गीता दत्त की तारीफ किया करती। लता ये तक कहती हैं कि गीता की आवाज़ में जो खनक है वो किसी और की आवाज़ में नहीं है। गीता दत्त को एस जी बर्मन साहब की पसंदीदा गायिका भी माना जाता है और ओपी नैयर भी गीता के प्रशंसकों में से एक रहे। वैसे ओपी नैयर को गुरुदत्त से गीता नहीं मिल पाया था, जिसके बाद ओपी नैयर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, बहुत सारे गीत उन्होंने तैयार किए थे। तो फिलहाल एक ऐसा गाना जिसे सुनने के बाद दिल की धड़कनें तेज तेज हो जाती हैं। हाँ अच्छा चलिए सुनाती हूँ आपको।

दोस्तों बातें हो रही हैं गीता दत्त की। वैसे आर पार फिल्म में गीता दत्त की आवाज़ में आपने बहुत सारे गानों को सुना होगा। ये गाना शमशाद बेगम की आवाज़ में था और आर पार का एक गाना मैं आपको प्रोग्राम की शुरुआत में ही सुना चुकी हूँ, बहुत ही प्यारा था वो भी। वैसे अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है साहिब बीबी और ग़ुलाम फिल्म से। ये फिल्म 1962 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में जो गाना है वो एक बहुत ही ख़ास मुकाम रखता है गीता दत्त के करियर में। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि गीता दत्त की आवाज़ में जिस तरह का मॉड्यूलेशन था वो उस दौर में बहुत ही कम जो गायिकाएं थी उनकी आवाज में हुआ करता था। तो इस गाने को मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें और उनके बारे में। अपने 25 साल के करियर में गीता दत्त ने 1400 के करीब गाने गाए और बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। उनकी गायकी के बारे में कहा जाता है कि गीता दत्त गानों में सिर्फ आवाज ही नहीं डाला करती थी बल्कि इमोशंस भी डालती थी। ये उनकी सबसे ख़ास बात थी। गीता की आवाज़ में मोहब्बत है, शरारत है, मदहोश करने की ताकत है और रुला देने वाला दर्द भी है। आज भी गीता के गाए जो गाने हैं वो कई टूटे दिलों पर मरहम जैसा काम करते हैं। हिंदी फिल्मों में गीता दत्त का जो मुकाम रहा है वही बंगाली फिल्मों में भी रहा है। सोनार हरिन, साथी हारा, मोध्या रातेर, इंद रानी तारा और लुकोचुरी ऐसी कुछ फिल्में रही हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरा प्रोनंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती है। तो इन कुछ बंगाली फिल्मों में उनके गाए हुए जो गाने हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं और गीता ने खूब नाम कमाया है बंगाली फिल्मों में। अपने दौर के करीब करीब सभी बड़े संगीतकारों के साथ गीता ने गाने रिकॉर्ड किए।

साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का ये गाना गीता दत्त की आवाज में आपने सुना बिल्कुल अभी। दोस्तों वैसे तो गीता दत्त ने हर तरह के गाने गाए, मैंने जितने भी गाने आपको सुनाए उन सभी गानों में आपको अलग अलग इमोशन सुनने को मिला होगा, अलग अलग तरह का एहसास आपने फील किया होगा। लेकिन गीता दत्त की जो पर्सनल जिंदगी थी उसमें एक एहसास कुछ ज्यादा था और वो था दर्द। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कुछ ऐसा ही गीता दत्त के साथ भी रहा। एक तरफ जहां उन्होंने गायकी में बहुत नाम कमाया तो वहीं दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ बहुत ही परेशानियों से भरी रही, ऐसा कहा जाता है। ये दर्द, ये खालीपन उनके गीतों में महसूस भी होता है। साल 1972 में फिल्म मिडनाइट के लिए उन्होंने आखिरी बार गीत गाए जो कि किसी वजह से रिलीज नहीं हुए। आज यानी कि 20 जुलाई गीता दत्त ने दुनिया से विदा ली थी, लेकिन अब अपनी आवाज़ अपने गीतों के जरिए वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी।

ना, और मेरा नाम है शबनम और मैं अब जाने वाली हूँ, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। अपना ख्याल रखिएगा।

सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को

0: शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
1: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
2: I appeal to members across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया

0: चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हों वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व

0: कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट

0: अमित, हर बार की तरह एक नया विषय रोमांच भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? वर्षा, जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारा जो वातावरण है बदल रहा है, और अगर मौसम देखें तो हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है।
1: बिल्कुल मंजीत, आपने सही कहा, क्योंकि कार्यक्रम उन्नत किसान में जब हम किसान की उन्नति की बात करते हैं तो हर एक पहलू पे नजर रहती है। हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं, जहां अनुसंधान कर रहे हैं, विशेषज्ञ आते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और उनकी राय किसानों तक पहुंचती है कार्यक्रम उन्नत किसान के माध्यम से। कोशिश यही है कि किसान, जब अनिश्चितताओं की बात हम करते हैं, तो ऐसे में अपने को किस प्रकार से निश्चित रखे, निरंतर रखे और इस मार्ग पे अग्रसर करता रहे।
0: बिल्कुल, और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राम स्वरूप बाना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में बेहद ही स्वागत है आपका।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय है वर्षा को लेके, और जिस तरीके से अनिश्चितता के माध्यम से जो हमारा कृषि है, किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए और क्या कुछ समाधान है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे।
2: जी, बरसात का मौसम चल रहा है, और इस बार जैसा

0: प्रतिशत कृषि क्षेत्र ऐसा है जो बरसात पर आज भी आधारित है। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इसका मिलकर सामना करना है। इसके लिए ICAR, सभी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और सरकार मिलकर एक देश और एक कृषि और एक टीम की भावना से कार्य कर रही है। सभी जिलों के लिए अलग अलग आकस्मिक योजना बनाई गई है। तो उससे भी मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा, अपने किसानों से आग्रह करूँगा कि जो आपकी आकस्मिक योजनाएं हैं उनसे अवगत रहें और मौसम की जानकारी लेते रहें। पूर्वानुमान जो भारत मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी करता है और एग्रो एडवाइजरी जारी करता है, IARI जो पूसा संस्थान है उसकी भी वेबसाइट पे हर सप्ताह जो एग्रो एडवाइजरी आती है उससे अपडेट रहें ताकि मौसम के अनुसार आप खेती करते रहें। यदि बीच में वर्षा के अंतराल आते हैं तो कौन सी कृषि तकनीकें अपनाई जाए, उन सब से अवगत रहना है, तो जो निश्चित रूप से हम सफल हो पाएंगे कि जो अलनिनो है या कम बरसात की संभावना है इस बार, उससे हम सब मिलकर आराम से लड़ पाएंगे और जो नुकसान है वो कम से कम होगा या होगा ही नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे भारत में ही बरसात की बहुत कमी होगी, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर औसत बरसात होगी, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां औसत से अधिक हो, और कुछ जो पूर्वोत्तर भारत के और जैसा अभी तक के पूर्वानुमानों से लग रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ थोड़ी बरसात की संभावना कम है। तो जो जो अपनी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार आपको निर्णय करना है, रणनीति बना के पहले से ही योजनागत तरीके से चलना है। आपके पास फार्म पॉन्ड या कुछ इस तरह की सुविधाएं हैं तो उनमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है, कभी कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है और वो पानी बहकर चला जाता है, उसको इकट्ठा कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में उसका हम उपयोग कर सकें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि अनिश्चितता ऐसा शब्द है जो हमें दोनों ओर से कहीं ना कहीं, बारिश अधिक हो तो क्या करना है और वर्षा कम हो तो क्या करना है। अभी आपने अपनी बातचीत में एक शब्द दिया एलनिनो, और हम देख भी रहे हैं कि वर्ष 2026 को एलनिनो वर्ष घोषित किया गया है। तो कई बार हमारे किसान भाई बहन हैं, कई ऐसी भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इस स्तर को नहीं समझ पाते हैं, भय बन जाता है कि एलनिनो आखिर क्या है। तो साधारण शब्दों में जो हमारे किसान भाई बहन समझें, एलनिनो क्या है और इसका क्या प्रभाव हमें मानसून पे देखने के लिए मिलेगा, ये जरूर बताएं।
0: जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है हमारा, उसमें सामान्य तापमान से लगातार 3 से 4 महीने रनिंग मंथ्स का जो औसत तापमान है वो पानी का तापमान बढ़ जाता है, और वो जो तापमान और जो दबाव है, वायुवीय दबाव, एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसमें सीधा सा संबंध है। तो उस क्षेत्र में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर का जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ होने से, ऐसा मानते हैं कि पूरी दुनिया भर में जो हवाओं का और जो मानसूनी हवाएं होती है उनके पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ जाता है, परंतु जरूरी नहीं है ऐसा हर बार हो। यदि पिछली पूरी शताब्दी का देखें तो बहुत सारे ऐसे वर्ष भी रहे हैं जहां पे ऐसी एलनिनो इवेंट थी और उस दौरान अच्छी बरसात हुई है, 1997 देख लो या 2009 देख लीजिए। तो उस दौरान एलनिनो वर्ष थे, 1997 का तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलनिनो वर्ष था, पर फिर भी मानसून अच्छा रहा था। तो ऐसा कोई मानते हैं कि एक संबंध है, परंतु ऐसा नहीं कि उससे ऐसा सुनिश्चित हो जाता है कि सूखा पड़ने की संभावना ही है। परंतु फिर भी हमें अपनी ओर से तैयारी रखनी है, कम अवधि वाली फसलें और कम अवधि वाली किस्मों का उपयोग करते हुए और रणनीति बनानी है। यदि समय पर बिजाई कर ली है और कम अवधि वाली फसलें हैं तो रबी की अभी से योजना बना लेनी है कि कौन सी फसलें ले सकते हैं, और हो सकता है कि हम ठीक से योजना बनाकर चलें, सही तरीके से जल संरक्षण करें और उन्नत वैज्ञानिक तकनीकियों से खेती करें तो एलनिनो का नुकसान होने की बजाय हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। एक कम अवधि वाली फसल, इसकी जो कम अवधि वाली किस्में पहले बिजाई कर दी हो और उसके बाद सरसों जैसी कम अवधि वाली आजकल किस्में आ रही है 120 दिन के में पकने वाली, तो इस तरह की फसल लेके एक तीसरी फसल भी ले सकते हैं। तो फसल जो क्रॉपिंग इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको बस ये है कि रणनीतिक समाधान देखने हैं, विज्ञान के साथ जुड़ना है, आपके जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि संस्थान है उनके साथ निरंतर बने रहना है और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहना है कि किस क्या मौसम की परिस्थितियां रहेगी, उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल, यानी कि जागरूकता
0: बहुत जरूरी है।

0: जी, तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने कहा कि हमें रणनीतियां बना के रखनी है, लेकिन जब बात आती है कि हम अधिक वर्षा हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल संरक्षण की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं, तो इस पर आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे?
1: जी, ज़्यादा बरसात होती है तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो खेत में पानी खड़ा नहीं रहने दें,
0: जी
1: क्योंकि फसल में अगर पानी भर जाता है 48 घंटे से ज़्यादा या 72 घंटे से ज़्यादा भर जाता है तो फसल को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। तो ज़्यादा मात्रा में बरसात होने पे जल निकास की समुचित प्रबंधन करना जरूरी है। और आजकल बहुत सारे किसान भाई बहनें खेतों में ही तालाब बना रहे हैं। राजस्थान में, तेलंगाना में, बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि अपना जो ज़्यादा बरसात होती है उसका पानी इकट्ठा कर लेते हैं
0: जी।
1: और जो तालाब बनाते हैं उसके पानी को बाद में जब आवश्यकता हो, सूखा पड़ जाए, उस समय सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। और सिंचाई के भी तरीके अलग अलग हैं। जो आधुनिक सिंचाई विधियां हैं, जैसे कि ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, आजकल तो रेन गन आता है,
2: बिल्कुल
1: उससे उसको उपयोग करते हुए यदि सिंचाई करते हैं तो बहुत कम पानी में आप ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मल्चिंग, यानी कि जो पूर्व फसलों के अवशेष हैं, जैसे कि पराली है, उत्तर भारतीय क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो उसको जलाना नहीं है, उसको रखो, उसका आवरण बिछा के रखते हैं तो जो मृदा नमी है उसको भाप बनकर उड़ने से रोकता है और पौधों का आंतरिक तापमान भी नियंत्रित रखता है, जिससे कि जो पौधे हैं वो सूखा सहन करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से जो ज़्यादा बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करके और उसको भी एक वरदान के रूप में किसान उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्म पॉन्ड वाली स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी फेमस हो रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। और मैं तो आकाशवाणी के माध्यम से कहूंगा, किसानों से ज्यादा आग्रह करूंगा कि अपने खेत में एक छोटा खेत तालाब बना के रखें, उसके लाइनिंग करवा लें ताकि पानी को इकट्ठा करके और बरसात के जल को आप ज्यादा से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला पानी आपकी फसलों के लिए उपयोग करें।
2: बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी आपने जल संचय के बारे में बताया, और हम बात कर रहे हैं कि लगातार जैसे वर्षा होती है, कई क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है और कई क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, तो ऐसे में हमें कौन सी फसल का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम अधिक वर्षा की बात करें या फिर जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है?
1: जी, अधिकतर जो कि खरीफ की बात करें तो धान हमारी प्रमुख फसल है खरीफ के मौसम की। ज़्यादा बरसात वाले क्षेत्र हैं, जो डुबाव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे तो धान की पहले से ही खेती होती आ रही है। पर कम बरसात वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, फिर भी हम धान की खेती कर रहे हैं, उसमें हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो वैकल्पिक फसलें हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रहे हैं, जैसे कि धान का विकल्प उत्तर भारतीय क्षेत्रों में मक्का, और मक्का के भी कई वेरियंट, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, ये उसका एक विकल्प हो सकती है। इसके अलावा आजकल कम अवधि वाली अरहर की जो किस्में हैं, जैसे कि पूसा अरहर 16 है, पूसा 992 है, पूसा 991 है, पूसा 2001 है, तो ये ऐसी किस्में हैं जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है और मुनाफा भी किसान को अच्छा देती है, लागत कम लगती है। मिलेट्स है, जैसे कि बाजरा है, सोरगम है, ये फसलें एक अच्छा विकल्प के तौर पर उभर कर आ रही है। मिलेट्स लेने से जो पोषक तत्व इनमें ज़्यादा मात्रा में होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं मिलेट्स में, तो वो पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। बहुत सारी बीमारियां आजकल, विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं उनमें एनीमिया की एक बड़ी विकराल समस्या है, यदि पोषण युक्त, ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त वो खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो इन फसलों का हमें समावेश करना होगा, जिससे कि एक तो हम प्राकृतिक संसाधनों का भी एक संरक्षण कर पाएंगे, दूसरा जो हमारी पॉपुलेशन है उसको गुणवत्तापूर्ण भोजन भी दे पाएंगे। तो ये एक विन विन सिचुएशन है और हमें फसल विविधीकरण को अपनाना ही चाहिए।
2: बिल्कुल, और डॉक्टर साहब ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, जिस वक्त हम बात करते हैं कि जल संचय की, उसके बाद अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो मृदा के ऊपर भी बहुत ही बुरा असर भी पड़ता है, और जहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ उस स्थिति में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो हमारे किसान भाई बहनों को किस तरीके से अपना मृदा को बचाने की ज़रूरत है?
1: जी, मृदा का स्वास्थ्य सबसे जुड़ा हुआ होता है, और जो आजकल वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात चल रही है दुनिया भर में, वो मृदा स्वास्थ्य पर ही आधारित है। मृदा कमजोर होगी, पोषक तत्व कम होंगे, तो उसमें जो भी फसलें उगेगी उनमें जो उत्पाद होगा वो कम गुणवत्तापूर्ण होगा, उसको खाने वाला मनुष्य और पशुओं की गुणवत्ता कमजोर रहेगी और

0: ज़्यादा एक ही तरह की फसलें लगाने से और बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो सही तरीके से फसल प्रबंधन से मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य, इन सबको एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में विकास हो सकता है। और मृदा स्वास्थ्य के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं भी बनवाया है तो बनवा लेना चाहिए, और सही तरीके से वैज्ञानिक रूप से बैलेंस न्यूट्रिशन करना जरूरी है, जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति करें। रही बात बरसात के आधार पर मृदा पे प्रभाव पड़ने वाली बात, यदि बरसात ज़्यादा होती है, लगातार पानी भरा रहता है, तो खेत में अवायवीय स्थिति हो जाती है, एनएरोबिक कंडीशंस हो जाती है, जिसमें जो हमारी जो मृदा का के सूक्ष्म जीव हैं वो भी मर जाते हैं, पौधों की जड़ों में वायु संचार नहीं हो पाता है। तो जैसे ही बरसात ज़्यादा हो जल निकास करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे ही पानी सूखता है मिट्टी की ऊपरी परत को तोड़ दें ताकि पौधों की जड़ों में वायु संचार बढ़े। ज़्यादा पानी भरने से जो पोषक तत्व हैं वो बहकर जमीन में नीचे चले जाते हैं, निक्षालन हो जाता है, तो पोषक तत्वों की भी पौधों में कमी हो जाती है। तो उसके बाद जैसे ही पानी सोख जल जाता है तो उर्वरकों की या जो हमारे खाद हैं उनकी भी दोबारा से डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आवश्यकता के अनुसार यदि पौधे पीले दिखाई देते हैं तो नाइट्रोजन जरूर डालें। यदि सूखा पड़ता है उस स्थिति में भी प्रबंधन के लिए जो जैविक खादें हैं वो पहले बिजाई से पहले डालनी चाहिए, बिजाई के 2-3 सप्ताह पहले डाल देनी चाहिए। और बहुत सारे जो जैसे 100 से अधिक जिले हैं हमारे देश के जिनमें लगातार अकाल पड़ता रहता है, सूखा पड़ता रहता है, उनको सूखा संभाव्य क्षेत्र, ड्राउट प्रोन एरियाज बोलते हैं, उनमें तो जैविक खादों का समावेश पोषक तत्व तो प्रबंधन में जरूर करना चाहिए ताकि जो मृदा का स्वास्थ्य है वो सही बना रहे। और कम बरसात की स्थिति में, क्योंकि जो जैविक खादें होती है वो मृदा की जल धारण क्षमता को सही करती है, मृदा की भौतिक दशा है उसमें सुधार करती है। तो यदि जैविक खादों का उपयोग करते हैं, जैव उर्वरकों का भी साथ में उपयोग करते हैं, तो जो अल्प वर्षा है उस परिस्थिति में हम मृदा स्वास्थ्य को सही से
1: जी
0: बनाकर रख
1: बिल्कुल
0: सकते
1: डॉक्टर साहब,
0: हैं।
1: जो अल्प वर्षा की बात आ गई, पहले हमने बात किया कि जल संचय करें अधिक
0: जी
1: हो, उसमें फिर बहुत सारी
0: नहीं,
1: बातें
0: कम
1: निकल
0: में
1: के
0: भी
1: आई।
0: जल संचय करना
1: अब
0: चाहिए।
1: वहीं कि अगर कम है, अल्प वर्षा हुई, तो उसमें जल संचय करने के लिए जैसे कृषि की आधुनिक पद्धतियां हैं, हम भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के विषय में बात करते हैं और बहुत सारी सरकारी योजनाएं चला रही हैं, किसानों तक पहुंच रही हैं, तो इसमें जो आज के समय में आधुनिक कृषि सिंचाइयां हैं उनका कितना महत्व है और किस प्रकार से किसान भाई उन्हें अपना सकते हैं?
0: जी ये जो वर्षा जल संचय है वो तो अधिक बरसात हो या
1: जी
0: कम बरसात, ये तो बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो उसमें इसका महत्व और बढ़ जाता है।
1: जी
0: तो वो तो अपना नहीं है, आपको बरसात के जल को, खेत के जल को खेत में ही रखना है, गांव के पानी को गांव में ही रखना है, बहकर बाहर नहीं जाने देना है, और उसको सिंचाई में उसका दक्ष उपयोग होना जरूरी है। और
1: जी
0: उसके लिए जैसे मैंने पूर्व में भी
1: बिल्कुल
0: बताया, आधुनिक सिंचाई विधियां हैं, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, रेनगन है, इनका उपयोग करते हुए, इसके अलावा मल्चिंग करें। अब प्लास्टिक मल्च भी बहुत सारे किसान उपयोग करते हैं, पर यदि जैविक मल्च हो, यानी कि जो पूर्व फसलों के अवशेषों की मल्च हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। यदि मल्च या आच्छादन नहीं कर पाते हैं तो सूखे की स्थिति में एंटी ट्रांसपेरेंट्स, जैसे जो खड़िया मिट्टी आती
1: जी
0: थी हमारे पहले घरों की पुताई करते थे, उसका घोल बनाकर 5% का घोल बनाकर यदि 400-500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करते हैं, तो उससे जो प्रकाश आता है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है
1: जी
0: पौधों से, और जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाता है, तो जो सूखे की स्थिति में पौधों को वो बचाता है। ज़्यादा लागत भी नहीं लगती, एक स्प्रे किया, कोई केमिकल भी नहीं है, वो खड़िया मिट्टी है, केओलिन बोलते हैं उसको, और उसका छिड़काव करके आप फसल को सूखे की स्थिति से बचा सकते हैं।
2: बिल्कुल। और इस समय जितने भी हमारे श्रोता हैं, अगर उनके मन में भी कोई सवाल है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर बता दें कि हमारी फोन लाइन इस समय खुली हुई है, नंबर है 0112342108 और वहीं दूसरा नंबर है 2342108 3। डॉक्टर साहब, ये तो हम लोगों ने बात की किस तरीके से हमें अपना जल संचय करना चाहिए, मृदा के बारे में भी बात हो गई। जब वर्षा अधिक होती है तो काफी सारी समस्या भी आती है, अगर फसल खेत में खड़ी हुई है उसका नुकसान भी होता है, और किस तरीके से हमारी फसलों को हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो हमारे किसान भाई बहनों को क्या कुछ करने की जरूरत है?
0: देखो, इसमें दो तरह की रणनीतियां हमने अपनानी होगी। एक तो दीर्घकालिक उपाय करने होंगे, क्योंकि हमारे कुछ खेत होते हैं जो नीचे होते हैं जिनमें हर बार पानी भरता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो उबड़ खाबड़ होते हैं उनमें भी आधे खेत में पानी भर जाता है, आधे में पानी पहुंच ही नहीं पाता है। तो हर खेत विशेष के लिए, हर गांव विशेष के लिए अलग अलग योजना बनानी होगी और अपने खेतों की लेजर लेवलिंग करनी होगी। जब लेजर लेवलर, जिसको कंप्यूटर से लेवल करना बोलते हैं किसानों की भाषा में उत्तर भारतीय क्षेत्र में, ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना होगा ताकि पूरे खेत में पानी बराबर रह जाए। ये एक दीर्घकालिक योजना हो सकती है। जिन खेतों में निरंतर पानी भरना होता है, भरता रहता है हर साल, तो बायो ड्रेनेज, जैसे कि जो यूकेलिप्टस होता है, सफेदा होता है, तो ऐसे पौधों का रोपण कर दें ताकि ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन से वहाँ पर जो बायो ड्रेनेज की जो है दिक्कत, वो बायो ड्रेनेज से इस समस्या का समाधान कर सकें। जहाँ पानी भरा होता है उन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें बुआई करें, और जो खेत का ऊपरी हिस्से होते हैं वहाँ पर कम पानी चाहने वाली या वो जो पानी भरने से संवेदनशील फसलें हैं, जैसे कि मक्का है, अरहर है, मूंग है, आदि फसलें वहाँ पर लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल अच्छा। ये होता है कि जब किसान भाई बहन कहीं ना कहीं, जैसे कहा अभी मंजीत ने भी कि भाई परेशान है, लगता है कि अब हम फसल को नहीं बचा पाएंगे, तो ऐसे में जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे फसल बीमा योजना की हम बात करते हैं, तो इसमें आप किसानों को क्या सलाह देंगे?
0: हाँ, कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको यदि आप खेती करते हैं तो उनसे अवगत आपको रहना पड़ेगा
1: जी।
0: जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना है, कृषि सिंचाई योजना, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इनमें बहुत सारी किसानों के लिए मदद मिलती है
1: जी।
0: और आपकी फसल का एक तरह से बीमा रहता है, किसी भी तरह की अनहोनी होने की दशा में सरकार आपकी मदद करती है। कृषि सिंचाई में सिंचाई यंत्रों सहित आपका या फार्म पौंड निर्माण में भी सरकार मदद देती है हर राज्य में, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, तो अलग अलग सब्सिडीज है, उनका आप फायदा लें ताकि आप वर्षा जल संचय कर सकें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण मिलता है, आप राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संस्थान हैं, जहां भी जिस विषय पर आपको रुचि हो उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। तो ये जो सरकारी योजनाएं हैं इनका लाभ उठाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों से तथा जो आपका स्थानीय जिला कृषि अधिकारी है उनके ऑफिस से तो आपको जुड़ के रहना ही है, साथ ही हमारे जो ICAR के संस्थान हैं उनसे आप जरूर जुड़े रहें। आजकल कंप्यूटर, ये फ़ोन सबके पास होता है, तो फ़ोन पर ऐप हैं बहुत सारी
1: जी।
0: तो जैसे कि NPSS एक ऐप है ICAR और कृषि मंत्रालय की, NPSS, तो उसको डाउनलोड करो, उसमें आपके कोई भी रोग आता है, कीट आता है, उसको पहचान भी कर सकते हैं, और उसमें कौन से कीड़े की क्या बीमारी की क्या दवाई है वो सारी जानकारी दी हुई होती है, तो पहचान करके एक तरह से छोटा मोटा KVK आपकी जेब में हो जाता है। इसी तरह से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है, वो ऐप है। तो ये जो आधुनिक तकनीकियां हैं, कंप्यूटर, ये फोन है, उसका इस तरह से सदुपयोग करें, अपने लिए जो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी रखें ताकि आपको कोई भी अनहोनी की दशा में सरकारी जो मदद मिलती है उसकी आप मदद लेते रहें।
2: अगर हम रणनीति की बात करें
0: जी
2: कृषि संबंधित, तो जैसे कि वर्षा अधिक हो रही है और कम हो रही है, जैसे कि आपने बताया कि तालाब हमें अपने खेतों में बना लेने चाहिए, और जो इस समय हमारे जो किसान भाई बहन में सुन रहे हैं और यदि वो चाहते हैं कि उसको वो अपने खेतों तक इम्प्लीमेंट करें और वो बनाएं, तो क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी पड़ेगी, किस तरीके से उन्हें ये बना के वो आगे इसका फायदा उठा सकते हैं?
0: जो ज़्यादातर फार्म पौंड स्कीम है, विशेषकर हमारे 12 राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान जैसे राज्य हैं, वहाँ पर तो ये काफ़ी फेमस हो रहा है पिछले 5-7 से, और बाकी राज्यों में भी अब किसान इनको अपनाने लगे हैं। इसमें सावधानी वाली बात एक तो ये है कि तालाब आपके खेत के निचले क्षेत्र में हो ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो सके, और दूसरी सावधानी ये रखनी हो कि वो रास्ते के आसपास नहीं हो, घर के बिल्कुल सामने नहीं हो, ताकि कोई दुर्घटना नहीं घटे। जहाँ तालाब बना देते हैं उसके चारों तरफ फेंसिंग करना, बाड़बंदी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी जानवर या बच्चे उसकी पहुँच से दूर रहें। और इन तरह की जो सावधानियां हैं उसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाता है फार्म पॉन्ड के निर्माण से आप
1: जी,
0: और आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन एकदम से कम होता है। उच्च गुणवत्ता पूर्ण पानी उपयोग करने से आपकी फसलों की जो गुणवत्ता है, फसलों की मृदा से पोषक तत्व लेने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। जो जड़ तंत्र है पौधे का वो इतना घना हो जाता है, जो अच्छा पानी

0: तंत्र। इसके अलावा यदि बहुत बड़े क्षेत्र में फार्म पौंड ही फार्म पौंड हो जाए तो जो बायोडायवर्सिटी है वो उस क्षेत्र की काफी बदल जाती है, पशु पक्षी बहुत सारे तरह के पौधे ये सब। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा सूखे के लिए विशेषकर, कि किसान जिसको इग्नोर कर देते हैं वो है खरपतवार। खरपतवार ऐसे दुश्मन है किसान के जो फसल के साथ ही रहते हैं और फसल के हिस्से के पोषक तत्व, जल और स्थान इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जब जो यदि सही तरीके से वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जो ट्रांसपिरेशन कोफिशेंट बोलते हैं हम, पानी को भाप बनाकर उड़ाने की क्षमता, ज़्यादातर खरपतवारों में फसलों से 2 से 3 गुना कहीं कहीं 4 गुना तक अधिक होती है। तो वो आपका सारा पानी पहले ही, नमी की कमी है और संभावना ये है कि बरसात थोड़ी कम हो सकती है, तो खरपतवार नहीं उगने देना है। और खरपतवारों की हाथ से निराई गुड़ाई करें ताकि जो मृदा की ऊपरी परत टूट जाने से आपका जो नमी है उसका भी संरक्षण होगा, साथ ही खरपतवार तो नियंत्रित हो ही जाएंगे। और नमी संरक्षण के साथ साथ हाथ से निराई गुड़ाई करने से, कसोला से निराई गुड़ाई करने से आपकी जड़ों में वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी जड़ों का विकास अच्छा होता है। जड़ों में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, किसान के मित्र होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जहाँ तक संभव हो रसायनों का उपयोग इसमें नहीं करना है। रसायनों का उपयोग तभी करना है जब मान लिया श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है या लगातार बरसात हो रही है, खरपतवारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में खरपतवार नाशियों का उपयोग कर सकते हैं। और खरपतवार नाशी भी जो बिजाई के तुरंत बाद प्री इमरजेंस है उनका उपयोग करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरुआती अवस्था से ही यदि फसल खरपतवार मुक्त रहेगी तो वो बाद में तो खरपतवारों से फसल अपने आप प्रतिस्पर्धा कर लेती है, फसल बड़ी हो जाती है। तो शुरुआती अवस्था में विशेषकर जो ज़्यादातर खरीफ की फसलें हैं, आप धान की बात कर लो, बाजरा मक्का की बात कर लो या दलहन वर्गीय फसलें हैं, तो जो शुरुआत के जो 3 से 4 सप्ताह है उस दौरान फसल को खरपतवार मुक्त रखना है ताकि जो मृदा नमी है वो उड़ नहीं पाए और फसल शुरुआत में प्रतिस्पर्धा में दबे नहीं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: डॉक्टर साहब, अब देखते हैं हम जब जल संरक्षण की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें अति दोहन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो जो अति दोहन में हम देखते हैं कि पहले गांव में सामान्य जो मोटर है, पंखा है या इंजन है, हम ऊपर रखते थे जमीन से, वहीं से हम खेत की सिंचाई कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे हम 120 फीट से नीचे जा रहे हैं, समरसेबल करा रहे हैं, वहां से सिंचाई हो रही है, कई जगह वहां भी पानी खत्म हो रहा है। तो इस अति दोहन को लेकर जो वैज्ञानिक सोच है वो किसानों तक क्या जानी चाहिए?
0: अति दोहन को हमें रोकना होगा।
1: जी,
0: ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों की अभी हमें जरूरत नहीं है, कम पानी चाहने वाली फसलें, ज्यादा पानी जैसे धान की ही अगर हम बात करें
1: जी,
0: तो फिर उसमें कम से कम सीधी बिजाई वाला धान लो, आपको धान ही उगाना है। तो सीधी बिजाई वाले धान में यदि सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं और खरपतवारों को समय पर आप काबू कर लेते हैं तो जो ट्रांसप्लांटेड राइस है, जो पारंपरिक रोपाई वाला धान है, उसकी अब बराबर या उससे अधिक पैदावार मिल जाती है। और जो आजकल नई नई किस्में आती आ रही है वो तो सीधी बिजाई के लिए तैयार की जा रही है, पूसा संस्थान की, जैसे पूसा 1979 है, पूसा 1985 है। ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, इमेजदापायर नाम का एक शाकनाशी आता है, उससे रेजिस्टेंट भी है। तो उसमें आप स्प्रे कर दो, खरपतवारों को नष्ट कर देगी और जो फसल है वो नुकसान नहीं होगी। तो हमें फसल विविधीकरण को अपनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जल संरक्षण की तकनीकियां हैं, जैसे कि फार्म पॉन्ड है या मल्चिंग है या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षण खेती जिसमें शून्य जुताई के साथ पूर्व फसलों को खेतों में ही रखना है और फसलों को अदल बदल कर बोया जाना है, यदि इस तरह की तकनीकियां, आधुनिक तकनीकियां, और आजकल कार्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कार्बन की मात्रा मिट्टी में बढ़ानी है, सही तरीके से सही पोषण करते हुए आगे बढ़ना है, तो ये सब करके हम पानी के इस दोहन को बचा सकते हैं। और जो ग्रीष्मकालीन धान था, ऐसे हालांकि उसको बैन कर दिया गया है, पर ऐसी फसलों को बिल्कुल नहीं उगाना है जब बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है और आपको फसल भी ले रहे हैं। तो ये इन चीज़ों से दूर रह के हमें कम पानी चाहने वाली फसलें और कम पानी चाहने वाली अल्प अवधि वाली किस्मों का उपयोग करना होगा, ताकि हम जो एक्स्ट्रा पानी का उपयोग कर रहे थे उससे बचे जाए। और फ्लडिंग को बिल्कुल खत्म करना है, आधुनिक सिंचाई विधियां अपनानी है, ड्रिप की तरफ जाना है हमें। आजकल तो धान भी ड्रिप सिंचाई से होने लग गया है, सब सरफेस ड्रिप आ गई है, अंडरग्राउंड पर ड्रिप की पाइपलाइन बिछा देते हैं, ऊपर फसल चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, फसल उत्पादन

0: करो तो कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस दोहन को हम मिलकर रोक पाएंगे।
1: बिल्कुल, और आज बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने हम तक और हमारे सुनने वाले श्रोताओं तक पहुंचाई, जो कि आज का जो विषय था बहुत ही अहम था कि वर्षा अनिश्चितता के माध्यम से हम कृषि की प्रमुख रणनीतियों को किस तरीके से बनाए और किस तरीके से हमें उसका समाधान मिल सकता है। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बेहद कीमती अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम इस समय अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल और प्रस्तुति तुषार पराशर के साथ मुझे मनजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित तेवर

बना और किस तरीके से हमें उसका समाधान मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बेहद कीमती अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम इस समय अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल और प्रस्तुति तुषार पराशर के साथ मुझे मनजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित तेवतिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए जबकि लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर लगातार अपना विरोध जताते रहे। पीठासीन अधिकारी दिलीप साइकिया ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की बात पर ध्यान न देते हुए अपना विरोध जारी रखा। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित

0: उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष को संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि संसद परिसर और उसके आसपास भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने की संभावना है। लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण चलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरूआत की। उनको किशिनौ में स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति माया सांदू ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today. Both houses have been adjourned for the day amid opposition protest over the NEET paper leak issue. When the House met after the third adjournment at 1 p.m, the opposition members continued with their protest over the NEET issue. Presiding Officer Dilip Saikia tried to take up the scheduled business, but the opposition members did not pay heed to the chair's advice and continued with their protest. Amid the uproar, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha met at 11 a.m, the House paid tributes to six of its former members who passed away recently. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and the Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. When the Upper House met after the third adjournment at 12:50 p.m, the opposition MPs again raised slogans over the NEET paper leak issue. Chairman C.P. Radhakrishnan urged the members to maintain decorum and allow the House to function. Prime Minister Narendra Modi has said, be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before the beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are

0: Good afternoon. FM Gold 100.1 MHz पर मन भावन आपका कार्यक्रम, आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है. भीगा फीका सा मौसम है, भीगा मौसम है, मन भी थोड़ा सा भीग भीग जाए तो अच्छा रहता है ना. भीगे मन का क्या मतलब है? भीगे मन का ये मतलब है कि जैसे भीगी धरती पर कुछ उपज सकता है, उसी तरह से जो फर्टाइल ब्रेन है, भीगा हुआ मन है, वो नए विचारों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है. जी हाँ, हम भी ये क्षमता रखते हैं कि आपके भेजे हुए, आपके फरमाइश के गीत आप ही को सुना दें और आपके दोस्तों को भी. तो कार्यक्रम शुरू करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ में, जिसमें थोड़ा सा बारिश का भी अंदाज है, रेडियो का भी अंदाज है और सुपरस्टार्स का भी अंदाज है. आइए सुनते हैं गीत. आज आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक.
1: आते जाते हो

FM Gold लिखने की आदत डलवा रहे हैं आपको, है ना। fmgoldeirdaily@gmail.com पर देखिए कितने सारे संदेश आए। नवाब अहमद साहब लिख रहे हैं बली मारान से, इनके साथ हैं अरहान, सूफिया और शबाना। और ये क्या लिखते हैं, क्या आप हमारी तरफ से आज राजेंद्र कुमार जी और नसीरुद्दीन शाह जी को जन्मदिन की बधाई दे सकेंगे? बिल्कुल देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह मुबारक हो। और ये चाहते हैं कि कोई एक गीत सुना जाए, तो जो ध्यान में हमारे आ रहा है जहन में वो है एक बड़ा ही प्यारा सा गीत मासूम फिल्म का, और उसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत ही कमाल की है, शबाना नसीर और सैयद जाफरी। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, आइए सुनते हैं ये गीत।

FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। मोहम्मद सैयद अबासी जी का भी यही संदेश आया कि आज 20 जुलाई नसीरुद्दीन शाह का जन्मदिन है। तो चलिए मोहम्मद सैयद अबासी, निगहत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, सुहान, अबान, आप सबकी तरफ से भी ये गीत हमने सुना दिया। अशोक वर्मा जी सुनना चाहते हैं अगला गीत। अटेंडेंस ले लें ज़रा, एक काम करें, नसीर साहब से भाई हम रूबरू हुए हैं फेस टू फेस, अभी 3-4 साल पहले की बात है। बहुत कमाल के कलाकार हैं और ख़ासकर रंगमंच के भी, स्टेज के भी तो आए हुए थे और मेघदूत थिएटर में, तो बस उनसे सिर्फ दुआ सलाम हुई दूर से ही। सतीश अनेजा जी, विजय सुरालकर, शमसुल कमर राही, राशिद हुसैन, वसंत कुमार सिन्हा, निसार अली, नीटू मल्होत्रा, ताज मोहम्मद, सलीम अख्तर, नवाब अहमद, आगे देखते हैं और किन के संदेश आए हैं। आफ्ताब अंसारी, भारत भूषण, अशोक वर्मन, अनिल मोहन, है ना, एक मिनट, क्या होता है ना सम नेम्स, कुछ प्रकाश वर्मा रिपीट करते हैं ना मेल्स को, तो फिर वो कई बार दूसरों के नाम बेचारे रह जाते। लीलाधर मोदसिया और है ना, तो ये सब नाम है। अशोक वर्मा जी कह रहे हैं गीत सुनाइए, ये मौसम भीगा भीगा है। आइए सुनते हैं ये गीत।

और ये लिख रही हैं जी जुबली राजेंद्र कुमार के जन्मदिन पर एक गीत सुना दीजिए। चलिए ठीक है, क्योंकि जुबली कुमार है ना नाम, नेचुरली भाई इतनी इतनी सुपरहिट गीत, आपका भी कोई फेवरेट होगा तो मेरा प्यार भी तू है, ये गीत आपकी फरमाइश पर सुनते हैं हम सब।

आप तो खैर भाई कंप्लेंट करने का आपको अधिकार है, आरजे को तो है नहीं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और राजस्थान से इनके साथ दिनेश चौहान और खुदाबख्श खलीफा हैं और ये सुनना चाहते हैं फिल्म नाच उठा संसार का गीत। पहले तो मैं डर गई, मतलब मैंने इस फिल्म का नाम ही नहीं सुना था, है ना, पुरानी फिल्म है। और ओ दिल जानिया ये गीत सुनना चाहते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में है, आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए, समंदर खारा है खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक और हम आपसे कहना चाहते हैं कि रेडियो कार्यक्रम माध्यम होना चाहिए आपके आनंद में वर्धन का, है ना, ना कि बीपी में वर्धन का। तो बीपी मत बढ़ाया कीजिए, है ना। कौशल्या देवांगन जी लिख रही हैं, एक नज़र ज़रा हमारी ईमेल पर भी दे दे, है ना। तो रिलैक्स रिलैक्स, आप सब राजेंद्र कुमार जी के फैंस हैं, बहुत अच्छी बात है, है ना। लेकिन इतने सारे गीत भी, दो गीत तो मैंने सुना है ही सही बैक टू बैक, है ना। परविंदर सिंह रंधावा जी देखिए ये कैसे लिखते, अगर हम पे रहीम आ जाए, रहम में ह पे मात्रा नहीं आती है परविंदर जी, अगर हम पे रहम आ जाए तो नाम शामिल कर देना। मतलब नाम तो मेरे ख्याल से काम अच्छा, खैर मतलब मेरी अपनी ये सोच है, है ना, कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम अपना नाम कमा सकते हैं। परविंदर सिंह रंधावा, लखनपाल जी, सुरिंदर कौर जी, आपकी पसंद का गीत पारसमणि फिल्म से, मेरे दिल में हल्की सी, है ना। तो उसी तरह से दिल को जो है ना, दिल दिल बोझा डालने की चीज़ नहीं है दरअसल, दिल जो है बड़ी ही नाजुक सी चीज़ है, और उस पर दिल पे मत ले यार,

मेरे ख्याल से काम अच्छा, खैर मतलब मेरी अपनी ये सोच है ना कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम अपना नाम कमा सकते हैं। परविंदर सिंह रंधावा, लखनपाल जी, सुरिंदर कौर जी, आपकी पसंद का गीत पारसमणि फिल्म से मेरे दिल में हल्की सी, है ना। तो उसी तरह से दिल को जो है ना, दिल बोझा डालने की चीज़ नहीं है। दरअसल दिल जो है बड़ी ही नाजुक सी चीज़ है, और उस पर दिल पे मत ले यार,

मेरे ख्याल से काम अच्छा, खैर मतलब मेरी अपनी ये सोच है ना कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम अपना नाम कमा सकते हैं। परविंदर सिंह रंधावा, लखनपाल जी, सुरिंदर कौर जी, आपकी पसंद का गीत पारसमणि फिल्म से मेरे दिल में हल्की सी, है ना। तो उसी तरह से दिल को जो है ना, दिल बोझा डालने की चीज़ नहीं है। दरअसल दिल जो है बड़ी ही नाजुक सी चीज़ है, और उस पर दिल पे मत ले यार,

मेरे ख्याल से काम अच्छा, खैर मतलब मेरी अपनी ये सोच है ना कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम अपना नाम कमा सकते हैं। परविंदर सिंह रंधावा, लखनपाल जी, सुरिंदर कौर जी, आपकी पसंद का गीत पारसमणि फिल्म से मेरे दिल में हल्की सी, है ना। तो उसी तरह से दिल को जो है ना, दिल बोझा डालने की चीज़ नहीं है। दरअसल दिल जो है बड़ी ही नाजुक सी चीज़ है, और उस पर दिल पे मत ले यार,

0: या मॉनसून सत्र दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि संसद परिसर और उसके आसपास भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने की संभावना है। लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि आरोप पूरी तरह झूठे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनका किशिनौ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: The National Sports University NSU Imphal, under the Ministry of Youth Affairs and Sports, has invited applications for various teaching and non-teaching posts. The vacancies include Professor, Associate Professor and Assistant Professor in Physical Education, Sports Medicine and Sports Coaching, Athletics. Non-teaching vacancies include Deputy Controller of Examination, Section Officer, Assistant Section Officer, Accountant, Assistant Librarian, Private Secretary, Library Assistant, Physiotherapist and Nursing Attendant. Eligible candidates must submit their applications along with supporting documents by 31st July 2026 to the Registrar, National Sports University, Imphal. Submission of the hard copy is mandatory, even if the application is sent by email. Detailed eligibility criteria and application forms available at the website, that is at www.nsu.ac.in. I repeat the website, it is www.nsu.ac.in. The Pension Fund Regulatory and Development Authority, a statutory regulatory body established under the PFRDA Act 2013, invites applications for the position of legal advisor on contract basis. PFRDA is responsible for promoting, developing and regulating the pension sector in India. The appointment will initially be for a period of 2 years with a consolidated remuneration of 3 lakh rupees per month. Candidates with suitable legal qualifications and professional experience may apply as per the eligibility conditions available on the official website. The last date for submission of applications is 23rd July 2026. Detailed terms, eligibility requirements and application format is available on the PFRDA website. Kindly look up www.pfrda.org.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में सहायक कुल सचिव का पद रिक्त है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट www.iitism.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 तक भेजे जा सकते हैं।

0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षण अभियंता, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषक, मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, केंद्रीय निष्कीटीकरण एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी, अस्पताल वास्तुविद, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक, वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रधान निजी सचिव, मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, भंडार अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी। आवेदन का फॉर्मेट और अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं आप। वेबसाइट है www.aimsbhopal.edu.in। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता, एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है, जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार। ढलती हुई शाम हमें एक अवसर देती है दिन भर की घटनाओं को समझने का, उनसे सीखने का और कल की ओर एक नई दृष्टि से बढ़ने का। इसी उद्देश्य के साथ आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ होगी क्षेत्रीय गतिविधियों और खेल जगत पर नजर। वहीं डेडलाइन में लेकर आएंगे एक ऐसा रोचक और विशेष विषय जो निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर करेगा। साथ ही याद करेंगे उन महान विभूतियों को भी जिनका आज के दिन से खास संबंध है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा। हेलो सायरा।
2: हेलो वैष्णवी। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड वैष्णवी ओपन द शो विद वेरी ब्यूटीफुल लाइंस के ढलती हुई शाम हमको कुछ मौका देती है। एंड यू वोंट बिलीव इट एक्चुअली टुक मी टू वन इंटरव्यू दैट आई हैड एक्चुअली रेड ऑफ दिलीप कुमार साहब। उनसे जो है वो छत पे पतंग उड़ा रहे थे बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स। तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे और सूरज ढलने लगा जब तो एकदम थम गए एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही जस्ट केप्ट लुकिंग एट दैट सेटिंग सन। व्हेन समबडी आस्क्ड हिम देन ही सेड दैट इस ढलते हुए सूरज को गौर से देखो, पता नहीं ये कल तुम्हें देखने को नसीब हो ना हो। सो ढलती हुई शाम एंड सेटिंग सन ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो मोमेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्शन दैट व्हाट हैज हैपेंड टुडे और इवन इफ यू आर जस्ट प्रॉब्ली यू नो नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग द स्टिलनेस ऑफ अ सेटिंग सन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट वी आर हियर एवरी डे व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट राइट बिफोर दैट टू गिव यू द परफेक्ट रैप टू द डे टेलिंग यू व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री ताकि आपको ये ना लगे दैट यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग, वो जो फोमो ना हो, इजंट इट। सो यस वैष्णवी हैज ऑलरेडी टोल्ड व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेस शो। ये सब कुछ होगा, ताजा तरीन खबरें। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा सो वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव टू शेयर फ्रॉम देयर। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर रफली। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एडजर्न फॉर द डे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद व्यक्त की, कहा इससे देश का कल्याण होगा।
2: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू होल्ड्स डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद हर मॉल्डोवन काउंटरपार्ट माया सांडू इन चिसिनाओ।
1: और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।
2: एंड हस्बे दस्तूर हम जो है शो को शुरू करते हैं विद

0: Very special segment Dateline India. Today we are going to talk about International Chess Day.
1: जी सायरा कहा भी गया है अगर हम देखें तो शतरंज दिमाग की कसरत है ये जो कहावत है ये ब्लेज पास्कल ने कहा था और ये शब्द आज भी पूरी तरह साबित होती है
0: That's right. Today that is 20th of July. It's a very special day for chess enthusiasts across the globe because it's International Chess Day.
1: बिल्कुल सही श्रोताओं चाहे आप ग्रैंड मास्टर हो शतरंज खेलना अभी अभी शुरू किया हो या सिर्फ चेक और चेकमेट जैसे शब्द ही सुने हो आज का दिन दुनिया के सबसे पुराने रोमांचक और बुद्धिमत्ता बढ़ाने वाले खेल का जश्न मनाने का है
0: एंड डू यू नो एक्चुअली व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड टुडे दैट इज 20th ऑफ जुलाई
1: सायरा 20 जुलाई का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फिडे की स्थापना हुई थी तब से फिडे दुनिया भर में शतरंज को बढ़ावा देने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करने और खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है
0: That's right. And here's another interesting fact that in 2019, the United Nations officially recognized International Chess Day, highlighting chess as a powerful tool for education, equality, cooperation and intellectual growth.
1: बिल्कुल सही कहा सायरा आपने और अगर हम श्रोताओं ये सोचें ऐसा कि ये दिलचस्प नहीं है कि सिर्फ 64 खानों और 32 मोहरों वाला ये खेल हमें जिंदगी के कई अहम सबक सिखाता है जैसे पहले से योजना बनाना धैर्य रखना समस्याओं का समाधान ढूंढना और सही समय पर सही निर्णय लेना
0: That's right. Those are not just 64 squares. It's a complete battlefield. And we all know when one is in a battle, toh kin kin cheezon ki zarurat hoti hai. Determination, control, focus, the right decision-making power. Everything is involved. So yes, definitely those 64 squares are not just a board game, but an entire battlefield that can teach you how to probably tackle the battle of life as well. And speaking of history, did you know that chess actually originated in India?
1: जी हाँ लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था ये युद्ध नीति पर आधारित खेल था जिसमें पैदल सेना घुड़सवार सेना हाथी और रथ जैसे असैन्य टुकड़ियां शामिल थी समय के साथ यही खेल विकसित होकर आज के आधुनिक शतरंज में बदल गया जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग खेलते और पसंद करते हैं
0: That's really something to be proud of. From India to the entire world, chess has truly crossed all borders.
1: सायरा मुझे लगता है कि ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी कि भारत ने दुनिया को शतरंज जैसा अनमोल खेल दिया है आज भारत शतरंज की दुनिया में एक मजबूत पहचान बना चुका है और चतुरंग की समृद्ध विरासत को पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए लाखों युवाओं को प्रेरित किया है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन बने और आज भी देखें तो इतिहास के महान खिलाड़ियों में उनका नाम गिना जाता है
0: That's right, Vaishnavi. And we all know that following his footsteps, a new generation of Indian stars has taken the world by storm, including D. Gukesh, who became the youngest ever world chess champion, R. Pragyananda, Arjun Erigaisi, Vidit Gujarati, Pentala Harikrishna, and Koneru Hampi, one of India's most successful women chess players. Their achievements have not only brought international recognition to India, but have also inspired countless young minds to embrace the game with passion, discipline, and determination.
1: सायरा अगर देखा जाए तो मुझे चेस इसीलिए पसंद है क्योंकि ये सबके लिए है इसमें उम्र भाषा या किसी देश की सीमा नहीं होती है जरूरत है तो बस एक शतरंज के बिसात खेलने के लिए एक साथी और कुछ नया सीखने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु मन की
0: That's right and sometimes I have seen chess aficionados Vaishnavi जिनको साथी की जरूरत नहीं होती वो अकेले ही दोनों तरफ से खेल रहे होते हैं you know challenging your own self you know so I think that is another quality that probably people inculcate while playing chess and chess promotes fairness inclusion mutual respect and friendly competition. Every move teaches us to think before we act, a lesson that's valuable both on and off the board.
1: श्रोताओं संयुक्त राष्ट्र का भी मानना है कि शतरंज जैसे खेल लोगों के बीच की दूरियां कम करते हैं आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देते हैं शांति का संदेश फैलाते हैं और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं
0: So well, here's a quick question for our listeners. If you could choose one chess piece to represent yourself, Which one would it be? वैष्णवी आप कौन सा चुनेंगी?
1: सर अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो नाइट यानी घोड़े को चुनूंगी क्योंकि वह सबसे अलग तरीके से चलता है और अपनी अनोखी चालों से हर किसी को चौंका देता है.
0: Well, great choice and I would probably go with the queen. Powerful, versatile and always ready to take on new challenges.
1: वाह सच कहा आपने सायरा. हर मोहरे की अपनी एक अलग पहचान

0: खासियत होती है। श्रद्धा, अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी से मेल खाने वाला एक शतरंज का मोहरा चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? अपने जवाब पर जरूर सोचिए, क्योंकि यही खेल को एक नए नजरिए से समझने का मजेदार तरीका है।
1: That's quite an interesting exercise that you've given probably to our listeners. And well, on this International Chess Day, let's celebrate not just a game, but a timeless tradition that sharpens our minds, inspires creativity, and reminds us that every great victory begins with a single thoughtful move.
0: श्रोताओं, चाहे आप अपनी पहली ओपनिंग सीख रहे हो या भविष्य के शतरंज चैंपियन बनने का सपना देख रहे हो, एक बात हमेशा याद रखिए, हर महान खिलाड़ी कभी न कभी एक शुरुआती खिलाड़ी ही था।
1: That's right. So yes, here's wishing everyone from the team of Parikrama and AIR a very happy International Chess Day. Keep thinking, keep learning, and may every move you make lead you closer to success.
0: सायरा, अब अगर आगे मैं इसी प्रेरणादायक विचार के साथ यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और शतरंज भी हमें यही सिखाता है। इसलिए जाते जाते एक प्रेरणादायक कथन सुनिए। हर शतरंज का मास्टर कभी ना कभी एक शुरुआती खिलाड़ी ही था।
1: Before we proceed to our correspondents who are waiting with the interesting stories, let's tell a very important announcement that in our bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on income tax return filing, awareness, convenience and timely compliance with Sharad Kohli, Chartered Accountant and Tax Expert Ashwini Rana, Banking Expert. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, you simply have to dial telephone numbers 011-2331-0481, another number 011-2371-7117, 2371-7106, and another number 2331-4444. This you can obviously listen from 9:30 p.m. onwards tonight. And you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with hashtag Ask AIR.
0: श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
1: Yes, so we are starting our parikrama from up north, from the heaven on earth in Jammu and Kashmir. The Chinar Book Festival is underway at the Sher-e-Kashmir International Conference Center in Srinagar, entering its third day today. The 9-day festival organized by the National Book Trust India under the Ministry of Education in collaboration with the District Administration Srinagar and the National Council for Promotion of Urdu Language will continue till 26th of July.
2: More than 200 publishers from across the country are participating in the festival, showcasing books in English, Urdu, Kashmiri, Hindi and several other Indian languages. The event brings together readers, writers, publishers, artists and literary enthusiasts through book exhibitions, author interactions, literary discussions, workshops, storytelling sessions and cultural performances. The festival also features special Urdu literary sessions, mushairas and an innovators meet, showcasing student innovations from leading educational institutions in Jammu and Kashmir. The major highlight this year is the release of 24 bilingual books developed through the Gojri Translation Workshop held during 2025 edition of the festival. The event also sees the launch of first set of novels developed under the Raj Tarangni Samvad initiative. Besides the release of Tea of Seven Bridges, an English translation of Gauri Shankar Raina's Saat Palon Ka Shahar, and an Indian Muslim Speaks by Dr. Hafizur Rahman. The festival has been conceived as a platform to encourage reading habits among the youth while providing opportunities for students to interact with eminent authors, scholars, artists and innovators from across the country. Students from different districts of the UT are participating in various literary and educational activities during the festival. More than 800 artists, writers, performers, curators and literary personalities are expected to take part in the 9-day event as it aims to celebrate India's linguistic and cultural diversity while providing a platform to the local talent as well. Students, book lovers and general public from across the UT have been invited to visit the festival as it is being described as a celebration of books, ideas, language and culture aimed at promoting reading among people of all age groups. For Parikrama, this is Ishfaq Shah from Srinagar.
0: और श्रीनगर से अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार के भागलपुर में कृषि वैज्ञानिकों ने एक अनोखा ऑर्गेनिक हाइड्रोजेल तैयार किया है जो कम पानी में भी किसानों के लिए सिंचाई की समस्या का समाधान कर सकता है। सारा, इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये भारत सरकार ने इसे आविष्कार को पेटेंट भी कर दिया है। और अधिक ब्यौरा के साथ चलते हैं हमारी संवाददाता के पास।
3: आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत तो हम सब ने खूब सुनी है। इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है भागलपुर स्थित बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। यहाँ के वैज्ञानिकों ने आम की गुठली से प्राकृतिक हाइड्रोजेल तैयार किया है जो कम पानी में किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह बताते हैं कि जल्द ही इस हाइड्रोजेल का खेतों में परीक्षण किया जाएगा।
4: तो गुठली का मतलब गुठली के अंदर जो सीड होता है ना, सीड कर्नल उसे बोलते हैं, उससे हमारे वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजेल बनाया। इसकी खासियत यह है कि जो हाइड्रोजेल है, जो उसका टुकड़ा हाइड्रोजेल का है, जिस साइज का रहेगा उससे करीब 400 गुना अधिक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और उसको फिर जब मिट्टी में आप जहां रखेंगे तो वो पानी धीरे धीरे रिलीज कर देता है। यानी जहां सूखा है तो सूखे में कहां नमी अगर करना है, बारिश नहीं है, तो हम इसका उपयोग कर सकता है। अब इसको हम फील्ड में जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जो तिलहनी फसल है, उसके ऊपर भी हो सकता है पूरे भारतवर्ष में एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम लोग आगे चलाएं।
3: दक्षिण बिहार के कृषि प्रधान जिलों में जहां मानसून की मेहरबानी अक्सर कम होती है, वहां ये हाइड्रोजेल किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। उम्मीद है प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर ये हाइड्रोजेल बारिश की बेरुखी में किसानों के चेहरे पर शिकन रोकने में मदद करेगा। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: And now we head towards down south to God's own country, Kerala. Well, Vaishnavi, abhi to dekha jaye, Onam mein almost ek mahine se bhi zyada hai, which is of course Kerala's biggest festival. But many of the celebrations and traditional rituals leading up to the festival have already begun. One of the most unique among them is the famous Aranmula Valasadhya in Pathanamthitta district. And let's hear more about this tradition from our Thiruvananthapuram correspondent.

0: the team.
1: For us, it's a different pressure because we have to give the best to the students so they can understand what is being asked and attempt. So the subject areas covered were very vast. The problems were very different for each question. So attempting 100 questions is a big feat in 6 hours. And students also enjoyed.
0: Now, let us listen to Bhavya Gunwal, the sole gold medalist from the Indian team, who has an interesting take on the experience.
2: The point is not that I am the sole gold medalist from the country. The point is like everybody of us got medals, and that is such a huge feat for the country, for our teachers, for HBCSC, for our parents.
0: With this remarkable success at the 37th International Biology Olympiad, India has proved that it can perform equally well in both theory and practicals, reaffirming its growing stature in the field of science. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
3: और मुंबई से आपको ले चलते हैं हरियाणा की ओर. हरियाणा में मॉनसून के दौरान पौधारोपण का काम जोर शोर से चल रहा है. आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से.
4: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने और वन संरक्षण को मजबूत बनाने तथा पौधारोपण अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वन महोत्सव पर पौधारोपण केवल संख्या तक सीमित न रहे बल्कि प्रत्येक पौधे का संरक्षण और नियमित रख रखाव भी सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों, शहरों, स्थानीय निकायों, नगर परिषदों तथा अन्य सरकारी परिसरों में पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थान पहचान कर व्यापक स्तर पर पौधे लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी पौधों और पेड़ों की जियो टैगिंग कर उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाए. जिन सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में पौधारोपण किया जाए वहां उनके रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी भी तय की जाए. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा.
3: और सर, आप चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल. शुरुआत करते हैं फीफा से. कल रात काफी रोमांचक मैच रहा और स्पेन ने आखिरकार फीफा विश्व कप अपना खिताब जीत ही लिया है. फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया. इसके बाद स्पेन ने फेरिन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई थी.
5: That's right, everybody was probably, you know, waiting. And in fact, I have friends in Kerala who said ki Kerala mein jo frenzy hoti hai football ki, uski wajah se aaj schools band kar di gayi because people knew that they would be up watching the match late into the night. And well, the frenzy is now over with Spain winning the cup. Moving on to some news from the world of business. Well, benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. Sensex declined 443 points or 0.6% to close at 77,709, while Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
3: हर तारीख अपने साथ कुछ ऐसे नाम लेकर आती है जिन्होंने अपने विचारों, संघर्ष, सृजन और समर्पण से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी. आइए 20 जुलाई से जुड़े ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों को याद करें और उनके जीवन से प्रेरणा लें. श्रोताओं, जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की चर्चा होती है तो भगत सिंह के साथ एक और नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है. आइए याद करते हैं उस अमर क्रांतिकारी को, बटुकेश्वर दत्त. बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ बुलंद संदेश दिया था. उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि भारतवासियों को की आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना था. उन्होंने लंबा कारावास सहा लेकिन देशभक्ति के अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटे. उनका साहस आज भी युवाओं को प्रेरित करता है.
5: Next on our list, we are remembering Pandit Samta Prasad today on his death anniversary. We all know that he was a classical musician and tabla player from the Banaras Gharana. In fact, he played the tabla in many Hindi films as well, Meri Surat, Teri Aankhe, and of course in Shole, with the film composers R.T. Barman and Bapi Lahiri, who actually were his disciples. He was the son of Hari Sundar, also known as Bacha Mishra. His grandfather was Jagannath Mishra, and his ancestors included Pratap Maharaj, also known as Godai Maharaj. He was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1979, India's National Academy for Music, Dance and Drama, and the Padma Bhushan, which is the third highest civilian honor given by the Government of India in the year 1991.

0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए न्यायपालिका के दरवाजे खोलने वाली पहली महिला कौन थी? हम बात कर रहे हैं अन्ना चांडी के बारे में। उन्होंने भारत की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में सेवा दी थी। उन्होंने ऐसे समय में न्यायपालिका में अपनी पहचान बनाई जब इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम थी। वे केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी। महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।
1: Today we are remembering an actress and a singer, and she was, you know, somebody who actually ruled the hearts of Indian cinema. We are talking about Geeta Dutt. Of course, we know that she found particular prominence as a playback singer in Hindi and Bengali cinema both. She is considered one of the best playback singers of all time, in especially Hindi films. She also sang many modern Bengali songs in the non-film genre. And agar unki baat ki jaye, to obviously we all know that she later married Guru Dutt also. Khas tarah se Guru Dutt ki filmon mein unhone bahut se yaadgar gaane gaaye.
0: सायरा, अगर मेरे से पूछा जाए उनके फिल्मों के बेहद खूबसूरत गीत, तो उनमें से था वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बाबूजी धीरे चलना और मेरा सुंदर सपना बीत गया। और भी काफ़ी गीत हैं, लेकिन अब फिलहाल हम उनके कुछ चुनिंदा गीत आपके लिए लेके आए हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते बेखबर फूल को भी खींच के पत्थर पे न मार, बेखबर फूल को भी खींच के पत्थर पे न मार कि दिले संग में ख्वाबिदा सनम होता है।

गाते गुनगुनाते में आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे।

अभी अभी जुड़े दोस्तों को बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। गाते गुनगुनाते में आपके साथ है हम रूमी मलिक। दिल में दिलबर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में दिलबर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार जब घर नहीं तो कुछ नहीं। दिल में कितना ही दर्द हो लेकिन चश्म जब तर नहीं तो कुछ भी नहीं। अक्ल हो लाख होशियार मगर, अक्ल हो लाख होशियार मगर, इश्क रहबर नहीं तो कुछ भी नहीं। शक्ल कितनी ही सूफियाना हो, साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं।

आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz गाते गुनगुनाते आपके साथ हम रूमी मलिक। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। किसी ने भीगे हुए बालों से झटका पानी, किसी ने भीगे हुए बालों से झटका पानी, झूल के आई घटा, टूट के बरसा पानी।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। आपके साथ हैं हम रुमी मलिक। दिल चुरा के नजर चुराई है, दिल चुरा के नजर चुराई है, लुट गए दुहाई है। एक दिन मिलकर फिर नहीं मिलते, किस कयामत की ये दुहाई है। ए असर करना इंतजार ही दुआ, मांगना सख्त बेहयाई है। दिल चुरा के नजर चुराई है, लुट गए दुहाई है।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है जान के बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, वरना इन तारों भरी रात में क्या क्या होता नहीं।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे थे गाते गुनगुनाते। कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव पर और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए लेके आए हैं। जिंदगी में हर पहली चीज़ याद रहती है ना, पहली तनख्वाह याद रहती है, पहली जॉब याद रहती है, पहला बॉस याद रहता है, पहला प्यार याद रहता है और प्यार देता है हमको बहुत सारा नशा। तो ऐसा ही नशा होना चाहिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि तुमको वाइन का नशा है, हमको डिवाइन का नशा है। तो कुछ ऐसा नशा होना चाहिए जो बरकरार रहे। जिंदगी में अगर उद्देश्य या पर्पस होता है तो इंसान कभी थकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ रूमी मलिक को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहें आकाशवाणी FM गोल्ड खरा सोना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए

0: पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनोव में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both houses of parliament witnessed multiple adjournments on the first.

0: conduct themselves peacefully, refrain from indulging in any unlawful or violent activities, and comply with the lawful directions issued by the police officers or personnel deployed on duty. In the United Kingdom, Andy Burnham, the newly elected leader of the Labour Party, has took charge as country's new Prime Minister. King Charles III invited the 56-year-old former mayor of Greater Manchester to form a new government following the resignation of Keir Starmer. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2026 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण में देशवासियों से बारिश की हर बूंद को बचाने और जल संरक्षण के प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाने की अपील की थी। इसकी प्रतिक्रिया में देश भर में वर्षा जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक कैच द रेन अभियान को नई गति दी।
3: जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल संरक्षण को लेकर पिछले कुछ वर्षों में देश में लगातार व्यापक प्रयास किए गए हैं। कैच द रेन अभियान भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के साथ जोड़ते हुए जल सुरक्षा को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ये समय के साथ किस तरह विकसित हुआ और देश में जल संरक्षण को नई गति देने में इसकी क्या भूमिका है। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में कैच द रेन अभियान ने जल संरक्षण को एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया है। अब ये केवल वर्षा जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए किन किन उपायों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
4: वर्षा जल संरक्षण के सोच के साथ 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी। इसका संदेश था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां और जब भी बारिश हो उसे वहीं संजोएं। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के अनुभवों के आधार पर की गई थी। उस समय देश के 256 जिलों के 1592 जल संकट ग्रस्त ब्लॉकों में वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलागम विकास, जलाशयों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके बाद हर वर्ष अभियान को नई थीम और नए फोकस के साथ आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2021 में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर जोर दिया गया। जल स्रोतों की जियो टैगिंग, वैज्ञानिक योजना और जन जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके बाद 2022 में पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण, आर्द्र भूमि और नदियों के संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। साल 2023 में अभियान का मुख्य उद्देश्य पेयजल स्रोतों को टिकाऊ बनाना और जल संकट वाले 150 जिलों में भूजल संरक्षण को मजबूत करना रहा। वहीं 2024 में अभियान की थीम रही नारी शक्ति से जल शक्ति। इस दौरान महिलाओं की भागीदारी से जल स्रोतों की सफाई, तालाबों की गाद निकालने, बंद बड़े बोरवेलों को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाने और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण जैसे अनेक कार्य किए गए। समय के साथ सरकार ने महसूस किया कि केवल सरकारी योजनाओं से जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसी सोच के साथ 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत से जल संचय जन भागीदारी 1.0 की शुरुआत की गई। इस पहल का आधार 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत रखे गए, कम्युनिटी, CSR और कॉस्ट, यानी समुदाय की भागीदारी, संस्थागत सहयोग और कम लागत वाले स्थानीय समाधान। इस अभियान के तहत कम लागत वाले भूजल भरण ढांचे तैयार किए गए, बंद पड़े बोरवेलों को फिर से उपयोग में लाया गया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण के उपाय अपनाए गए। इसका लक्ष्य कम से कम 10 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025

0: के दौरान देश भर में 27 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं तैयार किए गए। इस सफलता के बाद 1 जून 2025 को जल संचय जन भागीदारी 2.0 शुरू किया गया। इस बार विशेष ध्यान उन जिलों पर दिया गया जहां भूजल का दोहन अधिक हो चुका है या जहां स्थिति गंभीर मानी जाती है। इस चरण में 31 मई 2026 तक कम से कम 1 करोड़ भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाएं बनाए जाने की सूचना मिली है, जो निर्धारित लक्ष्य से 50% से अधिक है। हालांकि इन संरचनाओं का भौतिक सत्यापन और वैलिडेशन अभी किया जा रहा है। अब इसी अभियान को और व्यापक रूप देते हुए कैच द रेन की शुरुआत की गई। इसमें जल संचय जन भागीदारी और कैच द रेन को एक साथ जोड़ते हुए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संग्रहण और जन भागीदारी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: श्रोताओं, किसी भी अभियान की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके जमीनी प्रभाव और लोगों की भागीदारी से तय होती है। यही वजह है कि कैच द रेन अभियान को केवल सरकारी योजनाओं के रूप में नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

0: समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर समाज की साझा जिम्मेदारी बने। अभियान के तहत लोगों से अपने घरों, आवासीय परिसरों और कार्यस्थलों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने की अपील की गई है। साथ ही जहां संभव हो रिचार्ज पेट और रिचार्ज शाफ्ट बनाए जाएं, बंद पड़े बोरवेलों को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाया जाए, तालाबों और जलाशयों से गाद हटाकर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाए तथा जल संरक्षण वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। इन छोटे छोटे प्रयासों को मिलाकर बड़े स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रखा गया है। जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और अलग अलग योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। अभियान के तहत विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप तथा जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन कैंपा, वित्त आयोग अनुदान और विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इससे जल संरक्षण के कार्यों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। अभियान को मजबूत बनाने में जल शक्ति केंद्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के विभिन्न जिलों में स्थापित ये केंद्र जल संरक्षण से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, स्थानीय प्रशासन और समुदायों को तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं तथा जल संरक्षण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं। इससे लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाने और स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना बनाने में सहायता मिल रही है। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, कैच द रेन अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें सरकार और समाज दोनों की साझी भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की इसी सोच के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्थानीय संस्थाओं और आम नागरिकों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर आकाशवाणी से साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण ने अभियान में जन भागीदारी और सरकार के दृष्टिकोण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाएं। उसी के अंतर्गत अमृत सरोवर या अटल भूजल योजना, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जाम्पल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जाम्पल्स, देश भर में अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक।
1: श्रोताओं, ये स्पष्ट है कि कैच द रेन अभियान केवल वर्षा जल संचयन का कार्यक्रम नहीं है, ये जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक व्यापक प्रयास है। पिछले कुछ वर्षों में जल शक्ति अभियान से लेकर जल संचय, जन भागीदारी और अब कैच द रेन तक की यात्रा यह दिखाती है कि सरकार जल संरक्षण को लेकर एक योजना के रूप में नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी से जुड़े राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य प्रथम दिवसे नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य विपक्षी सदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसदः वर्षाकालीन सत्रस्यारम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशील सत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनौ राज

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls on your market related queries, but do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,239 पर बंद हुआ. भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावर ग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7% and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9% and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ। शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
2: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल

0: देखने को मिला, निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है, और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
1: जी,
0: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
1: जी,
0: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
1: जी।
0: तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पे हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
2: Right, Shishir ji, we were talking of the banking stocks. PSU banks and private banks, almost 5% of a difference. If you look at the PSU banks, jumped 3%, and the private banks dropped 2.1%, almost a 5% contrast. What accounts for that?
0: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net profit. And at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks. And that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
2: Another point, Shishir ji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: जी नमस्कार शिशिर साहब।
0: नमस्कार।
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया। सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट हैं, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं।
0: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। और ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं। पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं IT सेक्टर्स की, जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने। यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं। आपका यह है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा? हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाएं, तकनीक को अपना मालिक ना बनाएं। तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक IT सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं IT सेक्टर के, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी, या NVIDIA की जो CEO हैं

0: दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि एआई को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एआई को साथ लेने की जरूरत है। इससे हमारा आपका कौशल्य बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पर हम आएंगे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं। और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की। जी, अपना सवाल पूछिए महोदय।
2: हाँ सर, मैडम, मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है? तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था, इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, इसमें पैसा लगाना ठीक होगा? और
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे, वहाँ पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा। आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज़ रोज़ के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। चूँकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं। और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ किसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो लड़ाई चल रही है तो वहाँ काफ़ी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, यूक्रेन, ईरान और अदर अरब क्षेत्रों में। तो आने वाले समय में यहाँ काफ़ी जो काफ़ी बिल्डिंग के द्वारा से भरेगी तो इस क्षेत्र में काफ़ी स्कोप हो जाएगा। तो इसमें क्या बेनिफिट आगे हम साथ रास्ता बताए।
0: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है। अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से। आगे बढ़ते हैं निशा।
4: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार और यूरोपीय शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों की अगर बात करें तो मिले जुले रुख के साथ ये कारोबार करते नजर आए। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़ा। वहीं लंदन का फुटसी 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका।
5: मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं।
1: जी,
5: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
0: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय ज़रूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपये पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपये का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
1: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा। ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी।
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें जीडीपी, हम बात करें महंगाई दर की, और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना, इसलिए आधार वर्ष का तय, नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप जीडीपी का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है, डब्ल्यूपीआई का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, सीपीआई की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ है, और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं, ये जो आंकड़े आते हैं, ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
4: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
6: हाँ जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
6: मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने बैंक में पैसे लगाए हुए हैं हाँ सर
0: जी जी
6: तो इसको जैसे पीपीएफ का पैसा तो सरकार देती है तो इसको बैंक देगा या सरकार देगी और ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा पैसा ज्यादा करवा दिया तो
0: कांता जी दो बातें हैं जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है उस पर ब्याज

0: भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं, वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहाँ पर फ़ायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
1: शिशिर दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
2: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
0: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है। आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर हैं वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, इसमें से कोई भी एक जानकारी दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
3: शिशिर जी, वन question we which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
0: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are is there that why there the number is so encouraging, why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number, and then the consumption number.
1: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
4: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी
0: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
4: संतोष
0: पॉलिसी।
4: हाँ हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है।
4: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41। तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा। तो सर वो 2 लाख के इंश्योरेंस बताता प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए।
0: okay.
4: ये 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं। और एक और सवाल है
0: जी,
4: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
0: जी,
4: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर।
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे

0: पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की। पहली बात कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पे जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको देना पड़ता है। रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है।
1: Yeah, moving on to crude now. The global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the US could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji, on crude.
0: The problem we are facing at this moment is there's still a lot of uncertainty. Mm. Sometime you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. Mm. On the other side, when you hear US president, he has his own way of explaining the thing. So at this moment, today, you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
1: 0.8%.
0: It was $87 a barrel. Mm. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
1: Right. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,41,754 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की बढ़त के साथ 2,19,233 रुपए पर चल रही थी। शिशिर जी, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी आपसे सोने और चांदी के भाव पर।
0: देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई के बीच में सोने चांदी के भाव में गिरावट आ रही है। ये कई बार लोगों को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से। जब जब डॉलर मजबूत होगा, सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा।
2: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद,
1: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239। इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर, एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन, एंड दैट्स ऑल वी हैव in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar along with my co-anchor Prachi Priya saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी

दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनाव में स्टेफान सेल मारी सीफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनाव में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: conduct business. Later, the upper house was also adjourned for the day. Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session this morning, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying that both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है जीव मात्र का कल्याण होता है साथियों पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं
0: President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said that India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Murmu and her Moldovan counterpart, Maya Sandu, held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Mare Sishtwa in Chisinau. The Supreme Court today asked the Uttar Pradesh government to apprise it about the possibility of setting up an SIT to probe the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya and cautioned the litigants not to politicize the issue. A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joy Malia Bagchi and V. Mohanna asked Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the UP government, to take instructions on whether the SIT, which had examined the entire issue before the registration of the FIR, could be entrusted with the responsibility to probe the case instead of the local police. Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of the protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said, a proposal came from the protesters to hold talks with the government and the discussions have been ongoing since 11:50 a.m. this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. The Delhi police has appealed to all the protesters in New Delhi to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. In a video message, Additional Commissioner and Public Relations Officer of Delhi Police, Rajiv Ranjan, urged the participants to conduct themselves peacefully, refrain from indulging in any unlawful or violent activities. In Jammu and Kashmir, four more people lost their lives in rain-related incidents across Jammu Division today, taking the death toll to 16 over the past 2 days. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the situation following heavy rains, flash floods and landslides in several districts of the Union Territory. Akashwani correspondent reports that the LGE spoke with the senior officials and directed for swift relief and infrastructure restoration in the affected areas. And in the United Kingdom, Andy Burnham, the newly elected leader of the Labour Party, has taken charge as the country's new Prime Minister. And that is the end of this news bulletin.
2: Surkhiyon mein. Ye आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में इसके अंतर्गत सुनिए पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 राष्ट्रों की यात्रा पर कल मोल्डोवा पहुंची और बाद में फिर वो नॉर्थ मैसिडोनिया और फिर बाद में रोमानिया पहुंचेंगी और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं प्रोफेसर अंशु जोशी प्रोफेसर जोशी आपका बहुत स्वागत है
4: बहुत धन्यवाद
3: प्रोफेसर जोशी राष्ट्रपति सबसे पहले अपने पहले चरण में कल मोल्डोवा पहुंची हैं और ये गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा होगी मोल्डोवा की 20 जुलाई से 21 जुलाई तक ये यात्रा होने वाली है। इस यात्रा को आप कैसे देखती हैं, अगर हम खास मॉल्डोवा की बात करें तो?
4: निश्चित जी, ये हमारे भारतीय राष्ट्रपति की एक ऐतिहासिक यात्रा है मॉल्डोवा की। यदि मॉल्डोवा और भारत के संबंधों की बात की जाए तो कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर बहुत अच्छा सहयोग है दोनों देशों के बीच में। और मॉल्डोवा की यदि बात की जाए तो छोटा देश है यूरोप का, लेकिन ये सामरिक दृष्टिकोण से अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। यदि हम पूर्वी यूरोप की बात करें तो इसके द्वार के रूप में मॉल्डोवा को जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने हाल ही में एक ऐतिहासिक FTA साइन किया, हिस्टोरिक डिफेंस डील साइन की। तो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मॉल्डोवा भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी नजर आता है। और जब भारत ग्लोबल साउथ की बात वैश्विक स्तर पर करता है, ग्लोबल साउथ को नेतृत्व देने की बात करता है, और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिफॉर्म्स की बात करता है, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करता है, तो वहां मॉल्डोवा भारत की बात को इको करता हुआ नजर आता है। तो एक गहरा संबंध दिखाई पड़ता है दोनों देशों के बीच में। और व्यापार की दृष्टि से मैं कहूं तो फिर निवेश को देखते हुए, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट्स को देखते हुए, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में और प्रोफेशनल मोबिलिटी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुलते हुए नजर आते हैं। तो चाहे कूटनीतिक स्तर पर देखें, सामरिक स्तर पर देखें, व्यापारिक सहयोग की ओर देखें, ऊर्जा सहयोग की ओर देखें, मॉल्डोवा भारत का आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। और हमारी राष्ट्रपति जब इस देश की यात्रा पर हैं तो दोनों द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में सहयोग और ज्यादा गाढ़ा होगा।
3: राष्ट्रपति के साथ दल में बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी और बिजनेस कम्युनिटी भी साथ में वहां पे गए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मौजूदा जो हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही हैं, उसमें जो भारत का ये आउटरीच है, खास करके ऐसे देशों में, अगर हम यूरोप की, आपने यूरोपियन यूनियन की बात की, जो मदर ऑफ ऑल डील्स, जो ट्रेड डील हुआ था, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये आउटरीच टुवर्ड्स मॉल्डोवा।
4: पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि वैश्विक राजनीति में लगातार एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक और रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो पश्चिम एशिया के संकट ने पूरे विश्व के सामने नई नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर मानवीय सुरक्षा तक। ऐसे में भारत अपनी सकारात्मक कूटनीति के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हुआ नजर आता है और लाइक माइंडेड देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझा सहयोग की और साझा विकास की बात करता है। तो हम याद करें कि अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण देशों की यात्रा संपन्न की। इसके पहले वो यूरोप के दौरे पर थे, इसके पहले उन्होंने पश्चिम एशिया के, अफ्रीका के देशों का दौरा किया, यूरोप के कुछ और देशों का दौरा किया। तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम है, इसके जरिए भारत ने न सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया है, भारत ने वैश्विक स्तर पर इस बात का संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है। आज का जो विश्व है उसमें शक्ति की परिभाषा में तकनीकी सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। और इस दृष्टि से मॉल्डोवा हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार नजर आता है, न सिर्फ बहुपक्षीय स्तर पर EU के मेंबर के रूप में जो हमने एक FTA कर रखा है, तो निवेश के, को मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग जो द्वार हैं संभावनाओं के वो खुलते हुए नजर आते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर फिर जब जो कूटनीतिक लक्ष्य लेकर के भारत वैश्विक स्तर पर बात करता है, चाहे वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा हो या फिर अलग अलग हम गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करते हो या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हो, तो वहां पर फिर हमको मॉल्डोवा एक सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए मॉल्डोवा का ये दौरा हर प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है।
3: प्रोफेसर जोशी, और राष्ट्रपति अपने यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसिडोनिया पहुंचेंगी। प्रोफेसर जोशी, हम ये समझना चाहेंगे कि नॉर्थ मैसिडोनिया का कितना प्रभाव, किस प्रकार आप इसे देखती हैं?
4: देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भारत उन यूनाइटेड नेशंस के 40 देशों में से एक है जिसने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन फॉर नॉर्थ मैसिडोनियाज एडमिशन टू यूनाइटेड नेशंस जो 1993 में हुआ था उसको को स्पॉन्सर किया था। और नॉर्थ मैसिडोनिया की एक एम्बेसी नई दिल्ली में 2008 से है। दोनों ही देशों के, यदि हम सामरिक सहयोग की दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक सहयोग की बात करें या आर्थिक सहयोग की, तो दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। और नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य देश के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान करता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमारे लिए एक मार्केट के रूप में। फिर नॉर्थ मैसिडोनिया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस दृष्टि से, और एक को मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग हब ये भारत को मानता है, तो इस दृष्टि से भारत के बिजनेसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि मैं आपको दूसरे यदि क्षेत्र बताऊं तो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। और ये भी बता दूं कि यदि हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मदर

0: टेरेसा नॉर्थ मैसेडोनिया से ही ताल्लुक रखती थी, तो फिर बाद में ये इंडियन सिटीजन बनी। तो यदि हम ऐतिहासिक सहयोग या ऐतिहासिक रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बड़ा गाढ़ा रिश्ता है। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी भारत नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो इसलिए राष्ट्रपति का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी अफसर जोशी, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा होगी नॉर्थ मैसेडोनिया की। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि वहाँ के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जी वहाँ पहुँचेंगे 21 और 22 जुलाई को, और वहाँ नॉर्थ मैसेडोनिया के असेंबली को भी एड्रेस करेंगे। और साथ साथ इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम, अभी हम थोड़ी देर पहले बिजनेस की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रोफेसर जोशी। अगर हम देखें, जैसे कि हमने पीछे भी जब बात कर रहे थे मोल्डोवा की, तो बिजनेस खास करके करंट परिप्रेक्ष्य में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना ये आउटरीच इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जबकि हमें किसी भी एक ब्लॉक को पर हम डिपेंड नहीं रह सकते आज के डेट में, ये आज का ये वास्तविक सच है। और दोनों ही पक्ष जो हैं, खास करके भारत की बात करें या नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें, दोनों ही काफी कीन हैं अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा गहरा बनाने में। और प्रायोरिटी सेक्टर्स की आपने बात की, एग्रीकल्चर की बात की, फार्मा की बात की, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे आप देखती हैं इसे?
0: देखिए, हमने अलग अलग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की बात की और मोल्डोवा के साथ भी भारत के इसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध हैं। यदि हम व्यापार की दृष्टि से बात करें तो दोनों ही द्विपक्षीय, और फिर मैं ईयू पर आऊंगी, ईयू के मेंबर के रूप में मैसेडोनिया का एक महत्व बढ़ जाता है। और भारत जिस तरह से लगातार अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को मजबूत करते हुए, विशेषकर तब जब ट्रंप ने हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए थे, तो भारत ने इस बात को लगातार सुदृढ़ करने का प्रयास किया कि जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनके साथ हम साझा सहयोग, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, हम इसको आगे बढ़ाएं और लगातार अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें। तो फिर इस दृष्टि से मैसेडोनिया के साथ फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर ईयू के मेंबर के रूप में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो हमारे जो बिजनेसेस हैं और हमारा जो विशेषकर लघु और मध्यम उद्योग है, उसके लिए फिर ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संभावनाओं का क्षेत्र खुल जाता है इन यूरोपियन देशों के साथ यदि हमारा सहयोग बढ़ता है तो, क्योंकि भारत लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि ये जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज अभी तक की रही हैं इन पर भारत काम करे, और इस प्रकार के देशों के साथ जो भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इको करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे साझा सहयोग की सबके विकास की बात हो, तो फिर ऐसे देशों के साथ आगे बढ़ा जाए।
1: प्रोफेसर जोशी, और राष्ट्रपति अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जुलाई 23 से लेकर जुलाई 25 तक रोमानिया की यात्रा पर होंगी। गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की तीन दशक के बाद ये पहली यात्रा होने वाली है। और फिर से हम बता दें कि ये यात्रा वहां की राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ये हो रहा है। तो रोमानिया का जो ये विजिट है प्रोफेसर जोशी, ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, रोमानिया की और भी देखें तो भारत और रोमानिया के बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस 1948 से ही हैं, और एक सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें तो दोनों ही देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा है जो हमारे राष्ट्रपति की पहली बार रोमानिया की यात्रा होने वाली है किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की, तो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का या आर्थिक सहयोग का क्षेत्र हो, तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, सामरिक पार्टनरशिप की हम बात करें, तो फिर हर प्रकार से ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1948 में दोनों देशों के बीच में संबंध विकसित हुए और फिर इसके बाद एम्बेसी लेवल के जो कूटनीतिक संबंध है वो 1957 में स्थापित हुए। 2023 में दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को पूर्ण किया है, मनाया है। और रक्षा के सहयोग में यदि मैं बात करूं तो दोनों ही देशों ने एक ज्वाइंट कमिटी बनाई है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के, और कैसे को मैन्युफैक्चरिंग के, को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के दोनों देशों ने एक बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान बनाया, जिसमें कि जो कन्वेंशनल हमारे रक्षा सहयोग के क्षेत्र हैं उसके अलावा साइबर डिफेंस, ज्वाइंट ट्रेनिंग और कैसे इंडस्ट्रियल कलेबरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि मिलिट्री इंडस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम कैसे दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी शामिल कर सकते हैं, इसकी बात है। फिर हम यदि आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो दोनों के बीच का बायलेटरल ट्रेड बहुत बड़ा अमाउंट, और रोमानिया का लेकिन जिस प्रकार से लोकेशन है, भारत के साथ जिस तरह का सहयोग है, ईयू में इसकी जिस प्रकार की मेंबरशिप है, तो ये एक मार्केट एक्सेस भारत को देता है। और जो भारत की अलग अलग 500 कंपनियां हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड है, तो भारत की कंपनियों के लिए यूरोप में ये महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, आईटी के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। फिर रोमानिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन के दिखाई पड़ता है और भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, भारत के ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात को ये भी साझा करता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत के लगातार सहयोगी के रूप में देखा जाता है। तो इस दृष्टि से भी

0: हमारी राष्ट्रपति का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी, रोमानिया यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है और इससे हम दोनों के बीच में, भारत और रोमानिया के बीच में, संबंध और भी गहरा, खास करके आर्थिक संबंधों की बात करें तो और भी गहरा होने की। गौरतलब है प्रोफेसर जोशी की तीनों राष्ट्र, मोल्डोवा हो, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया, इन तीनों राष्ट्रों ने पिछले वर्ष जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें बहुत ही स्ट्रांगली सॉलिडारिटी सपोर्ट और एक बहुत ही साथ दिया था भारत का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोशी कैसे देखते हैं इसे आप?
0: जी बिल्कुल, जैसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि मोल्डोवा, मैसेडोनिया और रोमानिया, ये तीनों देश भारत की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, तो इसमें ये देश भारत के बड़े सहयोगी के रूप में नजर आते हैं और ये बिल्कुल कहने से नहीं चूकते। भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत का लगातार साथ दे रहे हैं और इसीलिए इस दृष्टि से भी ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे राष्ट्रपति का, इन तीनों देशों का। और आपको ध्यान होगा कि जब हमारे ऊपर दुर्दांत पहलगाम अटैक हुआ था और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो ये तमाम देश जो है ये भारत के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हमको खड़े हुए दिखाई पड़े।
1: प्रोफेसर जोशी, और जाते जाते अक्सर जो दौरे होते हैं, राष्ट्रपति जी के दौरे हों, प्रधानमंत्री जी के दौरे हों, वो अगर हम यूरोप की बात करें, क्योंकि अभी यूरोप की चर्चा हो रही है, यूरोप की बात करें, बड़े राष्ट्र हैं जैसे फ्रांस हो गए, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश, ये तो अपनी जगह अपने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो तो साथ में समेटे हुए हैं ही, लेकिन ऐसे जो छोटे देश हैं जैसे हम मोल्डोवा की बात करें, मैसेडोनिया, रोमानिया, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप कैसे समझती हैं इसे, कैसे इसे आंकती हैं कि ये जो दौरा है राष्ट्रपति जी का पूरे यूरोपियन यूनियन या यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो कैसे आपस में इसे एक एसिमिलेट करते हुए आप देखती हैं इसे आप?
0: देखिए निशित जी, ये किसी भी देश को छोटा या बड़ा समझ करके कूटनीतिक दायरों में बात करने से बेहतर होता है कि हम उस देश के सामरिक महत्व को समझे, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह से कूटनीतिक संबंधों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हुए ये इन तीनों ही देशों की अपनी एक भूमिका है। भारत के साथ जो इन तीनों देशों के संबंध है वो द्विपक्षीय स्तर के अलावा, जब बहुपक्षीय स्तर पर हम ओवरऑल एक यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं या यूरोप के दूसरे देशों के साथ बात करते हैं, तो फिर उस दृष्टि से इन देशों के साथ सकारात्मक संबंध न सिर्फ पूरे यूरोप में, फिर भारत की जो एक सकारात्मक आउटरीच है उसको बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होते दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व की बात कर रहा है या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, तो वहां ये एक वोटिंग नेशन के रूप में यूनाइटेड नेशंस में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एक देश एक वोट के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बातों को, भारत के उद्देश्यों को लगातार इको करते हैं। तो इस दृष्टि से भी इन देशों का भारत के साथ सहयोग और हमारे राष्ट्रपति के साथ दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी, प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निशीत जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सांझ ढले का। सांझ ढले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
5: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
5: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। सबसे पहले आपने जो गीत सुना फिल्म मधुमती से था, और आवाज़ जी हाँ लता मंगेशकर जी की। और अब एक और बेहतरीन सा गीत आप सभी के लिए, आइए सुनते हैं फिल्म झुक गया आसमान।

जाने चलने और बिछड़ने रूठने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं लेकिन कभी इस दुनिया से कूच नहीं करते। जी हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार जी की, जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी है और उन्होंने जन्म लिया लेकिन बॉलीवुड में हमेशा हमेशा वो जिंदा रहेंगे। भले ही आज उनका शरीर हमारे साथ नहीं है लेकिन उनके काम के ज़रिए, उनके नगमों के ज़रिए, उनकी बेहतरीन फिल्मों के ज़रिए वो हमेशा हमारे जहन में रहेंगे। और अब इसके बाद एक और बेहतरीन संगीत जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद आएगा, फिल्म आवारा से गीत।

या इसी प्यारे से गीत के साथ मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ, फिलहाल मैं चलती हूँ और इस गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। फिल्म पड़ोसन से गीत है, आवाज़ जी हाँ लता जी की है।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक

0: व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर नालों की सफाई की स्थिति की समीक्षा की गई। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा विस्तार से हुई। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं या अपुष्ट सामग्री पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज संसद में ओजोन का

0: उठाकर सरकार से दिल्ली को दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया, जिससे 15 लाख लोगों को राहत मिल सके। श्री बिधोड़ी ने कहा कि वर्ष 2010 में जिन क्षेत्रों को ओजोन में डाला गया उनमें दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम मंदिर, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और डीडीए द्वारा नियोजित ढंग से बनाई गई मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांव को भी ओजोन क्षेत्र में डाला गया। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को ओजोन से हटाने की मसौदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी। श्री बिधोड़ी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस सभी क्षेत्रों को ओजोन से हटाया जाए, जिससे उन्हें नियमित किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम किया जा सके।
1: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत यदि कोई वाहन मालिक अपना BS4 या उससे नीचे का हल्का मालवाहक वाहन को स्क्रैप करा के वैसा ही नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 10 वर्षों के लिए 100% मोटर वाहन कर में छूट और 100% पंजीकरण शुल्क माफी दी जाएगी। इसके साथ ही ब्याज में 5% की सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8% की छूट और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि यदि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो लाभार्थी को 10 वर्षों के लिए 50% मोटर वाहन कर में छूट, ब्याज में 5% की सब्सिडी और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ दिया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना में पुरानी BS4 या उससे नीचे की बसों को भी शामिल किया गया है। इन बसों को भी मालवाहक वाहनों के समान सभी लाभ उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों को एक वर्ष से अधिक समय से लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी की देनदारियों में भी राहत दी जाएगी। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मॉनसून के लिए राजधानी की तैयारियों और शहरी बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने पानी जमा होने वाले चिन्हित हॉटस्पॉट पर क्षमता तुरंत बढ़ाने और दिल्ली में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल हैवी ड्यूटी पंपों को हर समय चालू रखने, लोगों की प्रतिक्रिया और जमीनी हालात की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत पर भी बल दिया। श्री संधू ने जानकारी दी कि पानी जमा होने वाले चिन्हित स्थानों की संख्या वर्ष 2024 में 194 से घटकर वर्ष 2026 में 34 रह गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास सभी संबंधित विभागों की लगातार प्लानिंग, तालमेल के साथ काम करने और निरंतर मॉनिटरिंग के असर को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज आनंद विहार के अंतर्गत योजना विहार में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निगम ने कहा कि ये विकास कार्य क्षेत्र में बेहतर सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि हाल ही में बिछाई गई 900 मिलीमीटर व्यास वाली ख्याला मेन लाइन को दो जगहों पर जोड़ने के काम के कारण पंजाबी बाग, नारायणा, इंद्रपुरी और मोतीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने आज प्रदेश के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अनुमति और विचार विमर्श के बाद जारी सूची में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम ने आज जवाहर नगर क्षेत्र में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने कहा कि ये केंद्र क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को समयबद्ध और नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ट्रैफिक पाठशाला आयोजित की। ये कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा आज मादक पदार्थ नष्ट करने के 10वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 1450 किलो के से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 897 करोड़ रुपए है। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त HGS धालीवाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पुलिस ने बताया कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रग फ्री भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करने और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति तय करने के बाद शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल असेंबली में ऐतिहासिक बम विस्फोट कर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले बटुकेश्वर दत्त का अद्वितीय साहस, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रभक्ति हर देशवासी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की

परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है।
उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर की

केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंग कीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगा साई रामकृष्ण और H. हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET UG 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो जहां आज हमारे साथ होगा फुटबॉल का जुनून, फीफा का समापन और क्रिकेट के मैदान पर भारत ने क्या पाया और क्या खोया। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजेता बना, फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को फीफा विश्व कप की गोल्डन बॉल और फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। ISSF निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन आज से चीन में शुरू। मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। और PV सिंधु कल से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती दिखेंगी। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फीफा के साथ, जिसका शानदार समापन कर न्यू जर्सी स्टेडियम में हो गया है एक शानदार और रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजय

0: खिताब बन गया है। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। स्पेन के लिए सब्स्टिट्यूट फोरान टोरोस ने उनकी जीत के हीरो बने, जिन्होंने अतिरिक्त समय में मैच का निर्णायक गोल करते हुए टीम को 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया।
1: In 2026, the champions of the world are Spain. Viva España. The best team has won it, and the best player the world has ever known leaves in tears. This time the party belongs to someone else. This is a Spanish summer night.
2: न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले में तनाव और रोमांच अपने शिखर पर नजर आया। इस कड़े मुकाबले के निर्धारित 90वें मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद टोरेस ने आखिरकार 106वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल दागा। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने निको विलियम्स के हेडर से मिली गेंद को नियंत्रित किया और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज से बचाते हुए एक बेहतरीन गोल किया।
1: For Spain by Ferran Torres. At long last, Spain's magic moment.
2: इसी के साथ स्पेन की टीम ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। स्पेन ने लंबे समय तक बॉल पर अपना कब्जा बनाए रखा और पूरे फाइनल में बेहतर मौके बनाए, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने बार बार स्पेनिश टीम के हमलों को नाकाम किया। वहीं अर्जेंटीना साफ सुथरे मौके बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आई और कप्तान लियोनेल मेसी को स्पेन के अनुशासित डिफेंस ने काफी हद तक रोके रखा। मौजूदा चैंपियन को नॉर्मल टाइम के स्टॉपेज टाइम में बड़ा झटका लगा। मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को दूसरा येलो कार्ड दिखाया गया, जिससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अर्जेंटीना की टीम में 10 खिलाड़ी रह गए। मुकाबले में 106वें मिनट में आए टोरेस के गोल के बाद स्पेन ने दबाव बनाना जारी रखा। इस बीच टीम को लगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन गोल से पहले फाउल होने के कारण उस प्रयास को अमान्य करार दिया गया। हालांकि लुइस डे ला फुएंते की टीम ने संयम बनाए रखा और आसानी से मैच के आखिरी पलों को बिताते हुए अर्जेंटीना के विश्व चैंपियन के दौर को खत्म कर दिया। ये जीत स्पेन के लिए एक शानदार टूर्नामेंट का समापन थी। ये टीम पूरे टूर्नामेंट में अजय रही और साल 2010 की अपनी ऐतिहासिक सफलता के बाद दूसरा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो स्पेन एक ऐसी टीम बनकर उभरी जिसने अपने मजबूत डिफेंस को अपनी ताकत बनाया। विश्व कप के 8 मुकाबलों में महज एक गोल खाते हुए ये टीम फुटबॉल की नई विश्व विजेता बन गई है। मैदान पर तनाव दिखा दोनों टीमों के बीच, दोनों टीम के फैंस के बीच, लेकिन रोमांच का मीटर हमेशा हाई ही नजर आया। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री फीफा विश्व कप 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने और उन्हें गोल्डन बॉल हासिल हुई, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बापे ने लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट अपने नाम करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो आइए सुनते हैं अपने खेल से मैदान पर करिश्मा दिखाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल के लिए विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। रॉड्री फीफा विश्व कप 2026 की गोल्डन बॉल अपने नाम करने में सफल रहे। ये पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है। रॉड्री ने स्पेन के लिए सभी 8 मैच खेले और सबसे अधिक सफल पास किए, सबसे अधिक दूरी तय की और खेल में सबसे ज्यादा बार गेंद को छुआ। उनकी सटीक पासिंग, डिफेंस और अटैक के बीच बेहतरीन तालमेल ने स्पेन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। फाइनल में रॉड्री ने 105 में से 101 पास सही किए, 80% ड्यूल्स जीते और 2 गोल करने के मौके बनाए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने डिफेंडर्स की मदद करने में उनकी समझदारी भरी भूमिका के कारण ही स्पेन ने 8 मैचों में सिर्फ 1 गोल खाया। वे फुटबॉल इतिहास में विश्व कप, UEFA चैंपियंस लीग और बेलन डी ओर जीतने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट अपने नाम किया। एम्बापे ने इस विश्व कप में 10 गोल और 4 असिस्ट किए। एम्बापे ने लगातार दूसरे विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया। वे ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी 8 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में फ्रांस के कप्तान एम्बापे 2 गोल करने के साथ ही मेसी से आगे निकल गए थे। फीफा विश्व कप के इतिहास में भी सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड एम्बापे के नाम ही दर्ज हो गया है। वे इस मेगा इवेंट में कुल 22 गोल कर चुके हैं, जबकि स्टार खिलाड़ी मेसी 21 गोल के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कल दुनिया ने देखा इन नए सितारों को उभरते हुए। और अब फुटबॉल के बाद रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। इंग्लैंड ने भारत को कल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तीसरे एक दिवसीय और निर्णायक मुकाबले में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। इस हाई स्कोरिंग मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट गंवाकर 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी। और इस मैच पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। पूरा मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मैच रहा, कोशिश भारत ने आखिरी हद तक की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कृपया एक पूरे मैच के इस स्कोर कार्ड पर नजर डालें।
4: जी शक्ति, जब इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो उन्होंने शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें अहम भूमिका निभाई उनके ओपनर बेन डकेट और जेकब बेथल ने। बची खुची कसर वहां जो रूट ने आकर पूरी कर दी जब उन्होंने 48 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने 13 गेंदों पर 41 रन की विस्फोटक पारी खेलकर इंग्लैंड को एक विशालकाय लक्ष्य तक पहुंचा दिया। जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर काफ़ी निगाहें थीं। भारत का टॉप ऑर्डर जो है उसमें रोहित शर्मा के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि वो किस तरीके से खेलेंगे, क्या उनका बैटिंग अप्रोच होगा, लेकिन उन्होंने सभी अपने आलोचकों के मुंह बंद करते हुए 110 गेंदों पर 138 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली। मिडिल ऑर्डर जो है भारत का वो फेल होता नजर आया और भारत को कोलैप्स का सामना करना पड़ा और 27 रन से हार मिली भारत को। जेकब बेथल जो रहे उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला जिन्होंने 91 रन की पारी खेली और रोहित शर्मा का विकेट झटका था।
0: जी बिल्कुल, आपने रोहित शर्मा की बात की, ये सुनते हैं कि रोहित शर्मा ने श्रृंखला में टीम के प्रदर्शन के बारे में क्या कहा।
5: Little disappointed with the result because I thought we were playing really good cricket. You know how we started in Birmingham. We played some really good cricket. We fell a little short at Cardiff with the bat. Actually, not enough score on the board. And then here again, there was a massive total to chase. We tried everything we could with the bat, but again fell 20-25 runs short with the bat.
0: रोहित की जो कल की पारी थी वो 137 रन की, आपने बात की, विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड की बराबरी और लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा सबसे बड़ा एक दिवसीय स्कोर। पहला भी कल ही बना जो इंग्लैंड के खिलाड़ी के बल्ले से आया। लंबे समय से कई अटकलें थी, कई सवाल थे, कितना सार्थक उनकी इस पारी ने जवाब दिया है उन सवालों का।
4: देखिए, एक बात तो तय है कि रोहित ने अपने बल्ले से जवाब दिया है। उन्होंने इस पारी में अपने 17 चौके और 5 छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए कल मैदान पर उतरे तो उनकी बैटिंग में एक अलग किस्म का कंट्रोल नजर आ रहा था। उन्होंने अपने जो शॉट्स हैं वो इधर उधर नहीं मारे और सीधे बल्ले से खेलकर गेंद को बेहतर तरीके से बाउंड्री के पार पहुँचाया। और जो रोहित शर्मा रहे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि विजिटिंग कंट्रीज में उन्होंने सबसे ज़्यादा शतक बना लिए हैं। इंग्लैंड में उनके 8 शतक हो चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जो यूएई में उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं किस ओपनर बल्लेबाज के तौर पर। अभी डेविड वार्नर से वो पीछे हैं जिन्होंने 49 शतक लगाए हैं।
0: जी बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने खुद अपनी पारी के बारे में क्या कहा, इंग्लैंड की धरती पर उन्हें खेलना कितना पसंद है, आइए उनके मुंह से सुनते हैं।
5: I love playing in England. There's no doubt about it. The atmosphere, ground, the pitches. You know, when you turn up here to play any sort of format, it challenges you in different ways. That's what, as a cricketer, you want to be challenged all the time. I had my time in the middle. I enjoyed it.
0: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी हिटमैन की पारी की प्रशंसा की है। आइए सुनते हैं शुभमन गिल ने क्या कहा।
6: जिस तरीके से रोहित भाई ने ये इनिंग पेस की बहुत ही शानदार था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड वाचिंग दिन। हमारी जो बातचीत भी मोस्टली ये हो रही थी, अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ही चांस बनेगा इतने बड़े स्कोर को चेस करने का। पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि मारने के लिए जाएं ना जाएं, बट देखा है कि नई बॉल से मारना उतना ईजी नहीं है। एंड आई थिंक जैसे उन्होंने अपनी इनिंग पेस की और फिर जैसे एक्सेलरेट किया, आई थिंक जब वो 60-70 के पास पहुंचे तो बहुत ही शानदार।
0: हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा था कि आप कितने भी रन स्कोर बोर्ड पर बनाते जाइए, आपके लिए जो नीड्स वाला कॉलम है, जो और बनाने वाला कॉलम है, वो हमेशा उससे बड़ा नज़र आता है। जिस तरह की ये पूरा दौरा भारत के लिए गुजरा, पहले आयरलैंड से 2-0 की हार, फिर इंग्लैंड से T20 श्रृंखला में हार, कुछ पॉजिटिव क्या भारतीय टीम अपनी 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों में यहां से लेकर के आ पाई है।
4: शक्ति, 2027 की तैयारियों की बात करें अगर तो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से फॉर्म में आ गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस, कमिटमेंट और फॉर्म पर जो चर्चा हो रही थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। भारत की कई कमियां भी सामने आई हैं जिसके चलते अब भारत की ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उनको किन किन चीजों पर काम करना है। जैसे मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स जो है वो लगातार हो रहा है, 4-5-6 नंबर में बदलाव किए जा रहे हैं जिससे एक दृढ़ता नजर नहीं आ रही है। बुमराह के अलावा भी टीम को कुछ एक्सपीरियंस बॉलर्स की जरूरत है जिसके चलते

0: वो एक प्रेशर बना पाए सामने वाली टीम पर और स्पिन पर और भरोसा जो है जताना होगा।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ सीख लेके ये युवा टीम जो है, एक कॉम्बिनेशन है युवा और एक्सपीरियंस टीम का, वो आगे बढ़ेगा और अपनी तैयारियों को और धार देता हुआ नजर आएगा। और अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज का। भारत ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन के लिए 36 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। आज से 29 जुलाई तक चीन के हांगझाऊ में चलने वाली इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे।
2: भारतीय दल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल शामिल हैं, जबकि महिलाओं में आशी चौकसे, विदर्शा के विनोद और सिप्त कौर सामरा हिस्सा लेंगी। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि, संयम और ईशा सिंह तथा पुरुषों में केदार लिंग बी, उचाग नवे, कमलजीत और आकाश भारद्वाज शामिल हैं। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत तथा पुरुष में अनीश भनवाला, ओंकार सिंह और भावेश शेखावत को चुना गया है। शॉटगन इवेंट्स में उदावीर सिंह जाजी, भवनीश मेंदिरत्ता और विवान कपूर पुरुषों के ट्रैप इवेंट में हिस्सा लेंगे। महिलाओं में प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी हिस्सा लेंगे। पुरुषों के स्कीट टीम में गुरजोत सिंह खंगुरा, परमपाल सिंह गुरोन और अभय सिंह सेखो शामिल हैं, जबकि गनिमत सेखो, दर्शना राठौर और यशस्वी राठौर महिलाओं की टीम का हिस्सा हैं। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, शाहू तुषार माने और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, वहीं महिलाओं में इला वैनिल, वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और साक्षी सुनील पडेकर भाग लेंगे। इसके अलावा भारत 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम और ट्रैप मिक्स टीम इवेंट्स में भी टीम उतारेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुक करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां जापान ओपन में जीत हासिल करने के बाद पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती नजर आएंगी। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा भी भारतीय दल का हिस्सा हैं और उन्नति हुड्डा कल पीवी सिंधु से ही अपना पहला राउंड ऑफ 32 का मैच खेलने उतरेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स की बात की जाए तो वहां पर लक्ष्य सेन, युवा आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम में हैं। पुरुष डबल्स में सबकी नज़र MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन पर होने वाली है, क्योंकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है उसको जापान ओपन के बीच में ही कुछ चोट के कारण हटना पड़ा था और अपनी ऐतिहासिक जीत पर पीवी सिंधु ने खुशी भी व्यक्त की है कि वो आगे इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए नजर आएंगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मानसून

0: सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति के मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज

0: दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक

सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक एक या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112311 0411 0112311 0112311 4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो

0: रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूँ आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी ज़रूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फ़ोन करेंगे और उनके मन में कोई, यार बताने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोगों जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
1: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
0: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज़ से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
1: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहद आपने। देखिए ये जो 5 मैंने इनकम्स बताई थी, उन 5 इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पर मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए। ये सब अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिगर कहां से लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और FD पर अगर TDS कटता है तो ITR इसमें कैसे दिखाएंगे?
3: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रुपए तक, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है। लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं।
1: जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा। जी अमित जी।
4: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार
4: सर, कोहली सर को नमस्कार सर।

0: नमस्कार अमित जी। नमस्कार
1: सर, मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी।
1: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर, मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो एक्स वाई जेड
0: जी,
1: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ
0: जी।
1: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहत, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है। हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। परंतु अगर आप वो जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई TDS कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो वो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप, 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
2: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए ITR में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं, और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको, आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं, और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहत बहुत लंबा दिख सकता
2: ये
0: है।
2: बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में एक संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए
0: जी,
2: तो
0: जी।
2: उस
0: और मैं उसी पे आ रहा था, तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है, आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सैटिस्फैक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
2: जी, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन जी। मकसूद जी
3: नमस्कार सर जी।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए
3: जी। मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी,
3: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुंच जाता है जी, अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
0: नहीं, जन सेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फर्द में ठीक समझ रहा होगा, तो उस

0: तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको, आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
2: तो क्या 12 मतलब 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके, मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पस ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता
1: जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या आईटीआर के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
3: नहीं, आईटीआर के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: और मैं आपकी इजाजत हो फरहत, तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में ला के और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन GST शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है। तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
3: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
1: आप लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से NP सिंह जी।
4: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: मेरा नाम NP सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
4: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
4: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
0: हाँ जी।
4: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
4: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रख सकें।
0: अच्छा,
4: और कौन सी ऑप्शन बेटर
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम CAS बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की

0: सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है, आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूँ। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनपीएस उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शन न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको ये सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम से है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं।
1: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं?
2: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
1: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में 2-3 कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम NRI कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो NRI है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है फरहद, वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया
1: जी। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी NGO चलाते हैं और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है लेकिन वो अब लॉस की वजह से NGO को क्लोज करना चाहते हैं, तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
0: देखिए अगर तो NGO रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा, हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि NGO फर्क 2 तरीके के होते हैं। एक NGO होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि NGO आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी, पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड NGO हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं आपके सवाल से, एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई रह गई जाने में अनजाने में, तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, तीन साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, दो साल पुरानी है तो 50%, तीन साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में ला के उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
4: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
0: सर हमारा भी सहप्रेम।
1: आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार।
4: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
0: जी
4: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच कोई फर्क है या क्या, थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
2: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हो एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग आईटीआर दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस।
0: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना। आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये होदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
2: ऐड करूंगा इसमें एक कि कुली जी, अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
0: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
2: नहीं ठीक करता और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
0: नहीं नहीं, वो मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
2: गलत है, लेकिन जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर। मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है,
1: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
5: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
5: सभी पैनल को।
0: नमस्कार
5: सर, पिछले साल जिस यूजर आई डी, तो यूजर आई डी नहीं होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो इसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
0: तो
5: अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ।
0: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर नहीं तो तुरंत मोबाइल पे OTP आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं। आप क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा एक CPGRAMS करके वेबसाइट है, उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और CPC बैंगलोर है, उसके फोन नंबर भी हैं, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो CPGRAMS का एक ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए CPGRAMS में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा CPC बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई पेनल्टी लगे।
1: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं। हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।

0: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी मैं रवि जवाली हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं इसे जानना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
2: अरे अरे रवि जी आप क्यों क्यों नहीं भर रहे हैं आप पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है।

0: ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
1: और अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
0: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है। तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न्स आ रही हैं आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर लें।
1: बिल्कुल अश्विनी जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करेंगे 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
1: जी और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब।
0: शुक्रिया।
1: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत। और आपने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ

जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन 2 सप्ताह के भीतर किया जाए और गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। अदालत ने समिति को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने के तरीके और व्यवस्था की सिफारिशें करने का निर्देश भी दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In Jammu and Kashmir, four more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division today, taking the death toll to 16 in the past 2 days. At least seven people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Pooch district. Chief Minister Umar Abdullah has announced an ex gratia relief of 6 lakh rupees for the next of kin of each person who lost their life in rain-related incidents in Rajouri and Pooch district. Meanwhile, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the situation following heavy rains, flash floods and landslides in several districts of the Union Territory. The IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 2 days. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal and parts of Northeast India during the next 2 to 3 days. Supreme Court today directed the Union Government to constitute a committee within 2 weeks to frame uniform guidelines governing the post-retirement facilities to be extended to retired Chief Justices and Judges of the High Courts across the country. A bench led by Chief Justice of India, Surya Kant, directed that the committee shall be constituted in 2 weeks and submitted its recommendations to both the Union Government and the Supreme Court within 3 months of its constitution. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंड्री बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज एमवी गोल्डन लियो पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और समुद्री आवाजाही तथा व्यापार में बाधा डालना निंदनीय है। मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायल भारतीय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की अपार संभावनाएं हैं।
2: I am greatly encouraged by the growing cooperation. There is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technologies, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement, art manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green hydrogen.
1: मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा।
2: India also offers good business opportunities for Moldovan companies for trade and business. We remain committed to fostering a transparent, predictable, and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision, and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनाव में स्टेफान सेल मारिसी स्पैंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। राष्ट्रपति मुर्मू ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडियार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देश भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पनामा के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा के दौरान हुई चर्चा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलेंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने उद्घाटन भाषण में बर्नहैम ने कहा कि वे राजनीति को समस्या समाधान पर केंद्रित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नियुक्ति देश के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हो।
3: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: प्रधानमंत्री बर्नहैम ने जनता को संबोधित करते हुए लोगों से राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक कार्यभार संभाला जब चार्ल्स तृतीय ने केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले केयर स्टारमर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया। यमन के ईरान समर्थित हूती द्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लगाने की घोषणा की है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहया सारी ने कहा कि यह कदम यमन पर लगाए गए प्रतिबंध और हाल में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में उठाया गया है। इस घोषणा से बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में व्यवधान की चिंता बढ़ गई है। यह समुद्री मार्ग लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लगभग 12% हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ने अभी तक इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान और अमेरिका के बीच हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के कारण लगातार 9वें दिन भी हमले जारी हैं। अमरीकी हमलों में दक्षिण पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया गया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की जानकारी दी है। ईरान ने बताया है कि अमरीकी हमले के कारण बुशहर प्रांत के दश्ती काउंटी के प्रशासनिक केंद्र खोरमोज में बिजली गुल हो गई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना बलों से संबंधित सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। जॉर्डन ने बताया कि वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान की 3 मिसाइलों को नाकाम कर दिया। इन मिसाइलों का लक्ष्य दक्षिणी जॉर्डन के तटीय शहर अकाबा में अमरीकी सैन्य विमान थे। इस बीच अमरीकी युद्ध विभाग ने पिछले सप्ताह ईरान के साथ संघर्ष में मारे गए 2 अमरीकी सैनिकों की पहचान की पुष्टि की। सेना के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए अमरीकी सैनिकों की कुल संख्या 17 हो गई है। यूक्रेन ने मॉस्को पर 400 से अधिक ड्रोन के साथ हमला किया। यह हमला रूस के द्वारा कीव और अन्य

यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले के कुछ घंटों बाद हुआ। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोबेव के अनुसार हमले में 10 लोग घायल हुए और कई रिहायशी इमारतों तथा नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज समुद्री डकैती और अन्य अपराधों के आरोप में दो अलग अलग मामलों में सोमालिया के 44 नागरिकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के अपराध गंभीर प्रकृति के थे। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और एचएस प्रणय टीम का हिस्सा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कहते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप खिलती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं और कभी पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते भी कुछ ऐसे ही मौसमों से होकर गुजरते हैं। पहली मुलाकात किसी बसंत जैसी लगती है, प्यार का इजहार बारिश की पहली फुहार जैसा, और इंतजार सर्दियों की लंबी रातें, और कभी कभी बिछड़ना बिल्कुल पतझड़ की तरह लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं मौसमों की और उन एहसासों की जो मोहब्बत को इतना खास बना देते हैं। शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, मोहब्बत का अगर कोई मौसम होता तो शायद वो बारिश होती। बारिश की एक खास बात यह है कि ये लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। खिड़की पर बरसता हुआ बारिश का पानी, गर्म चाय और एक हल्का सा संगीत और किसी अपने की याद। बारिश अक्सर पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। कई लोगों के लिए ये किसी खास मुलाकात की याद होती है तो कई लोगों के लिए ये किसी अधूरी कहानी। लेकिन बारिश सिर्फ यादों का मौसम नहीं है, ये एक नई शुरुआत का भी मौसम होता है। जैसे धरती बारिश के बाद महक उठती है, वैसे ही कई रिश्ते भी एक छोटी सी बातचीत से फिर से खिल उठते हैं, महक उठते हैं, ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगा, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, सर्दियों का मौसम हमें हमेशा अपने लोगों के थोड़ा और करीब ले आता है। एक कप चाय और धूप में बैठकर लंबी बातें, या फिर किसी अपने के साथ कुछ समय बिताना या कुछ वक्त बिताना। मोहब्बत हमेशा बड़े बड़े वादों में नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। किसी का हाल पूछ लेना, या ये पूछ लेना कि आपने खाना खाया या नहीं, सर्दी में गर्म कपड़े पहनने की याद दिला देना, या बिला वजह सिर्फ हाल चाल पूछ लेना, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, वो रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं।

दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में लंबे समय तक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और पतझड़ का मौसम भी हमें कुछ यही सिखाता है कि कभी कभी पुराने पत्तों का गिरना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि नए पत्तों के लिए जगह बन सके। इसी तरह जिंदगी के कुछ रिश्तों का खत्म होना भी हमारे लिए एक सीख होती है, वो हमें आगे बढ़ना सिखाता है। मुझे पता है कि दर्द होता है, लेकिन समय के साथ इंसान फिर मुस्कुराना सीख जाता है। जैसे इस गीत को सुनने के बाद आप हल्का सा मुस्कुरा देंगे।

दोस्तों, अगर जिंदगी में सिर्फ बसंत ही होता तो शायद हमें उसकी खूबसूरती का एहसास नहीं होता। बारिश हमें धैर्य सिखाती है, सर्दियां अपनापन सिखाती हैं और पतझड़ हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, और बसंत हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद देते हैं। मोहब्बत भी तो कुछ ऐसी ही है, इसमें खुशी है, इंतजार है, दूरी है, मुलाकात है और सबसे ज्यादा उम्मीद है, और यही उम्मीद हर कहानी को आगे बढ़ाती है। चलिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा शिशिर जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार धन्यवाद
1: आइए श्रोताओं एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर
0: The benchmark domestic indices declined. Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक बढ़ा निफ्टी 24,239 पर बंद हुआ भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावरग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7% and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9% and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ। शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
2: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला। निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे, 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
1: जी,
2: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
1: जी,
2: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
1: जी।
2: तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पे हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
0: Right, Shishir ji, we were talking of the banking stocks. PSU banks and private banks, almost 5% of a difference. If you look at the PSU banks, jumped 3% and the private banks dropped 2.1%, almost a 5% contrast. What accounts for that?
2: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the

0: kind of growth in the net profit. And at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks. Mm. And that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
1: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
2: Ji, namaskar, Shishir sahab.
0: Namaskar.
2: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया. सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड या जिसको आप एआई कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट हैं, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं.
0: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है. और ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं. पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं आईटी सेक्टर्स की, जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा. तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है. लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने. यही पक्ष जो है वो आप एआई के लिए भी कह सकते हैं कि एआई के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं. आपका यह है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या एआई हावी होगा. हम अगर हावी होने देंगे तो एआई हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाएं, तकनीक को अपना मालिक ना बनाएं. तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो सीईओ हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा. तो मुझे लगता है कि एआई को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एआई को साथ लेने की जरूरत है. इससे हमारा आपका कौशल्य बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे.
3: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं. सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं. और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की.
4: हाँ
3: जी, अपना सवाल पूछिए महोदय.
4: हाँ सर, मैडम, मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, पैसा लगाना ठीक होगा?
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है. जब आप सेवानिवृत्त होंगे, वहां पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा. आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा. सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी. तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है. एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए. चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं. और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं. तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए.
3: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: नमस्कार जी, नमस्कार, किसी हमें पैसा लगाना चाहिए? और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो लगी कर लेंगे तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, यूक्रेन, ईरान.

0: आदर्श उद्देश्य प्रमुख। तो आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा से भरेगी तो इस क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट आगे हम प्रसाद रास्ता बताए।
1: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
2: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
3: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते हैं।
2: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
3: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसैंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका।
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछता हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं।
3: जी,
4: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
1: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहां पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
3: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा। ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

0: हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी।
1: देखिये, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें जीडीपी, हम बात करें महंगाई दर की, और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना, इसलिए आधार वर्ष का तय, नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप जीडीपी का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है, डब्ल्यूपीआई का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, सीपीआई की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ है, और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं, ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
2: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
3: Ji, namaste sir.
1: Namaste.
3: मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने बैंक में पैसे लगाए हैं, हाँ सर?
1: जी जी।
3: तो इसको जैसे पीपीएफ का पैसा तो सरकार देती है, तो इसको बैंक देगा या सरकार देगी? और ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा पैसा, ज्यादा करवा दिया तो?
1: कांता जी, दो बातें हैं, जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं, वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहां पे फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
0: शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
4: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
1: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है, आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर हैं वहां के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, इसमें से कोई भी एक जानकारी देकर के आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: शिशिर जी, वन question which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
1: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are asked is there that why there the number is so encouraging, why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good. in the domestic sector that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has

0: Directly gone up, and that is why the profitability is, of course, on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also, you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been taken, I mean, has been normalized. So all these things are contributing in that. So the number one is export number and then the consumption number.
1: और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते मैम.
1: नमस्ते
2: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
0: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
2: संतोष, संतोष,
0: संतोष पॉलिसी.
2: हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष संतोष संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या.
0: अच्छा अच्छा, ठीक है.
2: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41. तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा. तो सर वो 2 लाख के इंश्योरेंस बता था प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए.
0: Okay.
2: ये 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं. और एक और सवाल है
0: जी.
2: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
0: जी,
2: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर.
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता. बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहाँ आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है. हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है. रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है.
3: Yeah, moving on to crude now. The global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the US could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji, on crude.
0: The problem we are facing at this moment is there's still a lot of uncertainty. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. On the other side, when you hear US president, he has its own way of explaining the thing. So at this moment, today, you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
3: 0.8%.
0: 0.8, yes. I'm sorry. 0.8% and it was $87 a barrel. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
3: Right. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona aadhe pratishat se adhik badhkar 1,41,754 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, aur september anubandh wali chandi 1.3% ki badhat ke saath 2,19,233 rupees par chal rahi thi. Shishir ji, sankshipt tippani chahungi aapse sone aur chandi ke bhav par.
0: Dekhiye, ek dilchasp baat yeh hai ki ladai ke beech mein sone chandi ke bhav mein giravat aa rahi hai. Ye kai baar log को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से। जब जब डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा।
1: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद,
3: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239। इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर, एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन, एंड दैट्स ऑल वी हैव in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar along with my co-anchor Prachi Priya saying goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की, इस बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री जावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने में के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

कर्ज फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत से दूर रहने की हिदायतें तो सदियों से दी जाती रही हैं, मगर इश्क कब किसी नसीहत का मोहताज रहा है। दिल जब किसी की आहट को अपनी धड़कन बना ले, तब दुनिया की हर सलाह, हर दलील और हर रोक बस एक आवाज़ बनकर रह जाती है। आखिर इश्क के मामले में कौन किसी की सुनता है, या तो दिल ही फैसला करता है और वही अपना अंजाम भी लिखता है।

डिस्को डांसर फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत भी दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वो लम्हे, वो बातें, वो एहसास जो कभी मेरी दुनिया थे। कुछ रिश्ते भले ही वक्त की धूल में ओझल हो जाएं, मगर उनकी महक उम्र भर दिल में बसी रहती है। तेरे प्यार की वही खुशबू आज भी मेरी यादों में उतर आई है।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो ओहो ओहो

बातों बातों में फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कभी कभी मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती। दो निगाहें मिलती हैं, दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और बिना किसी इजहार के एक रिश्ता जन्म ले लेता है। यही तो प्रेम का सबसे

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गजल सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अमीर मीनाई ने इसे लिखा था और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपने इस गजल में एक बात महसूस की, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इस शेर की जान है, यहाँ जल्दबाजी नहीं बल्कि उस पल को जीने की रवानी है, जहाँ हर नजर हर मुस्कान और हर झलक अपने आप में एक मुकम्मल कहानी बन जाती है।

कभी कभी हिंदी फिल्मी गीत प्रेम की उस पहली हलचल को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर जाते हैं कि शब्द सीधे दिल में उतर आते हैं। शायद यही वजह है कि ये गीत सुनते हुए महसूस होता है कि सच्चा प्यार जब दिल को छूता है तो उसकी खुशबू सिर्फ यादों में नहीं पूरे वजूद में उतर जाती है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे नक्श ने लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:52 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इतने प्यारे गीतों का साथ हो तो नींद भला कैसे आए। हर नगमा किसी याद को छेड़ देता है, हर धुन किसी एहसास को जगा देती है। ऐसी रातों में आंखें भले ही जागती रहें, मगर दिल सुरों की चादर ओढ़कर एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़ता है।

की आवाज में पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी वीरजी शाह ने। गीत सुनते सुनते जब नींद आंखों में उतरने लगे तो लगता है जैसे सुर लोरियां बन गए हों। हर धुन धीरे धीरे मन को सहलाती है और हर शब्द सपनों का रास्ता दिखाने लगता है।

मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। क्या खूबसूरत एहसास है इस पंक्ति में। कभी किसी की याद, कभी किसी का ख्याल, तो कभी कोई प्यारा सा नगमा। कुछ तो है जो रात भर आंखों को जगाए रखता है। नींद आती भी है तो ठहरती नहीं, जैसे किसी ने चुपके से उसे अपनी हथेलियों में समेट लिया हो। पूजा के फूल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। हर रात चांद तो अपने वक्त पर लौट आता है, मगर जिसका इंतज़ार हो उसके कदमों की आहट नहीं आती। फिर भी दिल उम्मीद का दिया बुझने नहीं देता, शायद अगली चांदनी रात के साथ वो भी लौट आए, जिसने कभी हर उजाले को अधूरा बना दिया था।

पतिता फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 1 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आपने सुना शबाब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। इश्क की दुनिया में आशिक अपने महबूब से जुड़ी हर राह, हर गली, हर याद को अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा अजीज मान लेता है। यही वजह है कि ऐसे गीत सुनते हुए हमें एहसास होता है कि मोहब्बत का असली रंग पाने में नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से महसूस करने में है।

कभी कभी रिश्तों में कोई गुनहगार नहीं होता, बस हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां दोनों तरफ दर्द होता है, दोनों तरफ इंतजार होता है और दोनों तरफ अनकही बातें रह जाती हैं। ऐसे गीत हमें सिखाते हैं कि हर बिछड़ने वाली कहानी में एक ही दिल नहीं रोता, कई बार दोनों ही अपने अपने हिस्से का गम चुपचाप जी रहे होते हैं। आपने सुना कुंदन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने।

रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने। यादों की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है। हम समझते हैं कि वक्त ने हमें उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर किसी शाम की खामोशी, किसी हवा के झोंके या किसी पुराने नगमे की धुन उन्हें फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है।

जब से तुम्हें देखा है इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया दत्ताराम ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by RS Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties.

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कितनी सहज और गहरी बात है ये, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम कोई फैसला नहीं, एक एहसास है। ये ना तो किसी योजना का हिस्सा हो सकता है, ना किसी तर्क का। कब कोई मुस्कान दिल में उतर जाए, कब किसकी आवाज अपनी लगने लगे, और कब किसी की मौजूदगी जिंदगी का सुकून बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

जुर्म फिल्म का गाना आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। देव कोहली ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद राज आनंद ने। जिंदगी हर दिन एक सी नहीं होती, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी परेशानियों की छांव। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है, एक ऐसा साथ जो हालात बदलने पर भी ना बदले।

लहू के दो रंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

वक्त हुआ है 2:35 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीजें कितनी भी संभाल कर क्यों ना रखी जाएं, वक्त, हालात या लापरवाही की एक चोट उन्हें बिखेर सकती है, लेकिन संगीत की खासियत देखिए, वो टूटे हुए दिल की आवाज भी बन जाता है और बिखरे हुए एहसासों को फिर से समेटने का हौसला भी देता है।

कुछ एहसास उम्र के साथ फीके नहीं पड़ते। तेरे पहले प्यार की खुशबू आज भी मेरी सांसों को महका रही है और हर धड़कन जैसे उसी अनकहे मासूम से एहसास का गीत गुनगुना रही है। फिल्म बदलते रिश्ते का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक जान है हम, इस फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुनेंगे कार्यक्रम आप पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन

0: है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the neat paper leak case. Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr.

हमराही। और अब मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद, और अजनबी मूवी के इस गाने से शुरुआत करते हैं और आप इन गानों का मजा लीजिए। दो गानों के बाद आपसे मुलाकात होती है।

समय के साथ पुरानी चीज़ों का स्वाद जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इन पुराने गानों का टेस्ट तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आराधना मूवी से लता जी और किशोरदा की वॉइस में ये गाना था, एसटी बर्मन का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। आधी रात की इस खामोशी में जहां आधी दिल्ली सो रही है, वहीं कई लोग जो है वो अलग अलग कारणों से जागकर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। कोई अपनी जॉब कर रहा है और कोई जो है कुछ और काम कर रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ आपको जगाए रखने के लिए आपके साथ बातें कर रहा हूँ। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ, और पुराने डुएट्स गानों का कलेक्शन लेकर हमरा ही शो में मैं आपके साथ रहूँगा इस पूरे घंटे। और देखिए, एक चीज़ और भी मुझे बतानी है कि प्यार जो है ना वो किसी से भी हो वो खुशी ही देता है, तो इन गानों से मोहब्बत करने वालों के लिए सुकून की रात है। मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूं। अभी के लिए दहलीज मूवी से महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में ये गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक मैं और एक तू मूवी से ये वाला गाना था। और देखिए, अगर बेकार की बातों में हम उलझे रहेंगे ना तो जिएंगे कब? जिंदगी बीत रही है और अपने पसंदीदा इंसान के साथ जो है वो खुशनुमा लम्हे बनाइए और उनका मज़ा लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई नो ये एक फिल्म का मैंने डायलॉग मार दिया, लेकिन बातों से ये ज़िंदगी तो देखिए हर दिन बीत ही रही है। ये जो टाइम अभी जो हम जी रहे हैं, ये टाइम जो है सुबह के 6 बजे तक नहीं होगा, सुबह कुछ और चीज़ होंगी। तो और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान हुआ तो सच मानिए ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं हूँ पंकज, आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। प्यार बांटिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है।

डल 100 मूवी के इस गाने में विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की रोमांटिक केमिस्ट्री गजब की थी। और इस गाने में पता है एक लाइन आती है कि मैंने जिसे चाहा वही यार मिला रहे। आपको पता है कि इंसान है ना तभी खुश रह पाता है जब जिंदगी जीने के लिए उसके पास उसकी ही पसंद का एक शख्स उसके साथ हो और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए ताकि आगे जाके आपको इस बात का गिल्ट ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। एटलीस्ट ट्राई करेंगे, मिल गए सो ठीक है, बाकी तो किस्मत की बात है ही। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हमराही शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। समझौते वाले रिश्ते जो हैं उनको जोड़ने से बेहतर है कि पसंद के शख्स के साथ जिंदगी का हिस्सा बन जाना।

ये आधा साल बीत चुका है और समय तो मानो एकदम भाग रहा हो। वैसे हमराही शो का टाइम भी जो है वो पूरा होने वाला है और अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा। तो इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी कुछ मिनट जो बचे हैं उसके लिए आप इस शो का ये गाना सुनिए और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्न

0: होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको लीगल जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों तथा बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन कम किया जा सके। और खेलों में ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगैन ऑन अ स्टॉर्मी नोट यस्टरडे। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विटनेस्ड मल्टीपल एडजर्नमेंट्स फॉलोइंग अपरोर बाय ऑपोजिशन पार्टीज ओवर वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग द नीट पेपर लीक केस। द लोकसभा एंड द राज्यसभा वर लेटर एडजर्न्ड फॉर द डे। The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel were sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, the Delhi police said,

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। शुरुआत करते हैं जीवनधारा फिल्म के इस गाने के साथ SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में।

0: आयशा जी की आवाज में गाए हुए गाने। अगर तुम ना होते मूवी का ये गाना आपने सुना था, गुलशन बावरा के बोल और आरडी बर्मन का म्यूजिक था। आज 21 जुलाई मंगलवार है और मैं पंकज अरुणिमा शो में आपके साथ हूँ। देखिए, समय को भी ना थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मंगल परिस्थितियां बना सके, यानी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो जिंदगी को जी भर कर जीते रहिए और जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। खैर, अब इन दो गानों के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, तो ऐसे ही इन गानों का मजा लेते रहिए और फिर से आपसे मिलता हूँ।
1: Yeah.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल्ली में समय बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाणी जयराम की आवाज़ में गुड्डी फिल्म से ये गाना था, गुलजार के बोल और बसंत देसाई का संगीत था। जब जिंदगी में अपने दम पर लाख जतन के बाद भी परिस्थितियां सही ना होना, और तब हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है प्रार्थना में जो है वो बड़ा बल होता है जो असंभव को भी संभव कर देती है। बस प्रार्थना जो है वो सच्चे मन और अच्छी नीयत से होनी चाहिए, जिसमें किसी का भी बुरा ना हो। यकीन मानिए प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और पूरी भी की जाती हैं, इसलिए हर पल प्रार्थना करते रहिए, कुछ अपने लिए कुछ सबके लिए।

इस गाने की एक एक बात बहुत सच है। और पता है मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे समझाया है कि कभी भी किसी भी चीज़ का ना अहंकार मत करो, क्योंकि जो अच्छा आपके पास है उसे हमें ज़रूरतमंदों को बांटनी चाहिए। और ये बात सच भी है कि अहंकार जो है वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। अहंकार ने न जाने कितने लोगों को नष्ट कर दिया, इसकी ढेरों कथा कहानियाँ जो हैं वो हमें असल जीवन में भी देखने सुनने को मिल ही जाती हैं। इसलिए विनम्र और प्रेम से भरकर सबको सिर्फ प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं।

किशोरदा की आवाज़ में मशाल फिल्म से आपने ये वाला गाना सुना। और अब जो है अगले घंटे मैं पंकज भोर सुहानी शो में आपसे, यानी नेक्स्ट शो है ये, इसमें आपसे मिलूंगा, क्योंकि और बड़ी सुबह होने वाली है। वैसे तो अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाकर देखा तो अभी दिल्ली में जो है बूंदाबांदी हो रही है, यानी बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है और सुबह का नज़ारा तो होता ही हमेशा बहुत ही प्यारा, मन को खुशी देने वाला होता है। तो थोड़ी देर में सुबह 5 बजे से आप हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे और फिर 5:10 पर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। अभी ये वाला गाना सुनिए, येसुदास की आवाज़ में, इस टाइम के लिए एकदम परफेक्ट गाना है फ्रॉम द मूवी हैसियत।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो। भारत के लिए

0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं पंकज आपके साथ इस शो में रहूंगा। अभी के लिए शुरुआत करते हैं दो गानों से, राम लखन फिल्म से ये गाना आप सुनिए और उसके बाद दो गाने के बाद आपसे मिलता हूँ।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में संगीत फिल्म से ये गाना था संतोष आनंद के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत था। बहुत ही सुंदर सी सुबह का नज़ारा दिल्ली का इस समय है और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा है हल्की हल्की बारिश हो रही है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 21 जुलाई मंगलवार का दिन दिल्ली शहर भी जाकर जो है अपने अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा है और जाना भी है भाई क्योंकि आज मंगलवार है तो काम तो करना पड़ेगा। मतलब अगर सैटरडे या संडे होता तो बात अलग होती लेकिन नहीं आज ट्यूसडे है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वैसे इन सबके साथ ना मुझे ऐसा आपसे एक बात कहनी है कि देखिए हम सबको पता है एक बात समझनी चाहिए कि जिंदगी बीतेगी और बीत रही है लेकिन इसे कैसे बिताना है ये आपके सकारात्मक एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो जब बिताना ही है तो खुशी से क्यों ना बिताएं, है ना। इन दो गानों के बाद मैं पंकज आपसे फिर से मिलता हूँ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो में। ऐसे ही सुनते रहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन